0: आएगा आएगा आएगा।
1: ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया, जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, और क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया।
0: आएगा आएगा आएगा
1: ये क्या हो गया,
2: आएगा आएगा आएगा ये क्या हो गया,
0: आएगा आएगा
1: आएगा ये क्या हो गया,
2: आएगा आएगा आएगा ये क्या हो गया,
0: आएगा आएगा आएगा ये

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी।

उनेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोल दी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। वेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000। दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नजर से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स थे, हमारे ऐसे स्ट्रांग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत जरूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी,

0: अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो जिंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था, और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए, मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट। एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई, काम नहीं किया तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम। आई नीड टू एक्सपेरिमेंट। ये टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता। लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया आज नेचुरल नहीं, बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। नाउ व्हाई वी सेड इट्स नेचुरल, क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें
0: पता नहीं था
1: कि कैसे मेहनत करनी है, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। नाउ व्हाई वी सेड इट्स नेचुरल, क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक, टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स। तो फिर क्योंकि उनका कोई फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना, वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी, क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है। तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है, तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे। तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया, एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो। फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा, आएगा ही, मैं फिजिकल

0: ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है. अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है. हम ये नहीं रियलाइज करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई. तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना जरूरी है. अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं. जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति. कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंदर है डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहां बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज्यादा असर करता है. अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर, ये उनके लिए बहुत कॉमन होता. एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति तो वो क्रिएट हो जाता. बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहां कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है. सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाए ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना चाहिए.
1: दैट्स व्हाई टाइम्स वी से दैट इफ यू आर अंडर स्ट्रेस टेक अ ब्रेक, यू नो इट विल एक्चुअली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से जिंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं. डज इट रियली हेल्प?
0: टेम्पररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्जाम्स हैं, तो आप बहुत ज्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे तो आपको लगता है एग्जाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज्यादा तनाव है चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते. लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन. इट इज अ टेम्पररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं. वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं. जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती. लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं. अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है. तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूं, मे बी आई गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता लेकिन माइंड को रेस्ट, माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में 1 मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा. क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है. इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है. हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस. सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है. और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहां अभी आई एम नॉट यू नो हैप्पी, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड लास्ट. क्योंकि अगर आप हर रोज को एंजॉय कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो ब्रेक लेकर क्या करेंगे, यही सब कितना, यू नो यू एंजॉय योर वर्क, आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप राइट थॉट से उसको कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग ईच डे, यू डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर दैट एंड एनीथिंग.
1: वेरी ट्रू. समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वहीं रहा, वो फैक्टर्स वहीं रहे.
0: तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव. क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन

0: टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
1: मेजर फैक्टर।
0: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस। टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
1: मेजर फैक्टर।
0: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला। फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माय टेंशन एज नेचुरल।
1: यू नो कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा। यू नो अमेजिंग, यस दिस इज व्हाट वी एक्चुअली।
0: तब हमने कहा कि तब इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है? वो समाज। एंड समाज मीन्स एवरीवन अराउंड।
1: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होते। कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहां से टेंशन ना हो? सो मेनी टाइम्स पीपल से
0: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है? इफ यू वांट टू लिबरेट योर सेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। नो वन एंड नथिंग, नो वन। एंड जब हम कहते हैं नो वन मीन्स नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस। दीज आर सिचुएशंस, दीज आर पीपल जो बाहर से आते। स्ट्रेस इज माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हाँ परिस्थिति चैलेंजिंग है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ। हाँ परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन माई फैमिली। अब इससे ज्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहां है। उस परिस्थिति के रिस्पॉन्स में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने, वो यहां है, ये मेरे हाथ में है। एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट। लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल।
1: अमेजिंग, यस, यू नो।
0: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना, ये मेरे हाथ में है। वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहां क्रिएट होता, यहां कोई घुस नहीं सकता। स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाली थॉट्स। परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है, लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है। और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगा। और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को, वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, या मेरे साथ ऐसा हो गया, या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे। वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ tension, of stress, and therefore of pain. So one belief system shift, ki stress meri creation hai, ye kisi paristhiti ya vyakti se nahi aati hai, I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. Sab kuch theek bhi hoga na, kuch log aapko aise milenge, sab theek chal raha hai bahar, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है
1: कुछ कुछ बाहर का सोच के, या कुछ कुछ और।
0: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
1: ये क्या हो गया है,
0: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है,
1: गड़बड़ होगा ही होगा।
0: सो देयर देयर यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पॉन्स टू सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद। एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम। जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है, लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते, माई एनर्जी फ्लोज आउट, आई डिस एम्पावर माई सेल्फ, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, टोटली एनर्जी हैज फ्लोन आउट। जैसे ही आई डू दिस, माई एनर्जी का सर्किट इज कम्प्लीट, इट्स हियर, आई हैव द पावर, आई कैन डू इट,

0: वी विल डू इट दैट्स ऑल। वो ऐसे हैं, वो कैसे भी हैं, परिस्थिति इतनी खराब है कैसी भी है, फिर भी थॉट कौन सी क्रिएट करना। अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी।
1: मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है।
0: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट। अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे, क्या कर उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं।
1: लेकिन वो कैसे मैं,
0: व्हाट कैन यू डू, यू ओनली हैव टू सिट देयर,
1: कांट डू एनीथिंग, बट देन इट्स सो नेचुरल,
0: नथिंग यू, इवन देन यू विल ओनली हैव टू टेल योर सेल्फ, होप आई रीच देयर ऑन टाइम, इफ नॉट देन आई विल हैव टू सी नाउ व्हाट नेक्स्ट एंड कीप साइलेंट, दैट्स ऑल। इसके ऊपर तो एक भी सेकेंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो, ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर, यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स्ड रहने देना, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा।
1: हमारे एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा।
0: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए। हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स।
1: ओके,
0: एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस, द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट, जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट और द ट्रेन गेट्स लेट, सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस।
1: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से ट्रेन लेट हो जाएगी,
0: हो जाएगी, एंड हो या नहीं हो, यहां नहीं कुछ भी होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल,
1: एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट, अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे,
0: पहले से नहीं, यू नो ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट,
1: फिर क्या होगा, फिर क्या होगा,
0: दैट इज प्रेजेंट, दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट।
1: लेकिन फिर वो प्लानिंग, तो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे प्लानिंग,
0: आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है उतनी देर में,
1: रियलाइज आती
0: है आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है कि उस मोमेंट पे जो राइट डिसीजन है आप ले ही नहीं पाते, आप स्टेबल रहे स्टेशन पहुंचे, फिर अगर ट्रेन चली गई है देन एट द प्रेजेंट मोमेंट नाउ व्हाट नेक्स्ट, पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो बीइंग इन द प्रेजेंट मीन्स हर मोमेंट वो सोचें जो उस मोमेंट करना है। हमें लगता है पहले ही सोच के हम टाइम बचा लेंगे और उस टाइम जल्दी डिसीजन ले लेंगे, कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं, एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन,
1: वेरी ट्रू,
0: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीजन, एंड यू क्रिएटेड योर डिसीजन 5 मिनट्स और 50 मिनट्स बैक, सिचुएशन हैज चेंज्ड, टाइम हैज चेंज्ड, यू नीड टू टेक योर डिसीजन नाउ, लेकिन हम कहते हमने तो पहले ही सोच लिया था,
1: और अब वो क्योंकि वो डिसीजन लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, इट्स सो डिफिकल्ट टू चेंज दैट डिसीजन,
0: हम सोचते नहीं उस टाइम, हमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया, एंड वी थिंक कि हम बहुत टाइम बचा रहे हैं, तो हम तुरंत वो जो पास्ट में डिसीजन ऑलरेडी सोच लिया हम उसको यूज कर लेते हैं। क्रिएटिविटी मीन्स हर मोमेंट को देखते हुए, क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है, मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूं कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता, ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है, अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है, डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन, आप अपना हर चीज
1: चेकिंग तो करनी पड़ेगी,
0: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो, लेकिन अगर वो निकल गई है नाउ व्हाट, नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन, एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना, ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है,
1: वेरी ट्रू, तो समवेयर व्हिच इज स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी, सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस, वट इज इट यू वुड लाइक टू क्रिएट, अगेन इट्स अमेजिंग हाउ दिस जर्नी गोज, यू नो यू स्टार्ट फीलिंग सो एम्पावर्ड एंड रिलैक्स सडनली, कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूं वो नॉर्मल हूं। थैंक यू सो मच शांति, आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशन हम ना ले पा रहे हों, आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहां आपको लगता है कि आप

का चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर। हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आज इतना ही, आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी। ओम शांति।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल, आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को।

की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Zindagi kitni khoobsurat hai. Hum mein se har koi aisa hi chahta hai. Lekin zindagi jeete jeete kai baar jab aise mod aate hain, jab lagta hai ki hum hurt ho gaye ya mushkilein bahut zyada khadi ho jati hain. Aise mein humne in dino ki baatcheet mein ye jana ki jab hum hurt hote hain to ya to hum revenge lete hain. We want to lash out. Ya fir hum punish karna chahte hain use jisne hame hurt kiya hai. Ya fir hum ye sochte hain ki रिफॉर्म किया जाए और इस पर हमने बहुत ही नए नजरिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए आई एम अ पीसफुल सोल आई एम अ पावरफुल सोल इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी. अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल आई कैन चेंज नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूं तो बाकी चीजें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का. उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है हमारे बहुत से दर्शकों को भी ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो.
1: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम फॉरगिवनेस फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
0: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना क्षमा कर दो
1: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि येस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके. लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं. उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन आते हैं बहुत ईमेल्स आती हैं या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं वी रियलाइज के ईच वन जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ इतना धोखा हुआ मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे यू नो देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम यू नो आई एम द विक्टिम यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है हमें इससे निकलना होगा और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ. अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर. सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए. फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव इफ आई नो द ट्रूथ इफ आई एम एट पीस देन आई कैन फॉरगिव. अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूं मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं तो फॉरगिवनेस कहां वो पॉसिबल नहीं. तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है फिनिश भी
0: मैं ही करूंगा
1: मुझे करना. अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूं जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली. मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर खोले ठीक का क्या?
0: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
1: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर कि और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है? और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं.
0: पेन में हूँ
1: अगेन, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीजें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीजें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहां वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? यू नो, इवन नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रियली यू नो विक्टिम्स ऑन सम बिग,
0: छोटे छोटे, आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, एट टाइम्स वी स्टार्ट शेयरिंग एक्चुअली इतना ज्यादा.
1: आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? एंड वो एक रिकॉर्ड की तरह प्ले होता जाता है कि जहां जहां बैठे लोगों के साथ अपना, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ. वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड. तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ

0: तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, आई हैव टू मूव ऑन. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना, नहीं जो वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. इट इज यू नो एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस विक्टिमाइज जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं वो, तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट. कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो. हम भी बार बार, और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल. जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं. You know, तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर यू नो वाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट यू नो वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
0: ट्रू.
1: बिकॉज वी डोंट वी वुड लाइक टू हेल्प समबडी,
0: राइट, बट वी नॉट रियली हेल्पिंग.
1: यस.
0: You know, a help at that time would mean empowerment. लेकिन बार बार कहकर कि हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनी वन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है. You know, तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट. आफ्टर ऑल आई हैव टू फिनिश इट हियर. मुझे बाहर नहीं फिनिश करना, लेकिन बाहर ही अगर वो बार बार रिवाइज होता जाएगा तो अंदर तो कितना रिवाइज. बिकॉज फॉरगिव के साथ फॉरगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड के इट्स अ पार्ट एंड ऑफ लाइफ एंड इट इज ओवर. एंड इसमें हमें जो बहुत हेल्प करती है बात, वो है ये याद रखना कि इस ड्रामा में, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें हर सीन जो है वो कल्याणकारी है. एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस ड्रामा इज एक्यूरेट, इट इज परफेक्ट एंड इट इज बेनिफिशियल. ये ड्रामा बना ही इतना परफेक्ट तरीके से है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं हो रहा. इवन दो हमें लगता है
1: गलत
0: हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इम्परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है उसके पीछे रीजन
1: इट हैज़.

0: in this.
1: It has a reason. और अगर हम उस सीन को जो हमारे सामने आया है उस perspective से देखें कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, क्योंकि कोई भी incident जो होकर जाता है अगर हम उसमें से ठीक से निकल सकते हैं तो वो हमें stronger बना कर जाता है। तो वो मुझे कुछ सिखाने आया है, वो मुझे अपने comfort zone से बाहर हिलाने आया है, वो मुझे एक नई दिशा पर लेकर जाने आया है, लेकिन मेरे लिए अकल्याण कुछ नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वही एनर्जी सारी हमारी तरफ फ्लो होगी। तो ऑलवेज हैव द थॉट कि मेरे लिए जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, और अकल्याण सिचुएशन अगर होगी भी तो उसमें से भी कोई ना कोई कल्याण जरूर निकल कर आएगा, प्रोवाइडेड आई हैव द फर्म बिलीफ कि ये सिचुएशन मेरे लिए कल्याणकारी है। एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अंदर जो हमने पकड़ कर रखा है आई हैव टू लेट इट गो, ये जो बैगेज, यू नो हम लोग सब एक बहुत बड़ा बैगेज
0: है। एक आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि फॉरगेट, जब फॉरगिवनेस की बात है तो फॉरगेट, जब क्षमा की बात आती है तो भूलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी अगर मैं, चाहे मैं 15 साल पहले या 20 साल पहले किसी बात को जिसने मुझे उतना हर्ट किया होगा, आज भी मैं चाहूं एकदम से याद कर सकती हूं और फिर से जी सकती हूं, तो वो कंप्लीट अपनी मेमोरी से मैं कैसे डिलीट कर सकती हूं, वो बटन कैसे डिलीट कर दबा सकती हूं, क्योंकि जब तक वो डिलीट नहीं दबेगा तब तक वो क्षमा मुझे लगता है पूरी तरह से।
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेमोरी में अगर फिट है दैट मीन्स आई हैव नॉट फॉरगिवन। कई बार हम कहते हैं कि हाँ भूल गए, मैंने भूल दिया, फॉरगिव कर दिया एंड आई हैव फॉरगॉटन द होल थिंग। उस ऐसे लगता है कि भूल गया है, लेकिन थोड़े समय के बाद कहीं वो सारा ही बाहर फिर निकल कर आ जाता है, तो पता चलता कि भूला नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा सप्रेस कर दिया था। तो भूलना, फॉरगिव करने से भी ज्यादा मुश्किल शायद भूलना लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेमोरी से उसका ट्रेस हटा देना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए भी मुझे यही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि याद रखने से मैं उसको बार बार दोहराती हूँ, और जितनी बार, क्योंकि वो इंसिडेंट जो है वो डेफिनेटली मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत हार्मफुल था, लेकिन मैं जितनी बार उसको दोहराती हूँ तो मैं उस इंसिडेंट को उतनी बार जैसे कि अपने साथ रिपीट कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए कितना डैमेजिंग हो जाएगा। होती इवन छोटी सी चीज कि आपने एक बात एक बार कही लेकिन मैंने अपने आप को कम से कम 100 बार कही, तो विक्टिम किसने मुझे अपने आप को ज्यादा बनाया। तो हाउ टू फॉरगेट, आई थिंक हाउ वुड बी एबल टू फॉरगेट एन इंसिडेंट, जितनी बार भी वो इंसिडेंट सामने आए, याद आए वापस, आई विल हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, आई विल हैव टू स्टॉप देयर फर्स्ट, क्योंकि एफर्ट करना पड़ता है इस पे थोड़ा सा। देखो, याद करने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है और भूलने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है, जबकि दोनों चीजें नेचुरल है, याद और भूलना दोनों नेचुरल है, लेकिन आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि परमात्मा जिसको याद करना चाहिए उसकी याद नहीं आती, और जो बातें भूलनी चाहिए वो बातें भूलती नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी को रिटेन करना ज्यादा इजी हो गया है, और इतनी नेगेटिविटी रिटेन की है कि वो प्योरिटी फिर याद नहीं आती, क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो आई फील कि हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा कि जब भी वो सीन या वो व्यक्ति सामने आए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, जैसे हम एक घंटे में एक मिनट निकालते हैं, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा उस एक मिनट के लिए, उस सीन को, अगर वो सीन मेरे सामने आ गया है, परमात्मा से प्योरिटी की वाइब्रेशन लेकर, प्योरिटी की वाइब्रेशन उस सीन को देकर सीन को फिनिश करना पड़ेगा। दिस इज ओवर फॉर मी, यू नो, एंड सरेंडर करें उस थॉट को शिव बाबा के आगे। और ये नहीं है कि वो एक ही बारी में चला जाएगा, यस इट विल नॉट गो, बट देन एवरी टाइम इट कम्स उसको एंगेज न करें। अगेन वही चीज, जो चीज पसंद नहीं है उसके साथ बातें करने न बैठ जाए। जैसे कोई हमारे घर में आता है, अगर हम उसको बैठने दें और बातें करें तो वो रोज आएगा। अगर आपको वो मेहमान पसंद नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें उसको इशारा तो देना पड़ेगा कि यू आर नॉट वेलकम्ड इन आवर हाउस, लेकिन हम ही बिठाते बातें करते और फिर हम कहते ये तो रोज आ जाते हैं। द सेम थिंग आई हैव टू डू विद दैट थॉट, क्योंकि जब वो थॉट आएगी मुझे अंदर डिटैच होना पड़ेगा। तब हमने देखा कि उस इमोशन से अगर हम डिटैच हो जाएंगे तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन हम उसमें एंगेज हो जाते हैं तो वो और भी पावर,
0: क्योंकि वही कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो जैसे ही वो थॉट आता है, हमारा जो एक एडिक्शन वाली बात है, जो पेन लेने की जो बात है, तो वो बड़ी स्ट्रांगली हमें अपने

0: को कहना पड़ेगा दिस इज नॉट गुड फॉर मी,
1: दिस इज नॉट गुड फॉर मी बिकॉज यू नो आई हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम, बट दैट्स फॉर श्योर. एंड आई वुड प्रोबेबली हैव टू डू दिस, लेट्स से ईच वन टू देयर ओन. लेकिन 8, 10, 15 बार भी अगर हम इसको कर ले तो डिपेंडिंग ऑन हाउ डीप इट इज, इट विल फिनिश, वो फिनिश हो जाएगा. बिकॉज आफ्टर ऑल क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट की है, उसको वहां से डिलीट करना है. तो जब भी वो ऊपर आ जाती है हमें कॉन्शियसली बैठकर उसको प्योरिटी की वाइब्रेशन देके उसको वाइप आउट करना पड़ेगा उस स्लेट पे से. अगर वो वाइप आउट नहीं हुआ तो वो फिर आता जाएगा. हमें बीच में कोई व्यक्ति एक मिले तो उनको किसी ने उनके साथ बहुत बड़ा कुछ धोखा किया था, बिजनेस में या पता नहीं रिलेशनशिप्स में, ऐसे कुछ दोनों था. इट वॉज अ रिलेटिव इन बिजनेस में कुछ, और उन्होंने पूरी बात तो नहीं बताई लेकिन उनकी बात से ऐसा लगा कि जैसे कि यू नो बहुत ज्यादा बड़ी बात थी उनके लिए. तो और उसकी वजह से उनकी वाइफ डिप्रेशन में चली गई है. एंड ही सेड कि हमने उनसे अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया है, हम कभी उनसे बात नहीं करते, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि उनके साथ गलत कब होगा. मतलब दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस.
0: रिश्ता कहाँ टूटा?
1: हाँ, तो एंड ही सेड हर थोड़ी देर के बाद मेरे मन में यही चलता कि इनके साथ क्या, इनके साथ बुरा होना चाहिए, इनके साथ बुरा होना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया, इनके साथ बुरा होना चाहिए.
0: भगवान का न्याय होगा, यू नो लाइक सो मेनी टाइम्स
1: वी आर सेइंग दिस कि इन्होंने ऐसा किया ना, इनके साथ गलत जरूर होगा. आई सेड कि आपने मिलना तो छोड़ दिया, बोलना तो छोड़ दिया उनसे, लेकिन सोचना तो छोड़ा नहीं. तो कनेक्शन कहाँ टूटा? हम कहते हैं हमारा उनसे सारा कनेक्शन टूट गया. कनेक्शन, और वो जिस तरह से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था दिन में पता नहीं कितनी बार उनके बारे में सोचते,
0: कंटिन्यूस उनके साथ ही जी रहे हैं.
1: मैं कहा यू आर लिविंग विद दैट पर्सन. आई सेड इतना नजदीक तो शायद आपके कोई भी नहीं थे इस टाइम आपके परिवार में. इस इधर कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा. हम बाहर कनेक्शन तोड़ देते हैं और अंदर कनेक्शन उल्टा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं. तो वो कनेक्शन को अगर हम तोड़ते कि जब वो बोल भी रहे थे उस व्यक्ति के बारे में तो उस समय बोलते हुए भी उतना गुस्सा उनके अंदर क्रिएट हो गया जबकि वो बात कम से कम 8-10 साल पुरानी थी. तो आई सेड आज भी यू आर एबल टू क्रिएट सो मच एंगर इन योरसेल्फ जस्ट बाय यू नो टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट. तो आप जितनी बार सोचते होंगे आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं. तो जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ कि ये तो मैं नुकसान अपना कर रहा हूँ, दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग. वो एक अवेकनिंग हो जाती है. आई सेड उन्होंने कितना नुकसान किया आपका, लाखों का करोड़ों का, उतना ही किया होगा ना आपको. तो डिप्रेशन हो गया, आप रोज अपने आप को इतना नुकसान करते हैं, ये जो इतनी आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ये आपकी पूरे फैमिली को मिलती होगी सारा दिन. कौन ज्यादा नुकसान कर रहा है? ये बहुत डीप रियलाइजेशन है कि कौन मेरा नुकसान करता है. हम खुद अपना सारा दिन कर रहे हैं बाय going through that again and again. तो ये जो बैगेज हम कैरी करते हैं इसको हमें उतारना होगा. I have to let it go. इतना बड़ा बोझ हम लेकर चलते हैं. We have to try it out. कोई भी एक बात को ले लीजिए जो किसी ने आपसे कुछ कही, and today just tell yourself that I let it go. I really let it go. I will have to say it to myself, but very strongly with conviction कि after this never. इन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन इसके आगे मैं अपना भी और कोई नुकसान नहीं कर सकता. I have to let it go and actually see it
0: going,
1: falling off actually. And अगर by chance एक दो बार वो वापस भी आ जाए आपके पास तो remember मैंने छोड़ दिया है इस चीज को. Actually छोड़ना बहुत कहते हैं ना, कैसे छोड़े, क्या वो बटन है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, वो सिर्फ करना है. आई हैव टू जस्ट डू इट. जस्ट थिंक ऑफ एनी वन पर्सन जिसको आज दिन तक आप पकड़ कर बैठे हैं एंड जस्ट टेल हिम टूडे इन योर माइंड, फ्रीडम, आई लेट यू गो फ्रॉम टूडे. आफ्टर दिस यू कैन नॉट स्टे इन माई माइंड. आई एम नॉट गिविंग यू परमिशन. लेट इट गो एंड दे विल गो. हमने जबरदस्ती उनको पकड़ कर रखा हुआ था.
0: अगेन यू नो ओनस इज ऑन मी, यू नो बॉल इज इन माय कोर्ट.
1: एब्सोल्युटली फॉरगिवनेस एक इतनी पर्सनल चीज है कि किसी को बहुत मुश्किल लगती तो वही किसी को लगता कि ये तो बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी क्योंकि जिसको ये सत्यता समझ में आ गई कि फॉरगिवनेस से सिर्फ मेरा ही फायदा होगा तो उनके लिए वो मुश्किल नहीं है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आई हैव टू रिमेम्बर कि एक्चुअली डीप डाउन अगर अभी तक की हमने जो भी बातें शेयर की हैं वो अगर हमें रियली जड़ से समझ में आ गई कि मेरी हर्ट का कारण सिर्फ मैं, तो एक्चुअली फॉरगिव किसको करना है.

0: वाइब्रेशंस उस आत्मा को भी दे, ताकि जो नेगेटिव ब्लॉकेज है हम दोनों के बीच में, आई हैव टू फिनिश दैट ऑफ, ताकि वो आत्मा अब मेरे ऊपर ओवर पावर नहीं कर सके. मतलब वो नहीं करती, मैं ही करने देती हूँ, लेकिन उसको भी फिनिश करने के लिए आई हैव टू प्योरिफाई दैट रिलेशनशिप. तो उस सोल को इमर्ज करके उसको प्योरिटी की वाइब्रेशन दे, ताकि हमारे बीच में एक हीलिंग एनर्जी है एंड नॉट अ नेगेटिव एनर्जी.
1: एंड इट मे नॉट हैपन दैट रिलेशनशिप फिनिशेस ऑफ. No, it's the pain which finishes.
0: It's the pain which finishes. No, like the relationship. It's that negative energy. You know, what the blockage create ho gaya hai, that has to finish.
1: Usually, hum kya karte hain? Hum ye maan lete hain, fir ki relationship hi finishes hai.
0: Hum log relationship finish kar dete hain aur pain ko to abhi bhi rakhte hain.
1: To Dr. Shivani, aaj ka jo pura aspect tha, wo bahut sundar raha aur kshama aur जो भूलने की बात थी उसका एक जो एक दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत जरूरी है. और उसके बाद क्षमा किसे करना है ये भी बहुत जरूरी है, अंडरलाइन फैक्टर ये है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमशान जी. जिंदगी में कितनी बार हमने सोचा है कि हम बड़े बन जाते हैं और क्षमा करते हैं, लेकिन अगर सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिना भूले हम कभी भी क्षमा नहीं कर सकते. और जब भी हम चाहें उस बात को जिसने हमें कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई है, कहीं ना कहीं याद कि किसी न किसी पिटारे में हमने उसे रखा हुआ होता है, अगर सही तरह से अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि एक बात हमें और क्लियरली समझनी पड़ेगी कि ये हीलिंग, ये पूरी जो बातचीत है, ये हमारे अपने लिए हो रही है. लोगों के बारे में, अपनों के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, पहले अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है. और जिस हर्ट को, जिस नफरत को हम अपने साथ लिए रखते हैं, वही हमें कहीं ना कहीं बहुत खाब दे रही है. तो डिसीजन एक हमेशा की तरह हमारे अपने हाथ में होता है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने सवाल, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. अगली कड़ी में फिर करेंगे आपसे मुलाकात. अब आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वॉन्ट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जब भी बात होती है एक सुंदर जीवन की, हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि जीवन सुंदर तब होगा जब हमारे साथ अच्छे दोस्त होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे, या अच्छी जॉब होगी, नौकरी अच्छी होगी, अच्छे तंदुरुस्त होंगे। बहुत सारी चीजों को हम हमारे कंडीशंस पर रख देते हैं कि ये होगा तब हम कहेंगे जीवन सुंदर है। लेकिन जीवन को सुंदर बनाने का जो उत्तरदायित्व है वो हमारे पर होता है, ना हमारे दोस्तों पर, ना हमारे संग पर। इन सब के ना होने पर या शारीरिक रूप से अगर हम असक्षम हैं, तब भी क्या हम हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं? क्या हम इन विरोधों का सामना करते हुए इनसे ऊपर चढ़ करके हमारे जीवन को एक ऐसा रूप दे सकते हैं जिसको देख देख करके लोग खुश हों और अपने जीवन में प्रेरणा भरे? यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज के एपिसोड में हम एक ऐसे ही मेहमान को लेकर के आए हैं। आप सुन रहे हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन और मैं अजय शांतनु आपके बीच में लेकर के आया हूँ आज के हमारे मेहमान को। आज की हमारी मेहमान जो है वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही प्रकाशमान है। आज हम मिलेंगे डॉक्टर दीपा मलिक से। डॉक्टर दीपा भारत की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 68 राष्ट्रीय पदक प्राप्त किए हैं खेल जगत में, बावजूद इसके कि वो एक दिव्यांग महिला है। उन्होंने 23 से ज्यादा पदक प्राप्त किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के 4 बड़े पुरस्कार जो राष्ट्रपति सम्मान है उनसे वो नवाजी जा चुकी हैं। अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान और भी कई ऐसे सम्मान हैं जो उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। कई ऐसी कीर्तिमान और रिकॉर्ड हैं उनके नाम पे जो केवल उन्होंने बनाए हैं और आज तक किसी और ने नहीं बनाए। एक ऐसी हस्ती के साथ आज मिलने का हमारा सौभाग्य है। उम्मीद करेंगे आज के एपिसोड से आप बहुत कुछ बटोरेंगे। देर नहीं करते चलिए आइए उनका करते हैं हम स्वागत हमारे स्टूडियो में। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: आप एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं और एक जानी मानी हस्ती के लिए समय निकाल पाना वाकई में दिक्कत वाला होता है मामला, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और आप हमारे श्रोताओं से मिलने के लिए आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं।
4: मुझे लगता है समय अगर किसी बहुत बेहतरीन कार्य में लगाया जाए जिसमें हम अपने देश की तरक्की या लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज लेके चलें, तो जब पर्पस इतना स्ट्रांग हो जाता है तो समय मुझे लगता है उसके आगे हल्का पड़ जाता है।
3: जी, व्यस्तता फिर वहाँ कोई मायने नहीं रखती जहाँ पर आपका इंटेंशन जो है, जो भावना है वो
4: देर इज अ वे, देर इज अ वे, देर इज ऑलवेज
3: चाहे वहाँ रहा है। यस, एब्सोल्युटली। तो आज के हमारे श्रोता साथियों के लिए जो कहानी आप पेश करेंगी वो है आपकी कहानी, आपकी जुबानी, और हम जानना चाहेंगे दीपा का सफर डॉक्टर दीपा मलिक तक कैसा रहा, क्या उतार चढ़ाव आए, कौन सी परीक्षाएं आई, कैसे उनका सामना किया गया, कौन कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी लगती हैं आपकी खुद की कहानी में, वो हम जानना चाहते हैं।
4: मेरे जीवन की कहानी अगर दीपा का, डॉक्टर दीपा बनने के सफर का, तो वो बहुत लंबा है, लेकिन उसको अगर मैं कुछ शब्दों में और जल्दी से शेयर करना चाहूँ तो वो उस नन्ही बच्ची की कहानी है जो पहली बार पैरालाइज हुई ट्यूमर की वजह से 5 साल की उम्र में, और फिर उसने अपने परिवार का स्ट्रगल देखा क्योंकि साइंस तकनीकी इतनी ज्यादा नहीं थी, घर में एक बड़ा भाई भी था, पिता के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, एक नौकरी थी फौज की, उस सबको बैलेंस करते हुए लगातार 4 साल उन्होंने मेरा इलाज करवाया, सर्जरी करवाई,

रिहैबिलिटेशन करवाई और एक लड़की है करके मुझे कभी अलग नहीं छोड़ा। उनके लिए मैं उनकी उनकी बच्ची थी और अपने एक शिशु के लिए बिना किसी भेदभाव के उन्होंने बहुत मेहनत करी। मेहनती माता पिता की एक बेटी हूँ और बड़ी हुई तो मुझे बहुत एनकरेज किया गया, आप खेलो, करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लो। और क्योंकि पिताजी फौज में अफसर थे तो हमें बहुत अवसर मिला एक जगह से दूसरी जगह जाने का, अपने प्यारे देश को देखने का, नए मित्र बनाने का, नई जगहों पे जाके वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की हिस्ट्री जानने का। तो मैं एक सौभाग्यशाली बच्ची रही। हालांकि लोगों ने ये कह दिया था कि बचपन में क्या करोगे इस बच्ची पे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अपंग बच्ची तो भगवान ले जाए वो ज्यादा अच्छा है, पूरी जिंदगी का एक बोझा सा हो जाएगा, लड़की जात है। तो मैंने ये बहुत सारे टैबूज, ये बहुत सारी नकारात्मक सोच, मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रगल शायद शरीर का दर्द नहीं या चलने की एक्सरसाइज नहीं, जो नकारात्मक सामाजिक सोच थी, जो लोगों का एक एटीट्यूड था, शायद वो सबसे ज्यादा स्ट्रगलपूर्ण रहा, क्योंकि वो आपका मनोबल भी गिरा देता है। माता को अक्सर रोते देखा, पिता को परेशान देखा, वो अपनी जिंदगी में जद्दोजहद कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, रूटीन सेट कर रहे थे, अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करते थे, मेरे ट्रीटमेंट को बैलेंस करते हुए, अपने फाइनेंसेस, मुझे याद नहीं आता कि माँ ने उन 4 सालों में शायद कोई नया कपड़ा भी खरीदा हो। पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे तो साइकिल पे जाया करती थी, तो बहुत सैक्रिफाइस उन्होंने किया। लेकिन उस मनोबल की तारीफ की बजाय लोगों की सोच कि क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, जी भी गई और लंगड़ी रह गई तो क्या करोगे, लेकिन मैं चली, शायद उनका हौसला काम आया। और आगे फिर मेरा भी विवाह एक फौजी अफसर से हुआ, लेकिन शायद मेरी भी परीक्षा अभी बाकी थी। मेरी बड़ी बिटिया का एक्सीडेंट हुआ जब वो 14 महीने की थी और हेड इंजरी की वजह से उसका भी बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ। बहुत छोटी बच्ची थी तो डॉक्टरों ने ये कह दिया कि उसकी इंटेलिजेंस पे भी असर आ सकता है क्योंकि सर पे चोट लगी है। और 20 साल के गैप के बाद वही बातें वापस आ गईं कि लड़की है, क्या करोगे, और जी भी गई और पागल दिमाग की रह गई तो क्या करोगे। तो मुझे लगता है कि वो सब वही लोग थे जो स्कूल भी जाते थे, जिन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन भी करी थी, क्योंकि मैं बहुत पढ़े लिखे समाज से आती हूँ। और एक महिला बच्ची, एक लड़की के प्रति ऐसी सोच, और एक दिव्यांगता, अब तो बहुत अच्छा शब्द दिया आदरणीय प्रधानमंत्री ने, लेकिन तब तो अपंग अपाहिज ही कहा जाता था, कि हमारी हिम्मत अपंग थी या उनकी सोच अपंग थी, ये सवाल मैंने हमेशा उठाया अपने आप से। और मुझे लगा कि क्या स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हर कोई मंदिर जाता था, चर्च जाता था या दरगाह जाता था, या मतलब सबके अंदर ईश्वर के प्रति, जो भी वो ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, तो क्या वो सिर्फ अगरबत्ती जलाना या घंटी बजाना या एक प्रेयर करना जानते हैं या उसका अर्थ जानते हैं? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि हमारी आत्मा जीवंत होती है और शरीर नश्वर है, और जो आपकी आउटर ब्यूटी है उससे ज्यादा अंदर की ब्यूटी को पहचानिए। तो क्यों वो लोग नहीं पहचान रहे थे? तो एक वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। लेकिन जब मैंने ये सुना कि माँ की बेटी बीमारी जो थी वो बेटी को लग गई, तो मैं आज मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ, क्योंकि मैंने देविका के साथ बहुत मेहनत करी और आज हम दोनों एकमात्र माँ बेटी की जोड़ी है जो अपनी अपंगता से ऊपर उठकर अपनी दिव्यांगता को समझते हुए देश के लिए खेली है और सामाजिक कार्य में जुड़ी है। वो अपने चैलेंजेस से ऊपर उठी है, मैं अपने चैलेंजेस से ऊपर उठी हूँ और खूब मेहनत करी। मेहनत में भी बहुत चैलेंजेस जुड़े हुए थे, क्योंकि जब मैं मेरे ट्यूमर दोबारा आए, मैं अपनी बड़ी बेटी का इलाज करवा ही रही थी, छोटी बेटी 3 साल की थी, हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे, और मेरे ट्यूमर वापस आने की वजह से और 2-3 सर्जरीज होने की वजह से मेरा छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। मैं आनंदित थी कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी, 1 बेटी का इलाज देखना था। मैं चल नहीं पाती थी, लेकिन मेरे पास एक व्हीलचेयर थी, पहिए थे जिनसे मैं अपनी मोबिलिटी को समझ रही थी। तो

0: को जो एक मार्ग, एक सिंबल होता है प्रोग्रेस का, एक सिंबल होता है मूवमेंट का, तो मुझे बार बार कहती थी व्हील चेयर बाउंड हो गई। तो मैं कहती थी जिस चीज पे पहिए लगे हैं वो बाउंड कैसे, वो तो मूवमेंट है। फिर मुझे सोच पे हैरानी हुई, देखिए ये सोच कब बदलेगी। और फिर इसी सोच के खिलाफ मैंने एक लड़ाई शुरू करी, और लड़ाई मतलब ऐसा नहीं कि मैं तलवार लेके निकल गई या मैंने लोगों को गाली बकना शुरू कर दिया। लड़ाई का मतलब था कि मैंने आई विल मेक माई एक्शंस स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। मैं उनकी सारी सोच को बदलने के लिए कुछ ना कुछ करती चली जाऊंगी। फिर मेरे रास्ते में जो भी कुछ आया, चाहे मैंने मोटरसाइकिलें चलाई, मैंने गार्डन रेस्टोरेंट खोला, मैंने व्हील चेयर पे बैठ के कंप्यूटर सीखे, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खेलों की दुनिया ज्वाइन करी 36 वर्ष की आयु में, और बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने देश के लिए अपने नेशनल लेवल पे 68 मेडल जीते, 68, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 23 मेडल जीते। और बहुत अनकन्वेंशनल एज में मैंने ये काम शुरू किया, साथ साथ एक सोशल सर्विस का भी इनिशिएटिव मेरी बेटी ने शुरू किया व्हीलिंग हैप्पीनेस के नाम से, जिसमें हम अपने जैसे लोगों को हिम्मत देते हैं। तो लोगों ने तब भी बहुत मजाक उड़ाया, मैंने कहा ना मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल लोगों की सोच ही थी, 40 वर्ष की आयु में क्या खेलेगी, 40 वर्ष की आयु में दो बच्चों की माँ है, अपना करियर बनाने निकल गई, बच्चों का टाइम है करियर बनाने का। तो आप देखेंगे 42 वर्ष की आयु में मेरे को अर्जुन पुरस्कार मिला 42 इयर्स में, और 46 इयर्स में मुझे एक ओलंपिक का मेडल मिला, 47 इयर्स की एज में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ, और 49 इयर्स की एज में मेरे को खेल रत्न प्राप्त हुआ जो कि खेलों के जिले मिलता है। तो ये बड़ी अनकन्वेंशनल कुछ चीजें थी, और जो मैंने जिंदगी से सीखा, मैंने पढ़ाई करी, मुझे बहुत मौका मिला अपने देश की नुमाइंदगी जगह जगह करने का। लेकिन जो मेरी लड़ाई की असली जीत थी वो मुझे तब मिली जब मुझे ये वाला किताब मिला, आप इसको पढ़ेंगे, स्क्रीन पे मैं शेयर करती हूँ। इस पे लिखा है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, और ये मुझे यूनाइटेड नेशंस नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर की जूरी से प्राप्त हुआ। और जब लोग कहते थे ना कि माँ बीमारी बेटी को लग गई, तो मुझे लगता है कि देविका को शुक्र है मेहनत करने की, अच्छी सोच रखने की, ये बीमारी लगी। और वही खिताब फिर 2-3 साल बाद देविका ने भी जीता, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो पता नहीं, बीमारी तो शायद मैंने उसे पास ऑन नहीं करी, लेकिन एक जज्बा, एक हौसला मैंने उसे पास ऑन किया। अगर मुझे एक विदेश की प्रधानमंत्री ने बुलाया और अपना फेलो बनाया, जैसिंडा आर्डन मैडम है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुझे वेलकम किया, तो फिर मेरी बेटी को भी एक गवर्नमेंट स्टेट लीडर, एक क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरफ से यूथ यंग लीडर अवार्ड की प्राप्ति हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति द्वारा तो हम दोनों माँ बेटी हैं ही, लेकिन विदेशों में भी जाकर ये प्राप्त करना, तो ये कुछ सफल रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जितने भी मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, देश के लिए मेडल जीते, नीतियों में मैंने काम किया, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, लिम्का रिकॉर्ड्स जो मैंने बनाए, नदी में भी मैं तैरी, गाड़ियां भी मैंने पहाड़ों पे चलाई, तो उसके लिए मुझे फिर एक नहीं, दो नहीं, आज 3 डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। तो ये सफर मुझे यहाँ तक लेकर आया जहाँ पर फिर मैं डॉक्टर दीपा मलिक बन गई।
1: मैं तो समझता हूँ बहुत जल्द किसी वाइज डायरेक्टर को ये स्टोरी पता चलनी चाहिए, और एक बहुत उम्दा बायोपिक बनना चाहिए इस पे, क्योंकि ये कहानी न केवल रोमांचक है लेकिन वास्तव में अंतरात्मा को भी आत्मविश्वास और मूल्यों से भर सकता है, और ऐसी कहानियों की अभी बहुत आवश्यकता है समाज को, क्योंकि जिस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एक पड़ोसी राज्य के साथ या पड़ोसी देश के साथ जो मतभेद चल रहा हो, या व्हाटएवर इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, अगर हम देखें इंडिविजुअल

0: पे एक व्यक्तिगत लेवल पे व्यक्ति को आत्मविश्वास आशा इनकी बहुत आवश्यकता है। सिमिलरली एट अ कम्युनिटी लेवल एक संगठित रूप में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और तब जब इस प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और वो दिखाते हैं कि चाहे कठिनाइयां कितनी भी रही हो लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा ही मिला है, आशा का फल हमेशा पॉजिटिव ही रहा है और विश्वास कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। ये जो चीजें आपने आज हमारे साथ शेयर की आपकी कहानी के थ्रू बहुत ही मार्मिक थी, बहुत ही पावरफुल भी थी। बट जैसे आपने कहा कि आपको हमेशा से इस चीज पे स्ट्रेंज फीलिंग होती थी कि लोग ध्यान किस चीज पे दे रहे हैं, लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है। एक तरफ हम कहते हैं भारत अध्यात्म का कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरी तरफ वही भारत है जहां पर गीता में कहा हुआ है कि भाई पहला पाठ है आत्मा का, आप शरीर है ही नहीं आप आत्मा है, ये ध्यान रखिए। अध्यात्म की बात करते हैं और वहां पर वही भारतीय जनता जो है टोटली फोकस्ड है ऑन द आउटसाइड, मतलब वो कौन कैसा दिखता है, रंग कैसा है, चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, बोलते कैसे हैं, इन चीजों पे फंस जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये केवल शहरों में नहीं है, ये गांव में भी है और कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, लेकिन है जरूर। आपके हिसाब से दीपा जी इस प्रॉब्लम को अगर समाप्त करना है, अगर आपके पास कोई जादुई छड़ी हो तो आप कहां से शुरू करेंगे?
1: मैं अपने खुद से शुरू करूंगी, स्वयं से, अहम ब्रह्मास्मि। आप मुझे याद है कि मैं अक्षरधाम के टेंपल गई थी और वहां पे जो पहली चीज जब आप उसमें एंटर करते हैं तो एक प्रश्न आता है कि आपका शिल्पकार कौन। अगर मेरे को ये कुछ करना होता ऐसा तो मैं जरूर सबको यही कहती कि खुद से शुरू करो, अहम ब्रह्मास्मि। हम खुद अपने किरदार को संवार सकते हैं। जैसा कि ये बात मैंने देखी थी जब मैं अक्षरधाम देखने गई थी दिल्ली में, और उसमें जो पहला आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक सवाल आपको बताया जाता है कि आपका शिल्पकार कौन, किसने आपको बनाया, कौन आपको प्रतिरूप देता है, कौन आपको आकार। और जब भी हम आकार की बात करते हैं तो हम बायोलॉजिकल या फिजिकल बींग की बात नहीं करते हैं। और एक ऐसी चट्टान सी थी और उसमें था कि आपका शिल्पकार कौन, और फिर वो रिवॉल्व होता है और ये दिखाया जाता है कि खुद इंसान खुद ही को शिल्प कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आप खुद के शिल्पकार हैं और आपके औजार आपके माध्यम है शिक्षा। तो क्या शिक्षा में आप सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ाई करते हैं? और मैं ये कहती हूँ कि जो शिक्षा नहीं भी प्राप्त कर पाते, वैसे तो आप शिक्षा का साक्षात करता का बहुत ज्यादा मैं जानती हूँ अवेयरनेस है, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता वो भी इंटरनेट एक्सेस करना जानता है, रील देखना जानता है। तो कहने का अर्थ है कि अब हमारे पास बहुत सोर्सेज हैं एजुकेशन को प्राप्त करने के, लेकिन क्या एजुकेशन माध्यम सिर्फ नंबर लेने का, डिग्री लेने का, पैसा कमाने का ही एक साधन है? क्या अपने कैरेक्टर की कमाई करने का नहीं है? क्योंकि जब मैं बचपन में उदास हो जाती थी, मैं चल नहीं पाती थी या मेरी टांगे कमजोर थी, तब मुझे मेरे पिताजी मेरी कक्षा की किताबों से ही लेसन पढ़ाते थे। तो कक्षा की किताब में कविता होती थी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो,
0: तुम बड़े चलो,
1: सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, धीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो वहीं, हिम्मत देने की कविता है। तो अगर हम अपने पाठ्य पुस्तक हम प्राइमरी सेक्शन की कविताएं भी अगर पढ़ लेंगे तो हमें अपने जीवन के सारे वैल्यूज, मतलब इतने सुंदर पाठ्य पुस्तक में चैप्टर्स थे। मुझे ओलंपिक लेवल पे खेलने की प्रेरणा मेरी पांचवी छठी क्लास की बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, जिम्नास्ट लड़की थी, बच्ची थी 13 साल की, नादिया कोमानिच, और उन्होंने परफेक्ट 10 हासिल किया। और मेरे पिता ने मुझे बार बार ये बोला कि परफेक्ट 10 हासिल करना सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वो भी एक मात्र 13 साल की बच्ची के लिए, तो कितनी प्रैक्टिस करी होगी उस बच्ची ने इतनी छोटे से उम्र में। तो वो बात भी मेरे साथ रह गई कि उन्होंने एक चीज को, ध्येय को पकड़ा और उसमें इतनी मेहनत डाली। तो कहने का अर्थ ये है कि, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जैसा आपने कहा, हम एक ऐसे भारतवर्ष में हैं जिसे अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर साधना करना जानते, इस बुक के मालिक हैं या बड़े बड़े इनके मालिक हैं, जब वो थक जाते हैं अपने काम से। तो फिर वो हिंदुस्तान में आके मेडिटेशन करना सीखते हैं। तो जो हमारे पास ऑलरेडी रिच इतनी हेरिटेज है, इतना हमारे पास नॉलेज है, तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाते हैं, क्यों नहीं हम अपने अंदर। और मैं आपको यहाँ पे इस चीज को थोड़ा खेलों से भी जोड़ के बताती हूँ। जब हम स्पोर्ट्स करते हैं तो हमारे को स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मिलता है, और मैंने क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स खेला 40 वर्ष की आयु के बाद, तो थोड़ा बहुत जिंदगी में कभी हमने कुछ रामायण पढ़ ली या गीता पढ़ लिया या कोई वेद पढ़ लिया, या तो मेरा शायद एक्सपीरियंस बाकी बच्चों से ज्यादा रहता है क्योंकि मेरे से आधी उम्र के बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे उस वक्त। तो मैंने यही देखा कि मेंटल वेलबींग, फोकस, एक्सरसाइजेस आर नथिंग बट ध्यान, इंटरनलाइजेशन। हमें विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस सिखाई जाती थी कि आप आंख बंद करके सोचिए कि अब आप गोला फेंक रही हैं, आप भाला फेंक रही हैं। मैं कही दिस इज नथिंग बट लुकिंग इनवर्ड एंड ट्रेनिंग योर माइंड एंड प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग इन योर माइंड, सो इट इज अ माइंड पावर एंड इट इज ऑल अबाउट माइंड ओवर बॉडी। तो माइंड के में विचार जैसे होंगे वैसी बॉडी बनती चली जाएगी। तो मैंने ये बात स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी देखी, और दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि जो गोला मैं फेंक रही हूँ या भाला मैं फेंक रही हूँ, मुझे ये बताया गया कि आप फोकस रखिए, उसकी ग्रिप अच्छी रखिए, लेकिन उसी चीज को जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने जो माइंड कोच रहे मेरे, उन्होंने मुझे ये समझाया कि आपका जो हाथ में मेटल पीस है, अगर आप साइंस पढ़े, फॉरगेट अबाउट अध्यात्म, फॉरगेट अबाउट वेद, साइंस कहता है दैट एवरी एनर्जी, एवरी एटम हैज एनर्जी, एवरी नॉन लिविंग थिंग एग्ज्यूड्स एनर्जी, राइट। तो जब हमारी एनर्जी और उसकी एनर्जी एक होगी तभी आप अपने आप को सिंक्रोनाइज करेंगे। तो एनर्जी जब मैच होएंगी, मेरी बॉडी की एनर्जी उस भाले की एनर्जी के साथ हमें वन करनी है, तो सिंक इतना अच्छा होगा। तो उसको अब आप दोनों तरीके से देखिए, आप उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से फोकस देखिए, सिंक बोलिए या एनर्जीज को मैच करना बोलिए। तो हम लोग बहुत डीप सोचते नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन।
0: ये जो आपने बात कही कि हम डीप सोचते नहीं, क्योंकि हम शायद बहुत ज्यादा आउटपुट ओरिएंटेड हो गए हैं, हमको रिजल्ट चाहिए, और ये सारी चीजें जो सोचने वाली वो प्रोसेस में होती है। अगर प्रोसेस के दौरान आपने सोच लिया तो रिजल्ट चाहे कैसा भी हो आपको पैसिव थिंकर नहीं बनाएगा, आप एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेटेड पर्सन रहेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया कि लोग फल के प्रति इतने ज्यादा एकाग्र होते हैं कि वो जो कार्य है उस पे कम ध्यान देते हैं, या लोग जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड इतने हो जाते हैं कि वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं। और जो भी आप आज आपने बातें शेयर की, इट इज बिकॉज यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस।
1: यस, पर इसमें भी डायकोटमी है, इसमें भी थोड़ा सा पैराडॉक्स है। अगर हम महाभारत या हम गीता पे भी हम ध्यान दें, तो एक तरफ अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती है और कुछ नहीं दिखता, इसका मतलब उनका पूरा फोकस एंड रिजल्ट पे था, ध्येय पे था, गोल पे था। और उसी में हमें ये बताया जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। सो इट इज बोथ, यू हैव टू लुक एट द एंड गोल, बट इन द बागेन एंजॉय द जर्नी एज वेल। कर्म पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना फल पे ध्यान देना है।
0: एक्चुअली आई थिंक समवेयर डाउन द लेन पीपल फॉरगेट टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, हम संतुलन बनाना भूल जाते हैं। हम कभी बहुत ज्यादा फल पे ध्यान देते हैं या तो कभी बहुत प्रोसेस पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन वो जो संतुलन है वो कायम रखना जरूरी है।
1: एंड आई थिंक दैट बैलेंस कम्स व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। एक आप अपनी अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं और खुद से बात करना शुरू करते हैं, तब वो बैलेंस आता है।
0: जी, एक चीज जब आप अपना ये आंसर शेयर कर रहे थे, मुझे जो बहुत बात पसंद आई वो ये कि आपके पिताजी का जो रवैया था आपकी स्थिति पर, वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं था। हो सकता है वो जरूर बहुत स्ट्रगल से खुद गुजर रहे होंगे, क्योंकि एक पिता के लिए, एक अभिभावक के लिए उसके बच्चे को परेशान देखना कोई सरल बात नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन

0: उस मुश्किल को या उस असमंजस को उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया और करके आपके सामने जब भी वो आए, बहुत पॉजिटिव मोटिवेटेड पेरेंट्स की तरह सामने आए। एक अभिभावक का रोल क्या है जब कोई बच्चा चाहे मानसिक तकलीफ से गुजर रहा हो या शारीरिक तकलीफ से गुजर रहा हो या कार्य व्यवहार पढ़ाई लिखाई किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से जब बच्चा गुजर रहा है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ पेरेंट? अभिभावक का क्या रोल होना चाहिए?
1: जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और उसको लकवा हुआ तो मैं बहुत नाराज हुई ईश्वर से कि मुझे ही क्यों, बार बार क्यों। लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद ईश्वर को पता था कि मुझे पता है इस बच्चे को कैसे पालना है, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से सीख लिया था, मैंने देख लिया था कि उनका क्या व्यवहार रहा मेरी प्रति। और शायद वो मेरी परीक्षा का भी समय था कि क्या मैंने कुछ सीखा जीवन में। और आज जितनी इनायत ईश्वर की है, चाहे मेरी बेटी को बाएं साइड अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है या मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन ट्रस्ट में आज जो हमारी जिंदगी है उसके लिए ईश्वर को इतना बड़ा धन्यवाद है। वो भी एशियन गेम्स खेली है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है अभिभावक की जो ड्यूटी आपने बताई, पेरेंट्स की जो ड्यूटी है, वो वैल्यू सिस्टम को ग्रो करने में है। और सबसे बड़ा जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैमिली, किसी भी कम्युनिटी के लीडर के लिए, क्योंकि पेरेंट्स लीडरशिप रोल में आ जाते हैं, उन्हें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी टीम, आपके बच्चे या जिन भी लोगों को आप लीड कर रहे हो, वो वैसे कभी नहीं बनेंगे जैसे आप चाहते हो, वो वैसे बनेंगे जैसे आप हो।
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो सीखता है वो कॉन्शियस माइंड से 10 गुना सीखता है। आप कॉन्शियसली
0: बता करके सिखाने से बढ़िया है कि आप बन करके सिखाएं।
1: बिल्कुल। और अगर आप एक बच्चे को ये बोलते रहेंगे तुमने लाइट ऑफ नहीं करी, तुमने पानी चलता छोड़ दिया, तुमने ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना, प्लैनेट को बचाओ, सस्टेनेबिलिटी करो, और आप खुद ही कमरे से जा रहे हैं लाइट ऑन छोड़ के और नलका टपकता छोड़ के, तो आप कितना भी सिखा लें वो बच्चा नहीं सीखेगा। सबकॉन्शियसली वो वही करेगा। और आप देखिए, आप किसी को भी, कोई भी सुन रहा हो, मेरे बच्चे मुझे कभी कहते हैं आप तो नानी बनती जा रही हो जैसे समय बीत रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस से आप इमीडिएटली रिलेट करते हो कि इस वक्त हमारे पेरेंट्स ने उस चीज को कैसे डील किया। वो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग मार्गदर्शन बन जाता है। तो यू हैव टू बी द राइट रोल मॉडल्स फॉर योर चिल्ड्रन।
0: यू बात जो आपने बताई, दो बातें, एक तो कि पेरेंट्स का जो ड्यूटी है वो बच्चों के मूल्य को बहुत स्ट्रांग बनाना है, जो मूल्य है, वैल्यू सिस्टम है, उसको स्ट्रांग बनाना। और दूसरी जो आपने बात कही कि वो वैल्यू सिस्टम पहले खुद में स्ट्रांग बनाना, खुद उसका एग्जाम्पल बनकर के फिर बच्चों के सामने कोई बात रखना।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं जानना चाहूंगा इंडिविजुअली, वन वैल्यू ऑफ योर फादर, वन वैल्यू ऑफ योर मदर दैट यू रियली एम्बॉडीड, मतलब एक गुण आपकी माँ का, एक गुण आपके पिता का जो आपने उनसे लिया, और उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
1: देखिए, माता से मैंने जो सीखा कि आपका हुनर, आपकी शिक्षा और आपका आत्मविश्वास आपको कभी छोटा महसूस नहीं होने देता, क्योंकि मेरी माँ के पास 3 ही साड़ियां होती थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत गाना गाती थी, उनको इतनी कविताएं आती थी, इतनी शायरी आती थी, और वो इतनी अच्छी वक्ता हैं। आज तक 79 इयर्स की हैं, लेकिन कभी भी कोई भी आर्मी में फंक्शन हुआ, वेलफेयर या बड़ा फंक्शन, अंग्रेजी ना जानते हुए भी हमेशा उन्हें चुना जाता था माइक के ऊपर पूरी इवनिंग को चेयर करने के लिए, क्योंकि वो समा बांध देती थी। और उनकी रिपीट करी हुई साड़ी कभी भी किसी को नजर नहीं आती थी।
0: वाह।
1: कि वो कोई नहीं, और उनके जमाने में जब वो 60s में फौज में भर्ती होकर आई थी, तो मेरे पिता जैसे बहुत कम लोग थे जो किसान परिवार से थे या गरीब परिवार से थे। द आर्मी वॉज ऑलमोस्ट जेनरेशन ऑफ रॉयल फैमिलीज, रिच फैमिलीज, एलीट फैमिलीज, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन वो कभी भी मेरी

0: करके, चाहे हम जब पार्टीज होती थी घर में किसी को न्योता देते थे, वो एक ही कॉर्निंग के डोंगे का सेट होता था। वो 10 बार भी लोगों को बुलाएंगी तो उनके पास वही कांच के 5 डोंगे होते थे, लेकिन उनका खाना सर्व किया हुआ लोग 5 महीने तक याद रखते थे, क्योंकि उसके अंदर परोसा गया खाना इतना स्वादिष्ट बनता। तो मैंने माँ से ये सीखा कि आपको अगर हुनर है और हुनर में सच्चाई है, जैसे कि आज कई मेरी फ्रेंड्स हैं वो मुझे फोन करके बोलती हैं हम यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, और मेरे साथ वो मिलना चाहती हैं, समय बिताना चाहती हैं, हम लोग बहुत गैदरिंग्स करते हैं, सहेलियां मिलती हैं, और उनसे पूछा जाता है तो बोलते हमें तो दीपा की व्हीलचेयर नजर ही नहीं आती, हमें तो दीपा वैसी ही लगती है जैसी कॉलेज में हुआ करती थी, क्योंकि मैंने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जैसे मम्मी ने कभी अपनी रिपीट करी हुई साड़ी अपने पे हावी नहीं होने दी। सो वो मैंने अपनी माँ से सीखा। जो दूसरी, जो पिता से जो मैंने चीज सीखी, वो मैंने ये सीखा कि कंटिन्यू टू लर्न, आप जितना सीखोगे आप उतना जीतोगे, कभी सीखना मत छोड़ना। और माता पिता को समर्पित मैंने एक कविता लिखी थी कि उन्होंने क्या सोच के मेरा नाम रखा होगा, तो उसका अंतिम मैं आपको पैराग्राफ सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि आग की ज्वाला सा ज्योति के उजाला सा, आग की ज्वाला सा ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा, जीवन के किसी भी संघर्ष से डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, उम्मीद का एक नया दिया जलाना।
1: क्या अक्षर अक्षर सत्य है इसमें, और जो कि आप कर भी रहे हैं, ये दिखता है आपके खुद के जीवन में, लेकिन ये झलकता है आपके बच्चों के जीवन में भी, और मैं समझता हूँ और भी लोग जो आपके आसपास हैं, दे आर गेटिंग दिस, मैं कहूंगा ये पॉजिटिव इन्फेक्शन है, और ये पॉजिटिव इन्फेक्शन बड़ा अच्छा है।
0: मुझे कहती है, मेरी फ्रेंड्स कहती है मुझे विटामिन दीपा चाहिए, मैं घर आ जाऊं। मेरी कई सहेलियां जो ऐसे बोलती है, और मेरे लिए मुझे लगता है वो किसी भी मेडल से बड़ा है।
1: जी, और अब तो हम भी कहेंगे कि रेडियो मधुबन और हमारे श्रोताओं को भी विटामिन डी अर्थात विटामिन दीपा की आवश्यकता पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। आपके परिवार में आपके भाई भी हैं और आई थिंक अदर सिबलिंग्स भी होंगे, या आप सिर्फ दो ही भाई बहन हैं?
0: हम दो ही हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो भी फौज में अफसर हैं।
1: तो मुझे ये जानना था जैसे कि परिवार में क्या होता है जब बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली बहुत लर्न करते हैं, माता पिता या बुजुर्गों से लर्न करना एक अलग रूप होता है, और एक होता है पीयर टू पीयर लर्निंग जिसमें वो अपने से थोड़े छोटे या थोड़े बड़े लोगों से सीखते हैं। तो पीयर टू पीयर लर्निंग में या हॉरिजॉन्टल लर्निंग में आपने अपने भाई से क्या सीखा, एंड हाउ डिड ही सपोर्ट यू इन योर जर्नी?
0: तो मेरे भाई से मैंने जो सीखा वो देखा अथक परिश्रम करना। वो कोई भी चीज हाथ में लेता है तो उस पर पूरी जान झोंक देता है, फौज का भी कोई काम है, कोई प्रेजेंटेशन है, उन्हें कुछ भी करना है तो वो बहुत मेहनत से करते हैं, डिलीजेंटली करते हैं, कम्प्लीटली करते हैं, और आज भी वो PhD कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 56 ईयर्स ओल्ड हैं, फौज का अंतराल उनका खत्म होने जा रहा है जल्दी, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने उनसे सिंसियरिटी ऑफ हार्डवर्क सीखी, जो शायद बचपन में नहीं सीखी लेकिन बड़े होने के बाद सीखी। और यहाँ पे मैं एक बार पुनः आपको अपने पिता की ओर ले जाना चाहूंगी, उनका अंतिम समय था, कैंसर की वजह से उनकी उन्हें हमसे लिया, लेकिन आखिरी वक्त था, हम सब एजुकेटेड थे, हमें सबको पता था, पिताजी को भी पता था, डॉक्टर कह चुके थे समय कम है। तो एक दिन ऐसे ही हम सब बैठे थे परिवार वाले, और किसी ने उनसे पूछा कि कर्नल साहब खुश हैं, मतलब जीवन अंत पे है, क्या सोच रहे हैं? तो पता है क्या बोले, ये 2017 की बात है, और वो बोले मुझसे खुश एक इंसान क्या होगा जिसके दोनों बच्चों का कद उनके पिता से ऊंचा हो गया है, और एक ही वर्ष में दोनों बच्चों को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, क्योंकि उसी साल मुझे पद्मश्री मिला और मेरे भाई को सेना मेडल मिला फौज में अपनी ड्यूटी के लिए। तो मुझे लगता है कि उनसे भी मैंने ये

0: मेहनत करना सीखा।
1: एक पूरा परिवार जिसमें सिर्फ मुझे पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी।
0: और इसमें मैं आपको आगे भी एक चीज बताती हूँ, खाली भाई नहीं, मेरी भाभी का भी बहुत अच्छा रोल रहा। क्योंकि जब मैं बिल्कुल, वो साइंस स्टूडेंट है, मैं ह्यूमैनिटीज से पढ़ी हूँ, आज भी अगर उनको अपना टाइम पास करना होता है तो वो सुडोकू खेलती हैं, तो उनका मैथ बहुत अच्छा है, तो वो मेरी वीकनेस रही, मैं कभी मैथ्स में अच्छी नहीं रही। तो वो एक बहुत एजुकेटेड पर्सपेक्टिव लेकर आई हमारी फैमिली में। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, उनकी एक लाइन ने मेरी मानसिकता बदल दी। मैं रेजिस्ट करती थी व्हीलचेयर पे बैठना, क्योंकि व्हीलचेयर पे देखते ही लोग मुझे बीमार समझते थे। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात कही, दीपा मैं चश्मा क्यों लगाती हूँ? मैंने कहा बेटर विजन के लिए। बोले और? मैंने कहा क्योंकि आपकी आईसाइट थोड़ी वीक है तो आप चश्मा लगा लेती हैं। कह रही तुम मुझे अंधा अंधा तो नहीं बोलती? मैंने कहा नहीं। तो कह रही फिर ऐसे ही जरा सी कमजोर टांगों के लिए तुम व्हीलचेयर पहन लोगी तो क्या हमेशा बीमार ही रहोगी? दिस इज सिंपली एन असिस्टिव एड।
1: बिल्कुल।
0: टू सी बेटर आई यूज स्पेक्टिकल्स टू मोबिलाइज टू हैव योर मोबिलिटी, यू विल सिट ऑन अ व्हीलचेयर। एक चैलेंज है और व्हीलचेयर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसका साइज छोटा है, ज्यादा लोग लगाते हैं
1: जी। इसको अगर ऐसे भी देखे तो जूता भी जो है, जूता भी हम किस लिए पहनते कि हम लंबा दौड़ सके, लंबा चल सके, खाली पैर हम कम कर पाएंगे। तो फिर मतलब
0: व्हीलचेयर क्यों अलग हो जाती है
1: जी? बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मेरी एक तो सोच वहां बदली, और दूसरी चीज मेरे भाभी ने मुझसे, भैया भाभी दोनों ने ही, जब मैं बहुत ज्यादा बेड रिडन थी, रिकवरी में आ रही थी, तो मेरी भाभी ने कहा जब तक तुम घूम फिर नहीं सकती बाहर निकलकर, रिकवरी में हो, सीख रही हो नए शरीर को, तो कंप्यूटर के माध्यम से घूमा। तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीखूं, घर बैठे रिसर्च करूं। तो
1: खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और आपके घर में कोई शैतान नहीं है, क्योंकि आपके घर में
0: बिजी है, उनका जो बेटा है, वही मैं कहती हूँ कि अगर आप, तो मैं ये मात्र शब्द नहीं है जो मैं, मतलब मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल पीपल, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज प्रैक्टिकल। अब इन्हीं वैल्यूज के साथ मेरे ब्रदर बड़े हुए हैं, इन्हीं वैल्यूज के साथ उन्होंने अपना बेटा बड़ा किया है, और आज वो 29 इयर्स की एज में ऑलरेडी डॉक्टरेट कर चुके हैं, विच ही हैज गॉट ऑन स्कॉलरशिप। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, मास्टर्स करी है, और एट 29 इयर्स वो ऑलरेडी अपनी डॉक्टरेट कर चुके हैं, और गूगल में रिसर्च फॉर द बेटर यूजेस, पॉजिटिव यूजेस ऑफ एआई में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत, ये चीजें बिना मेहनत के नहीं आती,
1: नहीं होती।
0: ये चीजें फोकस,
1: इनको प्रायोरिटी में भी रखना पड़ेगा, सिर्फ मेहनत नहीं, इसको प्रायोरिटी में भी रखना पड़ेगा कि भाई प्रायोरिटाइज है,
0: और कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूस हार्डवर्क। मैंने खुद 53 इयर्स की एज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डायरेक्टरशिप का पूरा कोर्स किया है, क्वालिफाई किया है, और क्योंकि मुझे पता है अब मैं खेलों से रिटायर हो गई हूँ, फिर मैंने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट का 4 साल का भी मैंने टेन्योर कर लिया। सबने बोला दीपा बहुत कुछ कर लिया, सारे अवार्ड जीत लिए, सारे रिकॉर्ड किए, जो भी तुमने किया वो उसे बहुत हाई लेवल तक कर लिया, अब तो कोई अवार्ड ही नहीं बचा जो तुम्हें जीतना है, कोई रिकॉर्ड नहीं बचा जो तुम बनाओगी, मेडल तुम्हारे कैबिनेट में सारे हैं, यू हैव डन इट ऑल। मैं सिर्फ ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर मैंने और पढ़ाई कर ली, अब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करना सीख रही हूँ। एट 54 आई हैव जॉइंड कॉर्पोरेट एज अ डायरेक्टर।
1: और यही चीज आपके पिता ने आपको बताई थी कि कभी भी सीखना बंद नहीं करना। दीपा जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक तो है आंतरिक बल जिसकी वजह से आप सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे,
0: ठीक।
1: दूसरा होता है सामाजिक और आर्थिक बल। मैं समझता हूँ कई लोग जो दिव्यांगता से गुजरते हैं, जो किसी न किसी टाइप के इश्यूज से, फिजिकल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, अक्सर करके देखा गया है कि उनके पास तीनों जो बल है, एक तो खुद का आंतरिक बल, दूसरा सामाजिक परिवार का या आसपास के लोगों का, और तीसरा आर्थिक, ये तीन बड़े ही डगमगाए हुए होते हैं। किसी के पास आंतरिक बल होगा लेकिन आर्थिक और सामाजिक बल नहीं होता।

0: कि बार बार कमर तोड़ी मेरी अपंगता ने, बार बार मेरी किस्मत ने मेरे पे ऐसी दस्तक दी कि जिससे कोई भी इंसान टूट जाता। लेकिन अपनी बीमारी, बचपन की बेटी की बीमारी, खुद की बीमारी, दिनचर्या मुश्किल है मेरे शरीर के लिए, 200 टांके हैं पीठ पे, मल और मूत्र की शक्ति नहीं है और ऊपर से डिपेंडेंट हूँ मैं लोगों पर। तो उससे उभर कर बच्ची का दुख देखते हुए फिर मैंने खुद अपने बूते पे, जब मैं दिल्ली आई, मैं 8,000 के कमरे में रहती थी शाहपुर जाट की गली में, और पैसा जोड़ने के लिए या तो मैं मोटर स्पोर्ट्स में पार्ट लेती थी, क्योंकि उस वक्त मोटर स्पोर्ट्स के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए मैं कम से कम एक स्पॉन्सरशिप 20 से 25,000 या 1,00,000 तक की स्पॉन्सरशिप के लिए 30 से 40 ईमेल डाला करती थी, 100 से ऊपर फोन किया करती थी, तब जाके कोई एक जगह मुझे स्पॉन्सरशिप की हाँ आती थी। तो कहते ना कि आप यू कांट विक्टिमाइज योरसेल्फ। मैंने भी बिल्कुल एक छोर से शुरू किया था,
1: और बहुत जो बेचारापन की बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है,
0: बहुत बड़ी। स्विमिंग नहीं कर पाई लंबा, तो फिर मैंने एथलेटिक्स 40 वर्ष की आयु में शुरू किया, क्योंकि पानी से मुझे स्किन प्रॉब्लम होने लगी, ठंडे पानी में मेरे को स्पास्टिसिटी बढ़ने लगी। तो मैंने हर वक्त एक नया किरदार चुना। फिर पैसे की तंगी होने लगी तो मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना सीखा। मैंने इस लूप को ढूंढा कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं, वैसे कॉर्पोरेट्स में भी टीम लीडरशिप की टॉक्स होती हैं, लेकिन उसके लिए मैंने तैयारी करी। अब ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुबह उठी और मेरे अंदर यहां से कोई एक लाइट जगी और मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ी, मुझे सब्जेक्ट मैटर ढूंढना पड़ा, मुझे ये चुनना पड़ा कि मैं उस 45 मिनट में क्या बोलूंगी, कितना बोलूंगी, सही बोलूंगी, क्या लोग मेरी बात सुनेंगे। तो मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया, हर बार मैंने अपने आप को तैयार किया। तो अगर आपकी तैयारी जीत की, अगर आपने मन में ठान ली है और आपने हुनर पैदा किए हैं। और फिर रही बात की हर कोई शायद इतना सौभाग्यशाली नहीं हो पाता जहां पे तीनों चीजें जुड़ती हैं, ऐसे ही गैप को भरने के लिए हमने भी एक छोटा सा एनजीओ स्टार्ट किया है, व्हीलिंग हैप्पीनेस, जिसके माध्यम से हम ऐसे लोगों को उनके हैप्पीनेस के स्रोत ढूंढने में मदद करते हैं, चाहे मेंटल काउंसलिंग हो, फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। तो उसके लिए हम काफी, जितनी हमारी हैसियत बन पड़ती है, जितने लोगों की जिंदगी हम छू पाते हैं, हम कोशिश करते हैं।
1: ये जो पोएम आपने अपने माता पिता के लिए लिखा था, इसमें जो लास्ट की कुछ पंक्तियां थी कि दूसरे का दिया जलाते रहना है, ये आपने करके दिखाया और कर भी रहे हैं, और हमारी शुभकामना कि आप ये आगे भी करते रहें। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप अपने इस दौर में, जबकि आप अभी खेलों में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जगह जगह जाते हैं भारत में, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि लोग अपने आसपास में छिपे ऐसे हुनर को आगे आने दें।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आप ये ट्रैवल करते हैं तो आप भारत के अलग अलग कल्चर को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, विविधताओं वाले इस देश में कौन सी वो बात है जो आपको लगता है पूरे भारत को एक बना देती, कोई कनेक्टिंग थ्रेड जो आपको लगता है, कोई एक ऐसा सूत्र जो भले अलग अलग रंग के दाने हो लेकिन सबको जोड़ने में ये कायम है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभी इंसानियत जीवित है,
1: और मैं आपको बताऊं ये जवाब मैंने
0: हो सकता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, एक्सेसिबिलिटी की कमी हो, लेकिन वो जो मदद करने की भावना है, ठीक है। मैं आपको एक बात बहुत वो कहती हूँ कि अगर लोग मुझे देखते हैं तो एक बार हाय हाय बेचारी सुंदर है, कुर्सी पे बैठी है, बीमार है क्या, लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी व्हील चेयर को उठा के वहां रख देंगे, मैं कहती हूँ 10 हाथ दौड़ के आगे आ जाते हैं। ये बात विदेशों में नहीं होती, क्योंकि विदेशों में लोग डरते हैं आपकी मदद करने में कि कहीं उनके ऊपर कोई लीगल केस ना हो जाए।
1: जी
0: बिल्कुल। मैंने बाहर हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट में मुझे शिफ्ट करना होता है तो 6 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लेकिन विदेश के एयरक्राफ्ट में मेरी ट्रांसफरिंग हो रही होती है तो क्रू तक मना कर देता है कि दिस इज नॉट आवर ड्यूटी, समबडी एल्स विल।

0: हम जो इसके लिए ट्रेंड है, क्योंकि वो आपको छूते हुए डरते हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया तो उनपे लीगल केस ना हो जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एक ह्यूमन लेवल पे गैप आ जाता है,
1: भावनात्मक।
0: आप गरीब से गरीब इंसान के घर चले जाओगे, वो अपने घर में आपको चाय, पानी या कोई एक डब्बा खोल के गुड़ की डली जरूर खिला देगा। जो एक इंसानियत का नाता है वो अभी हिंदुस्तान में है बहुत, और वही जोड़ता है मेरे भारत को,
1: और आपके हिसाब से यही भारत को यशस्वी भी बनाता है।
0: करुणा है, जो एक दूसरे की मदद की भावना है, वो
1: इसी वो भावना को अगर और बढ़ाना हो या इसको कायम रखना हो, स्पेशली आज की जनरेशन में, क्या है आपके पास उसके लिए टिप? आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला है भारत को यशस्वी बनाने के लिए? क्योंकि जो चीज आपने देखी, जो प्राण है भारत का, वो आपने देखा ये करोना प्राण है, इस प्राण में और प्राण फूकना हो तो व्हाट शुड बी योर टिप्स?
0: मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, क्योंकि एक इंसान का कैरेक्टर लगभग 8वीं कक्षा तक बन जाता है और 12वीं कक्षा तक स्टैम्प हो जाता है। आप खुद को भी अगर देखोगे तो आप वही 12वीं कक्षा के इंसान हो। एजुकेशन आती है, लेयर्स ऑफ अवेयरनेस बढ़ती है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। तो बहुत बड़ा दायित्व जाता है शिक्षकों पे, और यही मैं देख रही हूँ कि अगर आप पुरातत्व भी देखोगे, आप पुरानी हमारी संस्कृति एजुकेशन सिस्टम देखोगे, तो गुरु को बच्चा सौंप दिया जाता था, बच्चा गुरुकुल में प्रैक्टिकल चीजें किया करते थे। तो आजकल क्या है कि जो बदलाव हम ला सकते हैं, इज अगेन द टीचर्स ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ मेयर जॉब फॉर देम, दे आर क्राफ्टिंग माइंड्स फॉर द फ्यूचर, दे आर क्राफ्टिंग कैरेक्टर्स फॉर द फ्यूचर, दे आर क्राफ्टिंग अ पर्सनैलिटी ट्रेट फॉर द फ्यूचर। So you are actually creating a citizen of a country who has to have a holistic development in their subconscious. For that, the right values have to be imparted. Not only at home, घर की तो charity definitely begins at home, but school का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। तो हमारी जो education system है वो बहुत मायने रखती है, और उसको हमें वापस स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें वैल्यूज डालनी है। क्योंकि हमें याद है हम मॉर्निंग प्रेयर से शुरू किया करते थे, जिसमें एक थॉट फॉर द डे होता था, और फिर हर कक्षा में जब टीचर आती थी, और मैं तो केंद्रीय विद्यालय की पढ़ी हूँ मैं, हाँ अरे वाह तो मुझे एक तो केंद्रीय विद्यालय की एक खासियत है कि उसमें तब तक विद्यालय नहीं बनाते जब तक खेल का प्रांगण पूरा ना हो
1: जी।
0: तो बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स, नाना प्रकार के खेल हमें वहां मिले, तो इसीलिए वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है खेलों पे बहुत जोर था। और सिमिलरली हॉट फॉर द डे असेंबली में बोला जाता था, और शिक्षक जब आते थे तो फिर उसके ऊपर 2 मिनट का डिस्कशन होता था, और उसके बाद हम अपनी, चाहे मैथ्स का पीरियड है चाहे हिस्ट्री का पीरियड है, फिर हम उसके बारे में पढ़ा करते थे। तो मुझे लगता है ये वाले जो जीवनियां हैं हमारे भारत की, जो इतिहास है, हमारी जो लेगेसी है, हेरिटेज है, जो हमारी टीचिंग्स हैं, उनको अगर हम उस वैल्यू सिस्टम को एज वैल्यू सिस्टम, नॉट एज मेयर मींस टू गेन मार्क्स एंड ग्रेड्स, वहां से मुझे लगता है हमारा भारत बहुत खूबसूरत शेप होएगा।
1: दीपा जी, इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं हमारे चर्चा में, और इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ आपके साथ बात करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन समय जो है वो हमें इशारा दे रहा है कि मे बी
0: आपको चलते चलते छोटी कहानी और अपने जीवन से,
1: बिल्कुल कहानी सुनने के।
0: तो मेरी मैथ की जो टीचर थी वो बहुत इम्पेशेंट थी, और मैं जब अपनी बचपन की बीमारी से निकलकर चेस्ट ब्रेस, नेक ब्रेस लगाकर कुछ महीने व्हीलचेयर पे स्कूल जाया करती थी, मैं बहुत धीरे धीरे लिखती थी, क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए थे रेगुलर स्कूल आए हुए, तो मेरे सामने ऐसे बैठ जाती थी, अरे लिखो ना, लिख क्यों नहीं रहे हो, फिर क्या करेंगे, डांट भी नहीं सकते, बैठे हैं, मेरा नेक्स्ट क्लास शुरू हो गया है। सो देयर वाज ऑलवेज अ इंपेशेंस, मेरे पे मैथ्स का डर पूरी

0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। भारत की एक ऐसी बेटी से आज मिलकर के हमें बड़ा नाज हो रहा है कि भारत में ऐसे रतन हैं जो भारत को जगमगाने में बहुत बहुत मदद कर रहे हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: दोस्तों, कितने सरल शब्दों में दीपा जी ने हमें बताया कि अगर हम भारत को अपना प्रतिबिंब या अपने प्रतिरूप के तरह देखते हैं तो हम जो भी चीजें खुद के लिए करेंगे वो भारत का सोच करके करेंगे। अगर हम खुद को अच्छा साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं तो भारत को भी साफ सुथरा रखना पसंद करेंगे। अगर हम खुद को हेल्दी रखना पसंद करते हैं तो भारत में भी हेल्थ बढ़ेगा। देश को खुद का प्रतिरूप समझना ही देश के प्रति सच्ची देशभक्ति है। ये दीपा जी के बातचीत से जाहिर हो जाती है। भारत की ये एक ऐसी बेटी है जिसपे न केवल भारत को लेकिन तमाम भारतीयों को नाज है, और एक ये ऐसी बेटी है जिन्होंने अपनी बेटी को भारत को नाज दिलाने जैसा काम करने के लिए आगे बढ़ाया है। चाहे वो दिव्यांगता है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो सामाजिक रूढ़िवादी चिंतन है, इन सब का सामना करते हुए दीपा मलिक जी ने एक आदर्श नागरिक होने का सुंदर पाठ आज हम सबके सामने, अपने जीवन का पाठ खोल करके रखा। बहुत सारी बातें सीखी आज हमने उनसे, और भी उनसे बात करने का मन कर रहा है, और मैं समझता हूँ कभी भविष्य में हमारे किसी एक एपिसोड में वो जरूर दोबारा आएंगी। आपके मन में अगर उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हो, कुछ जानने का मन हो, तो आप जरूर रेडियो मधुबन के साथ संपर्क में रहें, हमें बताएं, और यशस्वी भारत कार्यक्रम को सुनते रहें, सपोर्ट करते रहें, देखते रहें। मैं आरजे शांतनु लेता हूं आपसे अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। 107.8 FM रेडियो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रे। रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का विषय है अहंकार से आत्मज्ञान की यात्रा तक। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर, शोर से शांति की ओर और मैं क्या हूं से मैं कौन की ओर ले जाने वाली यात्रा है। हम सभी के जीवन में मैं शब्द बहुत प्रबल होता है। मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी उपलब्धियां, मेरा अपमान, मेरी पहचान। यही मैं जब शरीर, पद, धन, रिश्तों या ज्ञान से जुड़ जाता है तब उसे हम अहंकार कहते हैं। अहंकार स्वयं को बड़ा दिखाने की नहीं बल्कि स्वयं को सीमित कर लेने की स्थिति है, क्योंकि जब मैं अपने को केवल शरीर, नाम या भूमिका मान लेता हूं तब मैं अपनी असीम शक्ति को भूल जाता हूं। अहंकार का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह हमें तुलना में ले जाता है, कभी किसी से ऊपर तो कभी किसी से नीचे। ऊपर होने पर घमंड, नीचे होने पर हीन भावना, और दोनों ही स्थितियों में शांति का अभाव होता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष, इन सब का मूल कारण यही अहंकार है। तो प्रश्न उठता है, क्या अहंकार बुरा है? अहंकार का एक पक्ष हमें पहचान देता है, समाज में भूमिका निभाने में सहायक होता है, पर जब यही अहंकार हमारे निर्णयों, संबंधों और व्यवहार को नियंत्रित करने लगे तब यह बाधा बन जाता है। यहीं से शुरू होती है आत्मज्ञान की आवश्यकता। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पद या परिस्थिति नहीं हूं। मैं एक चेतन आत्मा हूं, शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप और शक्तिशाली। जब यह समझ जीवन में उतरती है तब सोच बदलती है, दृष्टि बदलती है और व्यवहार स्वतः बदलने लगता है। अहंकार से आत्मज्ञान की यात्रा कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। सबसे पहला कदम है स्वनिरीक्षण। दिन में कुछ पल रुककर स्वयं से पूछें, मेरी यह प्रतिक्रिया अहंकार से आई या समझ से? मैं सामने वाले को बदलना चाहता हूं या स्वयं को? दूसरा कदम है स्वीकृति। जब मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझमें भी कमजोरियां हैं तब अहंकार ढीला पड़ता है। स्वीकृति कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है मौन और साधना। जब हम रोज कुछ समय अपने भीतर उतरते हैं, विचारों को देखते हैं और स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं तब धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। ध्यान हमें याद दिलाता है कि मेरी वास्तविक पहचान बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा का सबसे सुंदर परिणाम है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं बल्कि दूसरों को भी उतना ही मूल्यवान मानना है। आत्मज्ञानी व्यक्ति में सहज आत्मसम्मान होता है, इसलिए उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब अहंकार कम होता है तो रिश्तों

0: दृढ़ता आती है, निर्णयों में स्पष्टता आती है और जीवन में संतुलन आता है। हम परिस्थितियों के दास नहीं रहते बल्कि उन्हें समझदारी से संभालने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, अहंकार से आत्मज्ञान की यह यात्रा वास्तव में दुख से मुक्ति की यात्रा है। यह यात्रा हमें दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ती है। जब मैं सही हूं की जगह मैं शांत हूं आ जाता है, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। इसी विचार के साथ मैं विवेक जैन आपसे विदा लेता हूं। अपने भीतर झांकिए, स्वयं को जानिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहे इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है

0: हुआ, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया। लेकिन साइंस से भी बड़ी चीज अनुभव होती है।
1: कई बार स्टेज पे मैं कभी कुछ बोलते रहता हूँ ना, तो मेरी फैमिली सोचती आई होप ही सेज दिस, आई होप ही सेज दिस, ये वाली लाइन अगर यहाँ बोले ये अनुभव बड़ा अच्छा था। और वो मेरे मन में कहीं से आ जाते और बोल देते
0: बस।
1: फिर जब बाद में बोलते हैं अरे हम तो सोच ही रहे थे कि आप ये बताएं।
0: हम लोग हमेशा कम्युनिकेट कैसे करना चाहते हैं कि हम फटाफट इनको उठ के बता कर आए, चिट्ठी लिख कर दे दे। सी दिस इज द कम्युनिकेशन वी वॉन्ट टू यूज बिकॉज वी फील दिस ऑलवेज वर्क्स। अगर वो आपको चिट्ठी लिख कर भेज दे या धीरे से आके कान में बोल दे तो उनको 100% गारंटी है कि ये तो मेरा मैसेज कन्वे हो गया। लेकिन जिस समय हम वो नहीं कर सकते हैं तो उस समय आत्मा ज्यादा स्ट्रांग थॉट क्रिएट करती है, बता भी नहीं सकते कैसे मैसेज पहुंचाए, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये इतनी स्ट्रांग थॉट गई और आपने कहा बिना कहे, बिना कोई चिट्ठी पढ़े आपने वो थॉट कैच कर ली और आपने वो बोला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
1: बिना अपनी वाइफ की तरफ देखे आई टू आई कॉन्टेक्ट भी नहीं, इशारा भी नहीं,
0: व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस एक्सपेरिमेंट, क्या फर्क है? ये भी तो यही कह रहे हैं,
1: ये कंप्यूटराइज्ड प्रूव्ड है।
0: हाँ,
1: वो एक्सपीरियंस
0: एक्सपीरियंस
1: अनुभव है।
0: अब जब आप साइंटिफिक एविडेंस भी हम पढ़ रहे हैं, वो तो किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया और वहां उनको रिजल्ट मिली तो उसको एक साइंटिफिक स्टैंप लगी। लेकिन जो चीज हमने अनुभव कर ली है,
1: मेरा स्वयं स्टैंप लगा खुद का,
0: उसके ऊपर तो हमें साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं चाहिए होती। अब जब इन्होंने आर्टिकल का टाइटल रखा कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड, क्यों? क्योंकि उनको प्रूव हो गया, यहां से सोचा वहां कैच। हम सारा दिन अनुभव कर रहे हैं कि हमने सोचा दूसरे ने कैच किया, दूसरे ने सोचा हमने कैच किया। जब हमने इतना कुछ अनुभव कर लिया तो हमारे लिए स्टैंप नहीं हो जानी चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है?
1: ये तो डर लगने वाली बात
0: नहीं, पर ये स्टैंप हमारे लिए हो जानी चाहिए ना। क्यों हम अपने अनुभवों को ही ऐसे ही हल्के में छोड़ देते हैं? जब अच्छा वाला अनुभव होता है, जैसे आपने कहा आप स्टेज पे थे, सामने वाले को कोई बात आपसे बतानी थी, आपने वो कैच की, तो बाद में जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के, वे वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड द अदर पर्सन विल से आई वॉन्टेड टू से इट टू यू एंड यू कॉट इट, सो बोथ द पीपल आर वेरी हैप्पी, बोथ द पीपल आर हैप्पी, जो मैसेज भेजना चाहते थे और जिसने मैसेज कैच किया वो दोनों खुश हैं कि हमें वो रिजल्ट मिला जो हम चाहते थे। लेकिन जब हम नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हैं, जब हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तब हम बैठ के एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक नहीं करने वाले हैं कि मैंने आपको ये भेजा था आपने कैच किया।
1: यहाँ पर एक छोटा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैं अगर किसी के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूं या थॉट्स आ रही हैं, तो वहां से कितना आ रहा होगा, हो सकता है मेरा उसका, दैट इज आई एम रिसीविंग, हाउ डू आई नो कि आई एम रिसीविंग और सेंडिंग?
0: वेरी ट्रू, इट बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग।
1: उधर से आ रहा है कि मेरे मन में आ रही है, कैसे बताऊं?
0: उधर से आ रहा है या हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आपने किसी को याद किया और वहां से फोन आया, अब हमें ये नहीं पता कि आपने याद किया तब फोन उन्होंने किया या उन्होंने फोन उठाया था करने के लिए तब आपको याद आई, वी डोंट नो।
1: बोथ आर राइट,
0: बोथ आर पॉसिबल। इसका मतलब पहला तीर किसने फेंका, वी डोंट नो। हमें सिर्फ ये पता है कि तीर का रिटर्न तीर आता है, थॉट का रिटर्न थॉट आता है। हमें ये नहीं पता पहले किसने शुरू किया, और अब तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम पहले तीर पर तो है नहीं।
1: मैं सोचू भी कि वहां से आया कि मैंने पहले किया।
0: हाँ,
1: आया ना, उसको निकालो।
0: लेकिन अगर पहले भी शुरू किया उन्होंने
1: तब भी वही करना है,
0: तो भी वही करना है, और अगर मैंने शुरू किया तब भी वही करना
1: है। तो हटाना है ना,
0: तो
1: बेडरूम में जाऊं वहां पर कचरा बड़ा हो।
0: हाँ,
1: तो मैं लेटू नहीं लेटू, एक कचरा किसने रखा और मैं थका हुआ हूँ।
0: हाँ,
1: तो मैं बोला यार,
0: अगर आप सपोज उस टाइम बोले जिसने रखा है वो ही आकर उठाए पहले।
1: हाँ,
0: मैं क्यों उठाऊं,
1: किसने किया, कैसे किया,
0: पहले तो ढूंढो कि रखा किसने, फिर उसी को बुलाओ, वो जहां भी है उसको पहले बुलाओ कि उसने रखा है वो उठाए। ये सब तो हम करते नहीं।
1: ना थक गया हूं मैं, इसको हटाऊं और लेटू ना, आराम करूं,
0: दैट इज इट। तो वो थॉट उन्होंने भेजा या हमने भेजा, इट डजंट मैटर। प्रेजेंट मोमेंट में ट्रुथ क्या है, सत्य इस समय का?

0: अगर जो जो मैं सोच रहा हूँ उनके SMS बन के उनके फोन पे जाता रहे, अगर ये टेक्नोलॉजी निकल जाए।
1: ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है ना, वही तो
0: उन्होंने। मगर मेरे फोन में अगर वो ऐप आ जाए।
1: देखो अभी इन्होंने क्या बोला, उसने हेलो बोला, उसने होला बोला और उन्होंने होला ही कैच किया। मतलब क्या हुआ उसका फिर, कि जो सोचा एग्जैक्टली वो ही कैच कर लिया उसने।
0: थॉट यहाँ प्रिंट हुई, वहां से प्रिंट कन्वर्ट होके
1: दूसरे तक पहुंच गई। अब हमें सिर्फ अपने आप को बार बार ये चेक करना है, जो हम सोच रहे हैं उनके लिए वो एज इट इज अगर पहुंच जाए, वर्ड टू वर्ड, वैसे का वैसे, एम आई ओके विद इट?
0: नो।
1: देन नाउ व्हाट टू डू?
0: देन स्टॉप।
1: अब आपका अनुभव देखो, पहले वाला स्टेज पर आप कुछ सुना रहे हैं, फैमिली ऑडियंस में बैठकर कहती है इनको ये वाली बात बोलनी चाहिए। स्पेसिफिक है ना, इट्स नॉट अ जनरल थॉट, इट्स अ स्पेसिफिक थॉट, राइट? और सपोज आपने वही की वही बात बोली, तो मतलब आपने मैसेज को एज इट इज कैच किया ना।
0: करेक्ट।
1: इसका मतलब मैसेजेस एज इट इज कैच होते हैं।
0: उस साल पहले का ये एक्सपीरियंस सुरेश बरोय को आज सुनाना चाहिए, ये वाला एक्सपीरियंस, या ये शेर, ये पोएट्री, एग्जैक्टली वो थॉट कैच हो गई मेरी, और कई बार हुआ।
1: तो इजंट इट एज सेम एज जो आपने कहा, मैसेज भेजे SMS भेजे, एज इट इज ही जाने वाला है, एज इट इज जा रहा है।
0: बट वहां तो रिटर्न प्रूफ आता है ना।
1: किस चीज का?
0: कि मैंने ऐसा सोचा आपके बारे में, जब मिलके बात करते हैं, मेरी आपसे कोई नाराजगी हो सकती? कमाल है आप। हाँ। ना तो हम तो भाई भाई हैं, कमाल।
1: अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, नहीं जी मुझे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो हमेशा आपको एक फैमिली मेंबर, एक फ्रेंड की तरह ही देखा, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि उनको हमारे सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं।
0: मैं पूछ चुका हूँ लोगों से, क्या भाई कुछ नाराजगी है? हमने आपसे कभी कुछ बुरा बोला? कुछ होगी तो माफ कर दो। आपका कुछ वो व्यवहार उतना पहले जैसा नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कमाल है बाजी, तुम इस तरह कर रहे हो। आपके बारे में मैं बुरा सोच भी नहीं सकता, आप तो बड़े भाई हो मेरे।
1: बुरा सोचे बिना दूसरे को बुरा फील हो नहीं सकता।
0: अच्छा,
1: हो नहीं सकता ना। अभी देखो इस एविडेंस को फिर से ले लो,
0: इमेजिनेशन तो नहीं कर सकता ना बंदा।
1: फीलिंग की इमेजिनेशन नहीं होगी, यू विल फील इट, इसकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती कुछ भी। ये है, यहाँ से हेलो बोला, फ्रांस में उसने हेलो कैच किया,
0: होला बोला, होला कैच,
1: होला कैच किया। ये यहाँ से बिना बोले वहां कैच नहीं कर सकता, और ये एक वर्ड बोले और वो दूसरा कैच करे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो बोला वो कैच किया,
0: तो क्या करे, फंस गए।
1: लेकिन अब फर्क ये है कि अगर इसने यहाँ से हेलो बोला, उसने फ्रांस में हेलो कैच किया, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फ्रांस वाला भी वापस हेलो बोले। दैट्स नॉट नेसेसरी।
0: ओके,
1: है ना, दैट्स नॉट नेसेसरी।
0: दिस इज अ गुड एंगल टू।
1: मुंबई में हेलो बोला साइंटिस्ट ने, फ्रांस में उसने हेलो कैच कर लिया, इज ओके, दिस इज गोइंग टू वर्क, हम इसको रोक ही नहीं सकते।
0: जरूरी नहीं है कि फ्रांस वाला जवाब दे,
1: जरूरी नहीं है कि वो हेलो बोले।
0: हाँ।
1: वो नमस्ते भी बोल सकता है, वो गुड मॉर्निंग भी बोल सकता है, वो कुछ भी भेज सकता है वापस। अब जब अगर उसने वहां से गुड मॉर्निंग बोला, तो ये मुंबई वाला अभी क्या कैच करेगा?
0: गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग कैच करेगा। फिर उस गुड मॉर्निंग को कैच करने के बाद ये मुंबई वाले ने क्या थॉट भेजनी है, वो चॉइस इसकी होगी। दिस इज क्लियर एविडेंस, राइट? विच मीन्स अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच भी रहा है, वो मेरे पास आने ही वाला है, फाइन। लेकिन उसको अपने चित पर कितनी देर मैंने रखना है, उसको कितना एनर्जाइज करना है, और ये सब सोच के मेरी तरफ से उनके पास क्या जाना है, वो कम्प्लीटली मेरी चॉइस है। आज हर एक बैठकर अपने कुछ एक रिश्तों को चेक करे, जिनके लिए कारण चाहे कुछ भी हो, सामने वाले का व्यवहार चाहे कुछ भी हो, आज हम जो उनके बारे में सोच रहे हैं, हमें सिर्फ अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन आज पूछना है, अगर हमारी सोच एज इट इज वहां पहुंच जाए, इज इट ओके फॉर अस, एम आई कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। और फिर जब वो सोच मेरी वहां पहुंच जाती है, सामने वाला भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के मोड

0: तो कोई लगा नहीं हुआ, वी नॉट सो अवेयर कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हमारे पास तो जो आ रहा है हम वैसा ही वापस भेज रहे हैं, फिर आ रहा है फिर भेज रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एस्केलेट बहुत हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा अगर हम इसको आज ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना एस्केलेट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
1: जैसे बलून में हम हवा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, फाइनली फिर फट ही जाता है।
0: यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने समय अपने अंदर भरते गए उसको, जब फटेगा तब तो नुकसान होगा ही, लेकिन जितने समय भरते गए, कुछ दिन कुछ साल कई बार कुछ जन्म, वो नुकसान नहीं हो रहा है।
1: एक थॉट आई सिस्टर कि मैं एक से ऐसा करूं नेगेटिव भेज रहा हूं, उसके मतलब बैड हैबिट्स देख रहा हूं, ये ऐसा उठता है वैसा बैठता है, सुबह लेट उठता है, या खाता कैसे देखो, कपड़े कैसे पहनता है, एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, तो एक रेगुलर एक पैटर्न और एक हैबिट इसकी जब बन जाए अगर, और हर एक में कुछ देखो हर एक में देखो, तो फिर उसका फूगा के मेरा ही फट जाएगा,
0: अपना ही फटने वाला है।
1: कितना भरूं?
0: यस, अपना ही फटने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देखो आपको रिटर्न में भी कौन सी एनर्जी मिलेगी। सपोज आप मेरे लिए ये थॉट क्रिएट कीजिए, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उस दिन भी गलत किया इस दिन, नाउ दिस इज ऑल कमिंग टू मी, नाउ जस्ट इमेजिन एक सेकेंड के लिए अगर हमें ये सच्ची में बैठ जाए ना आज अंदर बुद्धि के, तो हमारी सोच बदल जाएगी। आप जब ये मेरे लिए सब सोच रहे हैं, ये बोल तो नहीं रहे आप मेरे को, आप बोलते क्यों नहीं मुझे ये सारा कुछ, आप बोलो मुझे कैसा बैठ रहे।
1: मैं सोचता हूं कि बोलने से लड़ाई हो जाएगी।
0: ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है, बोलने से
1: लड़ाई
0: हो जाएगी, मतलब ये लाइन बोली नहीं जा सकती उनको, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि लाइन जो हम सोच रहे हैं वो उनको पता पड़ रही है,
1: फार स्ट्रांगर ना,
0: पता चल रही है
1: स्ट्रांगर।
0: अब लड़ाई होने का चांस, अब लड़ाई होने का चांस
1: डबल
0: हो गया। तो जो चीज को हम बचा रहे थे, लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रिश्ता
1: रिलेशन
0: रहना चाहिए, उसमें वो जो फ्रिक्शन आती है वो नहीं आनी चाहिए, वी वॉन्ट कॉर्डियल रिलेशन
1: खुलेगी ना, तूने ये बोला मैंने ये बोला मैंने,
0: इसीलिए हम नहीं बोल रहे ना। अब ये हमें यहाँ आज पक्का कर लेना अपने आप तक कि हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा, लेकिन अब अनुभव ने और विज्ञान ने साइंस ने दोनों ने मुझे सिखा दिया कि जो मैं सोच रहा हूं वो सामने वाले तक एज इट इज पहुंच रहा है, फिर सामने वाला भी मेरे लिए ऐसा ही सोचेगा। व्हेन यू रिजेक्ट मी कि ऐसा खाते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वो जब थॉट्स और मैसेजेस अगर आप मुझे बोल दें सपोज ये बात, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी ऊपर से? आई विल ऑल्सो फाइंड 10 things इन यू ना, कि आपने अपने आप को देखा है, आप कैसे खाते हैं, आप ऐसे चलते हैं, आप मुझे बोल रहे हैं, अपना देखा आपने, आप कैसे चलते हैं, दिस इज हाउ कॉन्वर्सेशन गो ना। अब ये जो कॉन्वर्सेशन जब शब्दों में होती हैं तब ऐसे होती हैं, तो थॉट लेवल में ये कॉन्वर्सेशन कैसे होती होंगे?
1: बहुत स्ट्रांग
0: ऐसे ही होती होंगी कि आप मेरे अंदर गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर गलतियां ढूंढू, वो आप तक पहुंचे तो आप मेरे अंदर और गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर और गलतियां ढूंढू। अब हम ऊपर ऊपर से तो कुछ कह ही नहीं रहे एक दूसरे को, हम बहुत प्यार से बात
1: रिश्ता निभा रहे हैं,
0: हम रिश्ता निभा रहे हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल, कहते हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, वो जब भी मिलते हैं जब भी आते हैं हम उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन नाउ सी द रिजल्ट, हम सारा दिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए उसकी एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी, कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड।
1: सिस्टर एक बार किसी ने मुझे आके बोला था कि मेरी सास अजीब सी है सुरेश, मैंने हुआ क्या, मैंने बोला वो टोन कॉपी करके, मैंने इतने प्यार से पूछा, ऐसे ही पूछा जैसे आपको सुना रही हूँ, लेकिन वो भड़क गई।
0: सी, यस।
1: तो मतलब फिर चांसेस भड़कने का 1% भी नहीं होता अगर ये पहले उसके थॉट।
0: बिल्कुल, दिस इज इट, जब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाला इतना रिएक्ट कर गया सामने से, हमें लगता है सामने वाले का जो रिएक्शन है वो हमारी वो एक लाइन के रिस्पॉन्स में आया है। अभी सपोज यही वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं, आप मेरे लिए मेरी गलतियां सोच रहे हैं, ये ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे करते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स इन योर माइंड रीचिंग मी, मैं भी आपकी गलतियां ढूंढ रही हूं, वो आपको

0: कम्युनिकेट कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन इन द माइंड हमारा बहुत समय से चल रहा है, ठीक है। अब मैं सुबह सुबह आई यहाँ बैठी और आपने बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली और कर्टसी से आपने कहा आप थोड़ा सा ऐसे होकर बैठ जाइए, मेरा फुग्गा बस्ट हो जाएगा। बोला आपको सुबह सुबह मेरे अंदर ही गलतियां दिखाई देती हैं, मैंने क्या किया, मैं ठीक से तो बैठी हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कमाल है, आपको तो हर चीज में मेरी प्रॉब्लम है।
1: वो नहीं वाली थी, चेंज करने वाली थी, तुमको तो चेंज वो ही नहीं।
0: ये जो हाउ आई विल रिएक्ट,
1: और लोग क्या बोलेंगे सुनने वाले,
0: इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, एक लाइन से इसने इतना रिएक्ट कर दिया वो। और एक्चुअली कई बार मुझे भी अजीब लगेगा बाद में कि मुझे हुआ क्या था, उन्होंने तो एक लाइन बड़े प्यार से नॉर्मल बोली थी, ये मैंने ऐसा क्यों बिहेव कर दिया सारा। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक लाइन और इस एक लाइन का रिएक्शन आया, दिस वॉज इन फॉलो अप टू द लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग कम्युनिकेशन इन द माइंड दैट हैज बीन हैपनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये वो एक लाइन और एक रिएक्शन का कम्युनिकेशन था ही नहीं, ये बहुत समय से जो हमारा मन में कम्युनिकेशन चल रहा था, वो एनर्जी जो भरी हुई थी, ये उसका रिजल्ट था। अब आपने जैसे कहा कि वो लेडी ने आपको आकर कहा मैंने अपनी सास को ऐसे एक लाइन कही, देखो मैंने ऐसे बोला, इतने प्यार से बोला, एंड सामने वाला जब आपने भी सुना होगा आपने कहा होगा अजीब सास है, इसने इतने प्यार से ऐसे एक लाइन बोली, क्योंकि आप सिर्फ वो लाइन सुन रहे हैं, आपको वो कम्युनिकेशन पता ही नहीं है सारी जो वो बहू ने अपनी सास को भेजी होगी, पता नहीं कब कब कब कब से,
1: सुबह से भेज रही होगी घर आने तक,
0: सुबह से घर आने तक क्यों, सार रोज ही भेजती होगी, कितनी ओवरऑल कितने सालों से भेज रही होगी कम्युनिकेशन। ये रिएक्शंस ऐसे नहीं आते हैं, इसीलिए अगर हमें किसी सीन का पूरा पर्सपेक्टिव जानना है तो हमें वो जानना होगा कि ये दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए सोचते कैसे हैं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए तो कहेंगे सिस्टर मैंने बस इतना बोला, फिर सामने वाले ने ऊपर से ऐसा बोल दिया, फिर उसने ऐसा बोला ना, फिर मैंने ऐसा बोला। अगर हम उनके सिर्फ ये वर्ड्स को देखें और उस पर सीन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या हुआ होगा, द इवैल्यूएशन विल बी रॉन्ग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क देम इज, आप उनके बारे में सारा दिन सोचते कैसा है, आपके मन में क्या चलता है उनके बारे में, विच इज नॉट वेरी इजी उनके लिए बताना, लेकिन जो वो बोलते हैं उसके बेसिस पे तो कभी भी चेकिंग नहीं हो सकती कि कौन सही था और कौन सही सोच रहा था, कौन गलत सोच रहा था। आप उनके बारे में सोचते कैसे हैं, इसकी चेकिंग है, और आज साइंस ने वो हमें प्रूफ करके दिखा दिया कि ऑल इन द माइंड।
1: हमारे घर में एक वीआईपी ब्रेकफास्ट पे आने वाले थे तो उनका स्टाफ और उनका छोटा भाई आके पहले बोला पैसा वो मीठा खा जाते हैं, वो बड़ी वो जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन बड़े हैवी जो मिठाइयां होती है ना, प्लीज नाश्ते के टेबल पे मत रखना, रखेंगे तो वो खा लेंगे। अब इस थॉट में मैंने बोला वाइफ को कि भाई ये सब टेबल पे रखना, ये उन्होंने बोला खास नहीं रखना। तो व्हाट माय वाइफ डिड कि उन्होंने बहुत कम शक्कर डाल के हलवा बनाया ताकि बाहर का जो हैवी स्टफ मिठाई नहीं,
0: राइट,
1: तो वो उनको मैंने दिया तो इतने प्यार से खाए, ये भी खुश वो भी खुश, कैसे थॉट,
0: यस एब्सोल्युटली, एक थॉट ही तो चाहिए सिर्फ सब कुछ।
1: वही मैं किसी के घर जाऊं और कोई खाना भूख लगी हुई हो सडनली मर जाती है, मैं सोचा तीन चार रोटी खा जाऊं, थोड़ा सा खा के मैं नहीं, थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग,
0: क्योंकि सामने वाले ने किस थॉट से बनाया है, किस वाइब्रेशन से बनाया है, हमारे आने पर सामने वाले ने कितनी वेलकमिंग एनर्जी क्रिएट की है, कितनी मजबूरी की एनर्जी क्रिएट की है।
1: बाद में भी फोन करके बोला आपकी वाइफ ने जो हलवा बनाया था करेक्ट शुगर थी साहब की, सो
0: बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट द मिठाई, उसके पीछे की वाइब्रेशन थॉट जो क्रिएट हुई थी वो थॉट तक पहुंचती है कि आप आए, आपके लिए हमने इतने प्यार से ये बनाया,
1: अपने हाथ से इसलिए बनाया क्योंकि स्टाफ ज्यादा
0: अच्छा लगा, आपका आना हमें अच्छा लगा, आपके आने पर हमें अच्छा लगा आपके ये करना, और यही अगर हमने ये किया होता कि किसी को बोल दिया होता वो आ रहे हैं बना देना, कुछ ध्यान रखना कि ठीक बने जो जो उन्होंने बोला
1: है,
0: वैसा
1: डालना, इतने बोल दिया
0: तो फिर वो चीज भी अच्छी

0: बनेगी, टेस्ट उसका ठीक होगा लेकिन उसमें वो थॉट्स एंड वो वाइब्रेशंस नहीं होंगे जो दूसरे तक पहुंच के दूसरे को भी अच्छा फील कराते हैं। ये तो सारा दिन की अनुभव है ना, अनुभव इतने होने के बाद भी अगर हम ध्यान नहीं रखें तो वो अज्ञानता हो जाएगी कि हमें मालूम है कि जो हम सोचते हैं वो सामने तक पहुंचता है। तो आज अपनी थॉट्स की थोड़ी चेकिंग करनी पड़ेगी,
1: बिल्कुल,
0: और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, आई कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस।
1: आज दोनों बात डिस्कस हुई, वो लड़की ने अपनी सास को छोटी सी बात बोली, फट कर कितना बड़ा रिजल्ट हुआ। और यहाँ वाइफ ने किया क्या, हलवे को थोड़ा ऐसे
0: छोटा किया,
1: अपने हाथ से बना के दिया, तो उसका इतना बड़ा
0: रिजल्ट मिला,
1: इतनी खुशी में भी एक इतना ओवर था,
0: राइट,
1: और इनका एंगर भी ओवर था,
0: बिकॉज वो खुशी ना हलवे की थी और उस केस में ना वो एंगर एक छोटी सी लाइन का था, दोनों का बेसिस था पहले के क्रिएटेड थॉट्स सेंट एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर माइंड, ऑलरेडी वो पहुंच चुके थे दूसरे के मन में, तो वहां तो भाव एंड भावना ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जैसे ही सामने वो चीज आई वो भाव एंड भावना भी ऑटोमेटिकली बाहर रेडिएट होते हैं। तो आज पक्का करना है और अपने किसी रिश्ते को चेक करना है कि किसी के लिए भी कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि उन तक पहुंचे। अगर ये नहीं चाहते कि वो बात उन तक पहुंचे तो उस थॉट को आज चेंज करना ही पड़ेगा, इट विल हैव टू बी डन राइट नाउ।
1: अब मैं एक आगे आप ही की लैंग्वेज में बात करूंगा, हम ये नहीं चाहते उन तक पहुंचे से ज्यादा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये गंदी थॉट मुझे डिस्टर्ब करे।
0: ब्यूटीफुल,
1: थैंक यू सो मच सिस्टर,
0: ओम शांति,
1: थैंक यू।
2: इन अगस्त 2014 साइंटिस्ट conducted the world's first computer-mediated brain-to-brain telepathy experiment, where a person in India said hola to three people in France. The greetings were not spoken or typed, but their brain received the message. The communication took place between the brains of the people involved, proving that it is all in the mind. Telepathy is thought-to-thought communication. We have all experienced telepathy when we are thinking of someone and we receive their call. When we have a question on our mind and the other person starts answering, when we speak the same things together, when we create thoughts, they are vibrations and they radiate to people. Telepathy, which we have experienced and proved scientifically. Can we afford to create thoughts which we do not wish other people to know? Let us take care of our thoughts like we take care of our words. The negative thoughts we send people keep reaching them, and then the slightest trigger, even a simple word, gets a powerful negative reaction from them. Whether we are receiving from them or creating them, let us not keep negative thoughts on our mind. Let us transform them and radiate pure energy.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडिओ पुणेरी आवाज.
2: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
4: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ. आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे. तो आज मैं आप लोगों के बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ और हमारा आज का विषय है योग. हाँ योग क्या है? हाँ तो आज योग के बारे में ही हम बातें करते हैं. ऐसी तो प्रकृति के बने हुए बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन सबका रिलेशन कहीं ना कहीं है. जैसे प्रकृति के बने हुए सभी पदार्थ क्या परमाणुओं के समूह के बने हैं, यद्यपि हमें इन आंखों से ऐसा प्रतीत होता है मानो वैज्ञानिक बताते हैं कि ये परमाणु गतिमान है, स्थिर नहीं है. इस दृष्टिकोण से हर एक मानव देह भी असंख्य परमाणुओं से बनी है और वे जो है एक तीव्र गति से प्रकंपित हो रहे हैं. यूं मानिए कि परमाणु स्वयं ही अपने से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन प्रोटीन न्यूट्रिन आदि अंशों से बने हैं, परंतु हम मोटे तौर पर अगर ये मान लेते हैं कि जितने भी शरीर हैं वे अगणित परमाणुओं ही के बने हैं. श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे भी इस नियम का अपवाद नहीं है. उनके शरीर भी हमारी देह ही की भांति परमाणुओं के समूह थे. देखने को तो शरीर की एक ही अविच्छिन्न सत्ता दिखाई देती है, परंतु वास्तव में यह छिछला सा है और परमाणुओं के बीच असंख्य अत्यंत न्यून रिक्त स्थान है तथा ये परमाणु प्रतिमान है. अतः किसी भी दैहिक आकृति पर, चाहे वह किसी देवता की आकृति हो या किसी महान पुरुष की, एकाग्र करना निरर्थक है, क्योंकि उनका शरीर एक है ही नहीं, वह तो असंख्य परमाणुओं का बना हुआ है. पुनश्च वे परमाणु तो स्वयं भी अस्थिर है, चंचल है, गतिमान है. अतः जो भी जो चंचल है वह अनेक पर मन की एकाग्रता कैसे हो सकती है? हाँ योग का मतलब समझ में आना और योग लगाना. अगर हम चाहते हैं कि हम किसके साथ योग लगाएं, अगर हमें इसके भी समझ नहीं है तो योग का मतलब क्या है, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है. तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे आकर फिर मिलती हूँ. तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को.

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आगे की चर्चा हम अपनी जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है योग। यहाँ ध्यान रखना है कि प्रकृति के बनाए हुए जितने भी सभी पदार्थ हैं वो परिवर्तनशील हैं। हाँ, वे क्षण क्षण पल पल घटते बढ़ते हैं या बदलते ही टूटते रहते हैं। ये सभी क्या है, नश्वर है। अंत में क्या होता है, वे इस रूप में न रह कर नष्ट हो जाते हैं और उनके तत्व अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं। आज किसी शिशु का शरीर छोटा है तो एक वर्ष के बाद वह बड़ा हो जाएगा। आज यदि कोई देह पतली है तो दो वर्ष के में भी वो मोटी हो सकती है। इस प्रकार जो सदा परिवर्तनशील है और आखिर नश्वर है आखिरी में, तो उसे आधार बनाकर योग साधना का क्या अर्थ है, उसे योग कैसे लगा सकते हैं। योग तो मन के जो स्थिर अथवा बुद्धि को अपने ही लक्ष्य में स्थिरता का नाम है। अतः योग तो उससे लगाना है चाहिए जो स्वयं स्थिर है वो, वरना परिवर्तनशील हो जाएगा। तो हमारा योग का मतलब क्या होता है, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं मनुष्य का जो रहन सहन है, हाँ, वो जीविकोपार्जन जो है, उनके साधन जो भी रहने की बहुत तीव्र गति से बदलते जा रहे हैं। विज्ञान के इस तीव्र देरी वे की जो विकास के मनुष्य हैं, वो भौतिक सुख सुविधा और मनोरंजन के अनगिनत साधन दिए हैं। फलतः मनुष्य जो है वैज्ञानिक साधनों पर अधिक निर्भर करने लगा है। उसकी आवश्यकताएं तथा प्रलोभन के विषय भी अधिक बढ़ गए हैं, जिसके जिससे उसके जो मस्तिष्क पर अभूतपूर्व

दबाव है, इस दिमागी थकावट की हालत जो है, में मनुष्य क्या कर सकता है? दैनिक कार्यों में जो निर्णय लेता है वे भी ऐसे त्रुटिपूर्ण होते हैं कि वे उनसे और समस्याएं खड़ी हो जाती है तथा वह और उलझ जाता है। यह हाल न केवल मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से है बल्कि आज देश विदेश हाँ अंतर्देशीय में भी स्थित है। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि योग लगाना किससे है, योग करना किससे है, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। वर्तमान और अतीत में सबसे जो मुख्य अंतर यह है कि आज हर मानव के मन में तनाव सा तना हुआ है और शहरों का भी यही हाल है। शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहर हाँ चारों ओर जो है चारों ओर फैल रहे हैं और इनमें जो मोटर कारों की ओपों और दूधों कारखानों की जो खड़खड़ हाँ स्कूटरों की आवाज इत्यादि जो है कर्कश ध्वनि और बड़े बड़े बाजारों में हाँ अनियंत्रित भीड़ का ऐसा शोर है जो मनुष्य की नस नस नाड़ियों में इतना बुरा प्रभाव डाल रहा है कि वह सारा दिन चिड़चिड़ापन और थकावट अनुभव करता है। पहले ना तो कभी इतने बड़े शहर थे ना यातायात के ऐसे मतलब साधन थे, ना इतने कारखाने थे और ना ही इतना शोर था। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए कुछ सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है योग। योग के जो अभ्यासी हैं वो कहते हैं हम आत्मा का

परमात्मा से मिलन मनाना चाहते हैं। उनकी यह अभिलाषा सच्ची और सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसके लिए साथ ही उन्हें क्या करना है यह भी तो मालूम होना चाहिए कि परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है। आज बहुत से लोग हैं, हाँ आज बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि उन्हें प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा है, इच्छा रखते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में तो कोई अंतर नहीं है, बल्कि वे दोनों तो एक हैं। एक ओर तो वे परमात्मा को शिव मानते हैं और दूसरी ओर शिवोहम कहते हैं, तो इसका स्मरण करते रहते हैं। इस प्रकार उनके अपने ही मंतव्य परस्पर विपरीत हैं। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर प्रभु मिलन कैसे कर सकते हैं? मिलन तो किन्हीं दो में होता है ना, किसी संबंध के आधार पर होता है। मिलन का अपना एक विशेष जो है सुख होता है। जब कोई बिछड़े हुए प्रेमी मिलते हैं, हाँ, तो उनके हृदय भी उनसे मिलकर अपने में गदगद हो जाते हैं। कई प्रेमी जो होते हैं, कई प्रेमियों के नैनों से तो मिलन के क्षणों में प्रेम की मोती झड़ने लगते हैं और अन्य कई प्रेम से पुलकित हो उठते हैं और उस मिलन के आनंद में खो जाते हैं। वास्तव में पारंपरिक संबंध का बहुत महत्व है, जिसे कई लोग यथारूप नहीं जानते। संबंध ही संसार के सारे व्यवहार एवं व्यापार का संचालक है। माता अपने पुत्र के साथ अपने संबंध से उत्पन्न सहज स्नेह अथवा वात्सल्य के कारण ही उसकी सेवा में, उसके पालन पोषण में लगी रहती है। सखा अपने सखापन के संबंध के कारण ही अपने दिल का सारा हाल बता देता है, जो वह अन्य जनों से गुप्त रखता है। पति पत्नी के साथ अपने विशिष्ट संबंध के कारण ही उसे अपना स्नेह भाजन बनाता है तथा उसके लिए वस्तु वस्त्र की व्यवस्था करने में जुट जाता है। इन संबंधों के कारण ही मनुष्य सर्दी गर्मी निंदा स्तुति भूख प्यास आदि को सहन करता है। ये संबंध ही मनुष्य में एक दूसरे के लिए उत्सर्ग एवं सेवा की भावना पैदा करते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

हमारा आज का विषय है योग। यहाँ पर सभी जानते हैं, अध्यात्म में ये भी कहा जाता है कि ये जाना बहुत आवश्यक प्रश्न है कि परम आत्मा के साथ हाँ आत्मा का क्या संबंध है। यह मालूम होने से हाँ विषय का महत्व ठीक समझ में आता है। हर एक योगाभिलाषी को मालूम होना चाहिए कि परमात्मा आत्मा का परम पिता है, वह उसकी माता भी है, उसका शिक्षक और सदगुरु भी है। आत्मा चिरकाल से उससे बिछड़ी हुई है। हाँ, अब क्या अपने उस सर्व संबंधों से मिलन मनाना ही तो योग है? स्वयं ही को शिव अथवा आत्मा ही को परमात्मा मान लेना तो योग का विपरीत भाव है। हाँ, परमात्मा के साथ अपना संबंध मनाने में हाँ अपना संबंध जो मानते हैं, हाँ संबंध ही को मानने से ही उसके प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत होता है और प्रेम ही तो मन को मग्न करने एवं जोड़ने का साधन है। अतः हर एक योगाभ्यासी जो होते हैं, हर एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस सत्यता का मनन करते हुए इस भाव में हाँ इस भाव में लवलीन हो कि परमात्मा हमारा परम प्रिय परम पिता है, वह हमारी ममता भरी माँ है और वही हमारा परम मित्र भी है तथा अविनाशी शिक्षक और सदगुरु भी है। परमात्मा के साथ हाँ माता पिता का संबंध होने से ही तो हमें उनकी ईश्वरीय संपत्ति पवित्रता और शांति आदि की प्राप्ति होगी। उसके साथ शिक्षक विद्यार्थी का संबंध जोड़ने से ही तो हमें उससे क्या होगा, ईश्वरीय विद्या का लाभ होगा और मार्गदर्शन मिलेगा हाँ तथा गति और सदगति प्राप्त होगी। इन संबंधों के प्यार में हाँ बगे रहना तथा इनकी याद का रस लेते रहना ही योग है। तो हम समझते हैं योग का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध, परमपिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जब जुड़ता है तो यही होता है योग। तो आज का कार्यक्रम हम इसी के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछली बार जैसे कि हमने एन अक्षर से कुछ गाने सुनाए थे, आज भी हम लोग एन अक्षर के कुछ खास गाने आपको सुनाने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस एपिसोड में हमारे साथ विभा जी भी जुड़ जाती हैं और वो एन अक्षर वाले बहुत सारे अच्छे पुराने गाने, सिलेक्टेड कलेक्टेड गाने उनके पास है, जो हम लोग एक एक करके उनके द्वारा सुनेंगे। तो आइए आज के इस विशेष एपिसोड में, कार्यक्रम की शुरुआत में, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी की तरफ से विभा जी का भी स्वागत करना चाहूंगा। विभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में।
1: थैंक यू सनी। सबसे पहले मैं कहूंगी नमस्कार आपको और खाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका स्वागत है। एंड कहते हैं मेरे हौसले न तोड़ पाओगे तुम, क्योंकि मेरी शहादत ही अब मेरा धर्म है। सीमा पे डट कर खड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरा वतन है, देश के शहीदों को नमन। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगा कि कौन सा एक गीत जो आप अभी हमारे सभी श्रोताओं को सुनाने वाले हैं।
1: सबसे पहले मेरे पास गाना है एन से, ना कोई उमंग है ना कोई तिरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक सटे पतंग। इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग, उदासी पे भरा हुआ ये गाना है और इसमें कहीं ना कहीं गिल्ट है।
0: अच्छा,
1: कटी पतंग की रेफरेंस इसमें दी हुई है। जैसे कटी हुई पतंग जिसके हाथ लगती है वो उसी की हो जाती है, उसका बेसिकली कोई मालिक तो वही है जिसके हाथ में वो पतंग है। तो इस गाने का एक उदासी है, एक पीड़ा है इस गाने में, और इसके बोल जो कहीं ना कहीं दिल को छूते हैं। सपनों के देवता करूं क्या मैं तुझको अर्पण, पतझड़ की हूँ मैं छाया, मैं आंसुओं का दर्पण, यही मेरा रूप है यही मेरा रंग। ब्यूटिफुल सॉन्ग।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है कार्यक्रम की शुरुआत में। कटी पतंग इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग है शायद ये, और ये उस जमाने में 1970s का ये खूबसूरत फिल्म था, बहुत ही पॉपुलर फिल्म रहा। राजेश खन्ना और आशा पारेख पर पिक्चराइज किया गया था और इस फिल्म के सारे ही गाने हिट है, लेकिन जो गाना आपने याद किया है वो भी एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देता है। तो चलिए सीधे हम लोग इस गीत की तरफ चलते हैं और श्रोताओं के लिए ये खूबसूरत सा गाना कार्यक्रम की शुरुआत में। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपने ट्यून किया है रेडियो पुनी आवाज को। जी हाँ साथियों, ख्वाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस ख्वाबों के सफर को खूबसूरत गानों का कलेक्शन लेकर आई है विभा जी और इस एपिसोड को बहुत ही अच्छे ढंग से सजा रही हैं अपनी आवाज और अपने भावों के साथ। तो अभी जो गाना आपने सुना कटी पतंग इस एल्बम का, ये आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया हुआ, राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा कटी पतंग इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास बड़ा ही प्यार भरा एक अर्ज करते हुए भक्ति गीत है।
1: जी जी।
2: ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ। ये भक्ति गीत है, भगवान के चरणों की ही सिर्फ आशा की जा रही है, धूल यानी भगवान की कृपा की मांग की जा रही है, असीम भक्ति है इस गाने में। लाए क्या थे जा लेके जाना है, नेक दिल का ही तेरा खजाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, इतना दिया है तूने, गिन गिन के भूलता हूँ। क्या कहूँ शाम तेरी, उपकार बड़े मुझ पर है। तो क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और शैलेंद्र साहब का लिखा ये गीत आपने याद कराया और इस गीत को जो है सुधा मल्होत्रा ने गाया है, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए इस गाने की तरफ, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे गाने जो है विवा जी लेकर आती हैं, जो सुनकर कहीं न कहीं हमारे दिलो दिमाग में एक अलग फील आता है, एक अलग दुनिया में हम लोग चले जाते हैं। और ये जो गाना था काला बाजार, इस एल्बम का था, जो उस समय का ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। देवानंद, विजय आनंद, वैदा रहमन ने काम किया है। तो ये भी एक फिल्म है जिसका जो स्टोरी है थोड़ी सी आज के जमाने से जुड़ता हुआ है, जहां पर हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं। और काला बाजार का मतलब है करप्शन। तो कहीं न कहीं चीजें जो है आज के समय को जोड़ने की कोशिश इस फिल्म की, जो उस समय रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी उसमें कहीं देखते हैं कि सच्चाई कितनी है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभा जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है, ये थोड़ा गमगीन करने वाला गाना है। नम्यता गम तो बर्बादी के अफसाने कहां जाते, निमी पर फिल्माया हुआ ये गाना है। प्यार की तन्हाई में बिता रहे वो लम्हों के साथ, महबूब की तड़प के साथ ये गाया जा रहा है। जीवन के दोनों पहलुओं में वो अपने आप को बयां कर रही है। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई यार तो निकला, अगर सभी होते अपने तो बहने कहां जाते।
1: जी जी जी, विभा जी बहुत ही खूबसूरत गाना है, और कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देता है हम सभी को। तो आइए गीत सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार ब्रेक के बाद। जी हाँ, खाबो खास सफर आप सुन रहे हैं और मैं हूँ आपका हम सफर आरजे सनी। तो चलिए, बहुत ही एक अलग मोड पे जो है गाना आपको ले गया होगा। और रिबा जी ने शुरू में ही कहा कि ये गाना एक नया जो है अनुभव कराता है। तो शकील बदाई साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, नौशाद साहब का संगीत से सजा। ये 1954 में फिल्म आई थी जिसका नाम था अमार, इस एल्बम से था। और जैसे कि विभा जी ने कहा, निम्मी पर पिक्चराइज किया गया था। तो इस फिल्म के कलाकार थे मधुबाला, दिलीप कुमार और निम्मी, और इसके साथ में एक और बहुत ही अच्छे कॉमेडी एक्टर मुकरी साहब भी थे। और मुकरी साहब को आप देखेंगे तो उनकी मूछें जो है और बड़े स्टाइलिश और लंबे होते थे, तो इनके मूछों की जो है बातें फिल्मों में भी आप सुने होंगे, मूछें हो तो नत्थूराम जैसा हो वरना ना हो, तो इस तरह के डायलॉग भी इस पे बने थे। तो बड़ा ही एक अच्छे कलाकार थे, उनकी याद आ गई मुझे। तो जो बहुत ही अच्छा एक गाने की तरफ आप ले गए और फिल्म की बातें मुझे याद आ गई। तो आइए विभा जी, आगे कौन सा गाना आप सुना रहे हैं?
2: अगला गाना मैं लेके आई हूँ, ये मोटिवेशनल सॉन्ग है।
1: अच्छा,
2: मुझे कई बार मोटिवेट किया है। जो जैसे हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जब भी कोई डाउनफॉल हो तो इस गाने को सुनने से ही एक उत्साह बढ़ता है। अब जब इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक जान आ गई। न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बहुत ही प्यारा गाना है। और इसका कैसे गमों के साथ मुकाबला करना, एक एक वर्डिंग जो है कि आपको मोटिवेट करता है, उत्साह लेके आता है। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत को, श्रेष्ठ पल की खुशी गले से लगा के जियो।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी इस गाने को सुना होगा, पता भी होगा। और ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म आई थी हमराज उस जमाने में, और ये काफी चली 1960s-70s के बीच में ये फिल्म आई थी। और इस फिल्म के कलाकार भी बहुत ही अच्छे रहे, जिनके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। तो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, क्या बात। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने याद कराया और सुनाया विवा जी, और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील कराया आपने इस गाने के साथ ही। गाने में कहीं न कहीं एक मोटिवेशन है और हम सभी को जो है गाना सुनते ही अच्छा फील होता है, और कहीं न कहीं इसके जो शब्द हैं वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। हमराज इस एल्बम का गाना आपने सुना, और सुनील दत्त, विम्मी, राजकुमार, सारिका, इन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और बहुत चली थी उस समय ये फिल्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साहिर लुधियानवी साहब ने इस गाने को लिखा था, महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत आवाज और रवि साहब का संगीत से सजा आपने हमराज इस एल्बम का गाना सुना। तो चलिए अब विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है, ये भी निमी पे फिल्माया गया है, ना रो ऐ दिल, कहीं रोने से तकदीर बदलती है, कहीं आंसू बहाने से तमन्नाएं निकलती हैं। ये भी सैड सॉन्ग है। अगर सनी आपने देखा होगा, अगर इनको निमी की कोई भी पिक्चर आप देखो, इनमें उदासी और ये बहुत सस्ती है। जैसे निमी का नाम लेते ही आपको एक ऐसा चेहरा नजर आएगा जिसमें एक दर्द है, एक तड़प वाला उनका चेहरा है। जब वो गाना गाती है ना, तो वो लगता है बाकी दिल से ही कुछ ऐसे वो एक उदासी वाली है। तो ये सैड सॉन्ग है, निमी ने अपने दिल को वो समझाते हुए ये गाने को गा रहे हैं, और इस तड़प को हम समझ पाते हैं, हम उसको महसूस कर पाते हैं, वो गाने का महसूस करके गा रहे हैं। नतीजा मिल गया हमको किसी से दिल लगाने का, सितम देखा नसीबों का, कर्म देखा जमाने का।
1: क्या बात है।
2: तो गाने के बोल
1: जी जी जी। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर, और विभा जी ने बहुत ही खूबसूरत गाना याद कराया है। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खाबो का सफर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ साथियों, अभी आपने सुना एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसे हमारे विभा जी ने याद करा था। और उड़न खटोला ये 1955 में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। शकील बदाई साहब ने इस गाने को लिखा था, लता मंगेशकर जी ने आवाज दिया और नौशाद साहब ने संगीत से सजाया। तो इस फिल्म का जो है, जैसे कि विभा जी ने बताया थोड़ी सी बातें उसमें, और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें दिलीप कुमार, निम्मी और सूर्य कुमारी इसके साथ में टुनटुन इस फिल्म में काम कर रहे थे। टुनटुन एक कॉमेडी कलाकार है, तो ऐसे ही टुनटुन अगर एंट्री करती थी तो लोगों की हंसी अपने आप छूट जाती थी। तो इस तरह से ये जो है ना, एक एक कलाकार की अपनी एक पहचान होती है, थिएटर का एक अलग जो फील है। शायद आज के समय हम लोग टीवी में या फिर मोबाइल पे ही फिल्में देख लेते हैं, तो वो जो फील है कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो चलिए, फिर भी कहीं ना कहीं ये थिएटर की जो एक खूबसूरती है, आप मॉल में जाते हैं देखते हैं तो वो फील आता ही है। तो उड़न कठोला जो है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी, तो उस फिल्म का आपने गाना याद कराया विभा जी, थैंक यू सो मच। आगे अब कौन सा गाना है आपके पिटारे में?
2: मेरे पास अब है एक कवाली, और इसको हम इतना एंजॉय करते हैं कि हम बैठे बैठे जस्ट अपने आप ही हाथों से ताली बजने लगती है। ना तलाश है ना हम सफर की तलाश है, ये मोहब्बत भरी गाना कवाली है। कंपटीशन होगा इस कवाली में।
1: अच्छा।
2: और कंपटीशन है हुस्न और इश्क का। इसकी जो वर्डिंग है बहुत ही बेहतरीन है।
1: हाँ, मुझे याद आ गया, ना तो कारवा की तलाश है।
2: तेरा इश्क है मेरी आंगन, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है।
1: आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा ने, मोहम्मद रफी साहब ने, सभी चार लोगों ने गाया था इस गाने को, और दो दो की जो है जुगलबंदी रही और उसमें उनका कॉम्बिनेशन चला जो आपने कहा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस गाने का आनंद उठाते हैं। बहुत ही अच्छा गीत है और जैसे आपने कहा कव्वाली है, तो कव्वाली का भी मजा लिया जाए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तो सनी, आपको कैसे लगी ये कहानी?
2: अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: इश्क न पूछे इश्क न पूछे जाता, बहुत ही अच्छी बात।
2: जी जी जी। दो बरसात की रात इस एल्बम का ये गाना था जिसे साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा था और मन्नाडे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफी ने गाया था। रोशन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना आपने सुनाया जो कवाली स्टाइल में थी, हमें बहुत पसंद आया और लगता है हमारे सभी श्रोताओं को भी उतना ही एंजॉय उन्होंने किया होगा, उतना ही अच्छा फील किया होगा उन सभी श्रोताओं ने भी। तो आइए, भरत भूषण साहब, मधुबाला, के एन सिंह, इन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और बरसात की रात एक अलग कहानी बताती है और ये कहानी जो है स्टोरी बहुत छोटी लेकिन फिर भी उसको बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज किया था पीएल संतोषी साहब ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है आपके पास जी?
1: अगला गाना थोड़ा दर्द भरा है। ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा, कर क्या कर अपनी राहें जुदा है। थोड़ा दर्द भरा गाना है। कभी कभी मोहब्बत में ऐसा वक्त भी आता है जब रास्ते अलग हो जाते हैं, तो मर्यादा और कुछ जिम्मेदारियाँ और कभी मजबूरियाँ रास्ता रुक लेती हैं। तो गाने में दर्द है, उदासी है, तो फिर भी हम एंजॉय करते हैं इसकी वर्डिंग को।
2: हाँ, कहीं ना कहीं जो है अलग अलग फ्लेवर के जो गाने हैं और वो मैसेज के साथ, और हम सब इंसान हैं तो कभी ना कभी ये जो फील है, कभी सुख कभी दुख कभी कुछ और कभी कुछ और, ऐसे हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गीत है ये भी, इसको भी एंजॉय करते हैं। आप सुना है रेडियो को मेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बातें करते करते मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे आ गए हैं। और एक कली मुस्काई 1968 का ये गाना आपने सुना, जिसे अभी रीवा जी ने बताया। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन का संगीत से सजा ये गाना आपने सुना। और इस गाने के साथ साथ इसके कलाकार थे इस फिल्म के, एक कली मुस्काई, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, ललिता पवार, निरुपमा रॉय ने इसमें काम किया था। वसंत जोगलेकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और मदन मोहन साहब ने इसे संगीत से संवारा था। तो चलिए, अब आखिरी गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: ये अगला गाना प्यार भरा है और इसमें एक जीवन की सच्चाई है। और है न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। इसमें मुझे लगता है जैसे ये हमारी अपने श्रोताओं के साथ की बात भी हो रही है कि वो कहाँ है, हम कहाँ है, क्योंकि एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्शन है। और इस गाने में है एक अनजान सी कशिश है और जैसे सदियों की पहचान हो ऐसी मोहब्बत का जिक्र है। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके कारवा।
0: जी विभा जी, बात ही अच्छी जो है बात आपने कही। ये कहीं ना कहीं हमें जो है गाने भी कनेक्ट करते हैं और हम इतने दूर होकर भी हमारे श्रोताओं के बहुत करीब हैं, उनके मैसेजेस और उनके फोन कॉल्स हमें जो है एनर्जी देते हैं और हमें खुशी देता है उनकी सारी बातें। तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है। जुड़ाव के साथ साथ आपने कहा कि ये जो फिल्म है ये भी एक अच्छी फिल्म थी जिसमें देवानंद साहब ने एक्टिंग किया है। एक मस्त मौला जो है वकील बना हुआ है और उनका कामकाज में कम मन लगता है, बाकी दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान लगता है। तो ऐसा एक मस्ती भरा किरदार उन्होंने निभाया है इस फिल्म में। तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं और इसी के साथ हमारे सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा, ये जो फिल्म थी बात एक रात की, इस एल्बम से है जिसमें देवानंद साहब, वैदा रेमन, जॉनी वॉकर और चंद्रशेखर ने काम किया था और उस समय ये फिल्म भी अच्छी चली थी। अब इस फिल्म का ये जो गाना है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, सुमन कल्याणपुरी, हेमंत कुमार ने गाया है, सचिन देव बर्मन साहब का संगीत से सजा बात एक रात की। तो चलिए, अब रात भी बहुत हो गई है और हम भी चाहेंगे आपसे इजाजत। विभा जी को मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतने अच्छे गाने सुनाने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं का प्यार से सुनने का भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार के साथ प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और विभा जी को दीजिए इजाजत। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मगर लगता

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

टू बोरियत की एरर, नएपन की कमाल रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है, किस किसके पास

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो। अपन खूब वेळा इतरांचे एवढे होऊन जातो,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ

0: तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: एक बार अपने अंदर के रेडियो को सुनो, एक एक करके अपनी खुशियों को चुनो, आशाओं के धागे को जोड़ जोड़ कर जीवन में सफलता की चादर को बुनो। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम रेडियो सुनते हैं ना दिन भर, एक गीत जो पसंद का है, एक कार्यक्रम जो पसंद का है, और धीरे धीरे से छोटे छोटे पसंदीदा कार्यक्रमों को जोड़ते हुए सारा दिन ही कितना अच्छा लगता है सुनते हुए रेडियो को। ठीक ऐसे ही जब हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को चुनने लगते हैं, संभालने लगते हैं, तो सारा जीवन ही खुशहाल दिखने लगता है। ऐसा ही अनुभव है हमारे आज के अतिथि का। हमारे बीच आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में यशस्वी भारत कार्यक्रम में जुड़े हैं दिवाकर जी, जिन्होंने अपने सुरीले आवाज से सारे देश को, मैं तो कहूंगा सारी दुनिया को, एक ऐसी आत्मिक अनुभूति कराई है जो केवल वही करा सकता है जिसने संगीत को अपने आत्मा में बसाया है। आइए दोस्तों मिलते हैं दिवाकर जी से। दिवाकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आरजे शांतनु आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आज आप हमारे बीच में। वेलकम
1: जी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहां आप सबके बीच में हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप सबके साथ अपनी जो अंतर्मन की जो जितनी बातें शेयर कर सकूं।
0: थैंक यू दिवाकर जी। आपको खैर सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जब मैं आपके बायोडाटा को पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक बहुत खास बात दिखी। उसमें यह लिखा था कि आप एक इटर्नल लर्नर हैं, आपको सदा सीखने की बहुत चाह रहती है। तो मैं समझता हूँ आप खुद को गायक कम बट साधक ज्यादा समझते हैं, राइट?
1: यस, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सच है। मैं ये फील करता हूँ कि किसी भी जो किसी भी क्षेत्र में और किसी भी आर्ट फॉर्म में लर्निंग सबसे बड़ी चीज होती है, एंड लर्निंग ही आपको हमेशा ग्रो करवाती है। बिकॉज हर सेकंड आप कोई चीज नई लर्न करते हैं, नई चीज कोई ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके आप स्पिरिचुअली भी और उस आर्ट में भी हमेशा ग्रो करते हैं।
0: तो मैं यहाँ आपको पूछना चाहूंगा, अगर मुझे एक स्टूडेंट बनना है या मुझे अपनी फील्ड में ग्रो भी करना है लेकिन सीखते भी जाना, कई बार क्या होता है कि हमको वो नशा चढ़ जाता है कि भाई मैं तो अपने फील्ड में काफी आगे हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, अब मेरे लिए सीखने के लिए क्या ही बचा है, यू नो देयर कम्स अ लिटिल काइंड ऑफ एन एरोगेंस। उससे खुद को कैसे बचाएं? हाउ टू स्टे अ गुड लर्नर, एक साधक कैसे बने रह सकते हैं? क्योंकि आपके से वो वाइब्रेशन आता है कि यू आर अ वेरी गुड साधक, तो कैसे आपने अपने को ऐसे मेंटेन किया होगा?
1: इट वॉज मेरे लिए इसको मेंटेन करना इतनी मुश्किल बात इसलिए नहीं थी क्योंकि जो मेरे जो स्वभाव में मेरे नेचर में एक बात थी जो किसी में भी आए तो वो ऐसा ही रहेगा।

0: वो ये है कि आप अपने गुरु के प्रति और अपनी आर्ट के प्रति जो समर्पण की भावना रखें, टू सरेंडर योर सेल्फ कम्प्लीटली विदाउट एनी यू नो इनहिबिशन बेसिकली, तो वो आपको जब वो भावना आपके अंदर आएगी कि आप अनक्वेश्चनिंगली और बिना जाने कि कल क्या होगा या आप जो कर रहे हैं उससे कल क्या होगा, अब क्या अब उस रास्ते को फॉलो करें, तो आपको वो चीज मिल भी जाएगी, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस मंजिल पर या उस एक शिखर पर पहुंचे हैं, एंड रादर आपको इंकरेजमेंट मिलेगी कि आप आगे और उसी साधक के रास्ते को उसी साधक की राह पर और आगे चलते रहें।
1: आई थिंक
0: समर्पण, सरेंडर,
1: सरेंडर, समर्पणता, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने सामने रखी आज हम सबके की। अगर समर्पणता है, टोटल सरेंडरेंस है, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं होगा, प्रश्न है तो फिर समर्पणता नहीं है, और अगर समर्पणता है तो फिर प्रश्न की जगह ही नहीं बचती। ये आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगा कि समर्पणता आती है व्यक्ति में, और वो समर्पणता कई बार सामने वाले व्यक्ति को बहुत ऐसे परिस्थिति में भी डाल देते कि वो बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसे समय में खुद को कैसे संभाल के रखें?
0: एक बार फिर दोबारा वो थोड़ा सा इसमें हुआ।
1: कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम समर्पण बुद्धि रहें, हम जो साधना कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसको हम जरूर फॉलो करें, लेकिन रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, मुश्किलात बहुत आती हैं, तो ऐसे समय में समर्पणता के भाव को संजो के रखना और आगे बढ़ते रहना, ये कैसे संभव है?
0: ये सवाल काफी लोगों के मन में आता है, मैंने नोट किया है, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि जो रुकावटें आ रही हैं वो शायद काफी लोगों उनके माइंड में ये आता होगा कि रुकावटें अगर आ रही हैं तो वो रोकने के लिए ही आ रही हैं, या इसको वो ईश्वर की मर्जी मानते हैं कि अगर रुकावटें आ रही हैं इसका मतलब ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन कि अगर रुकावटें आ रही है तो मुझे रुक जाना चाहिए, उनके साथ ही रुक जाना चाहिए, पर इट्स जो होना ये चाहिए कि किसी भी साधक को ये मानना चाहिए कि वो रुकावटें रुकावटें नहीं बल्कि एक परीक्षा है, एक टेस्ट है,
1: अपॉर्चुनिटी
0: जैसे, कि अगर आपने उस सिचुएशन को क्रॉस कर लिया या उस जो भी आपको रास्ते में परिस्थितियां मिलेगी उनको क्रॉस कर लिया, तो आप अलग अलग जो स्टेप्स हैं अपनी साधना के उनमें आगे बढ़ते जाएंगे।
1: जी, आई थिंक आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम सबके लिए कि भले शारीरिक रीति कुछ रुकावटें हैं, लेकिन उन सबको एक बाजू में रख करके आपने सीधा अपने लक्ष्य को थामे रखा और साधना के पथ पे आप आगे बढ़ते रहे, और उसकी वजह से परमात्मा की अनुकंपा कहें या लोगों का प्यार कहें या फिर संगीत की शक्ति कहें, उसने सदा आपको आगे बढ़ाया है, और आप इसका एक बहुत अच्छा जीता जागता मिसाल है। तो आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, आपका जो संगीत है आपको देश के कोने कोने में ले जाता है, ना केवल इतना बट विदेश में भी आपने काफी ट्रैवल किया है, तो जब आप विदेश और देश दोनों जगह पे इतनी बार ट्रैवल करते हैं, आपको भारत कैसे लगता है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको महसूस कराता है कि भारत तो भारत है?
0: सबसे जो हमारे भारत की जो खास बात है, जो एक एक विशेषता है, जो खूबी है, वो ये है कि यहाँ चाहे वो यहाँ के लोग यहाँ बसे हों या यहीं के लोग जो हमें अब्रॉड मिलते हैं, विदेशों के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर मिलते हैं, उनकी ये खासियत ये है कि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो अपनापन है, वो कहने को, और सच बात है कि कहने को पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड एक्सप्रेस करता है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी से, एक सादगी से एक्सप्रेस करने का जो अंदाज, जो एक खुशबू और एक तरीका जो भारतवासियों का है, वो शायद ही कहीं और आपको मिले, चाहे आप पूरी दुनिया, चाहे आप हर एक कॉन्टिनेंट में आप पूरा ट्रैवल करें, चाहे हर जगह अपने किसी भी अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में आगे बढ़ते हुए उसको लेके जाएं, लेकिन जो भारतवासियों की बात है, जो भारत वालों की जो एक सादगी है और एक्सप्रेस करने का जो अंदाज है, और आपको आपको एम्ब्रेस करने का, आपको वेलकम करने का एक जो एक खास अंदाज है, वो कहीं और मिलना पॉसिबल ही नहीं हो सकता।
1: तो ऐसा कोई एक अनुभव जो आपने किया हो जब आप विदेश या देश में ट्रैवल कर रहे थे और आपके परफॉर्मेंसेस हो रहे थे, ऐसा कोई एक अनुभव जो आपको याद आता हो जिसने आपको आपके देश के और करीब ले आया?
0: जी, ऐसे अनेक हुए, लेकिन

0: कीपिंग इन माइंड जो हम बात कर रहे थे, एक बहुत ही एक खास अनुभव मेरे जहन में अभी अभी आया। एक बार मैं वर्ल्ड टूर पे था और हम काफी जगह गए, यूएस गए थे, साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं सुरिनाम वहां पर भी गए थे। तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहां क्रॉस करते हुए जो वहां से परफॉर्मेंस होने के बाद ऑन रूट यू नो बैक टू इंडिया, एक बहुत प्यारा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है कुरासाओ। वहां पर एक स्टॉप ओवर था, लेकिन वो स्टॉप ओवर एक बहुत ही पावन एक्सपीरियंस में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वहां लैंड करते ही एक इंडियन कम्युनिटी है जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर बनाया है, एक जहां पर वो सब लोग गैदर करते हैं, सब लोग मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे को वेलकम करते हैं और सब लोग वहां वक्त भी बिताते हैं साथ में हर फ्री टाइम में। तो मैं उस इंडियन कम्युनिटी से मिला भी, उन सब से मिला, उनके पास बकायदा सारे गानों के सीडीज होती हैं जो उस वक्त चार्ट बस्ते चल रहे हैं, उनके पास सारी मूवीज की डीवीडीज होती हैं जो उस टाइम लॉन्च हो रही हैं, सब कुछ होता है उनके पास। प्लस जैसे हम उस मंदिर में हमने एंटर किया, मतलब हमने पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर किया साथ में मिलकर, लेकिन जैसे उस मंदिर में एंटर किया तो वहां एक जो स्वागत की अनुभूति हुई और उस इंडियन कम्युनिटीज ने, उन इंडियन फैमिलीज ने मिलकर सबके लिए खाना, सबके लिए भोजन प्रिपेयर किया और सबको इतने प्यार से और इतने यू नो वार्म फीलिंग से सबको यू नो सबको सर्व किया, और सबने जो पूरी टीम ने, मैंने और म्यूजिशियंस ने इतना अच्छा फील किया इतना, बिकॉज एक तो था जो शारीरिक थकान सबकी दूर रही वो तो एक बात है ही, लेकिन साथ साथ इट वॉज जस्ट लाइक कि सब लोग वापस अपने इंडिया में ही हैं और ये हम एक फैमिली, हम एक कम्युनिटी इंडिया के किसी आइलैंड में अनुभव कर रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग।
1: आई थिंक आपके इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि चाहे ज्योग्राफिकली आप कितने भी दूर हैं, लेकिन अगर लाइक माइंडेड लोग हैं तो वो आपका घर बन जाता है। और ये जो आपने इतना सुंदर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये आपके आवाज से समझ में आ रहा था कि आपने उस समय क्या फील किया होगा, लेकिन शुरू में अगर इसको अगर बयां करना हो तो कौन सा गीत, कौन सा नगमा आपको गुनगुनाने का मन करता है?
0: गीत तो इतने सारे हैं जो मेरी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये भावना और वो जो सादगी की भावना है उसको मैं एक गीत के थ्रू, कुछ लाइनों के थ्रू, कुछ पंक्तियों के थ्रू बयान करना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल।

थैंक यू सो मच. आई थिंक आई एम स्पीचलेस और मुझे पता है हमारे श्रोता भी स्पीचलेस हो गए हैं. शब्द नहीं है हमारे पास आपको थैंक्स करने का. और इस गीत से मुझे एक चीज ख्याल में आया दिवाकर जी कि हमारे चाहे आप शास्त्रीय संगीत कहें या फिल्मी संगीत कहें, गीतों के द्वारा समाज की बहुत सेवा हुई है.

0: आप मानते हैं इस बात को?
1: मतलब 100% मैं इसको 100% मानता हूँ। ये सबसे बड़ी जो गीतों से सेवा हुई वो लोगों के मन तक, लोगों की अंतरात्मा तक पहुंचना, क्योंकि लोगों की जो तकलीफें हैं, लोगों की जो संघर्ष हैं, उनको समझना और उनको एक एक उस भावना से बयान करना, एक अपने आर्ट फॉर्म से बयान करना, वो सबसे बड़ी बात रही है, सबके लिए स्पेशल बात रही है।
0: जी, तो ऐसे में मुझे ऐसा ख्याल आता है कभी कभी कि जैसे संगीत ने आपको इतना प्रतिष्ठित किया, ठीक है, आपको इतना आगे बढ़ाया, आपको इतना उल्लेखनीय व्यक्तित्व बना दिया जो आज हम सब देखते हैं, लेकिन कई चीजें संगीत ने आपको अंदरूनी ऐसे दी होंगी जो हमें नहीं दिखता लेकिन केवल आपको पता है। वो ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं या तोहफे हैं जो संगीत से आपको प्राप्त हुए हैं, इंटरनल अंदरूनी?
1: जो इंटरनल, जो मैंने एक अनुभव की ये चीज काफी वक्त से, जबकि इसको हम कह सकते हैं कि ये रिसेंट है, लेकिन ये अनुभूति मुझे पिछले 4-5 सालों से हुई है। मैं इसी बारे में आपकी जो आपसे चर्चा, आपसे बात करना चाहूंगा, आपसे ये शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो कितने लोग ये अनुभव करते होंगे कि जो रियाज है, जो रियाज है वो सिर्फ एक मतलब जिसे कह सकते हैं एक अभ्यास, एक रिहर्सल, एक आपके जो किसी भी आर्ट फॉर्म में, और अगर म्यूजिक की बात की जाए तो उसमें उसमें घूमना फिरना, उसमें ही जो एक्सप्लोर करते हैं, रियाज असल में, रियाज दरअसल जो हकीकत में इससे काफी ऊपर है। रियाज एक्चुअली में इट्स अ फॉर्म ऑफ इनर मेडिटेशन। जो मुझे एक्सपीरियंस हुई जब से मैंने जो अपना जो रियाज है या अपनी जो इनर मेडिटेशन है अपने मंदिर में करनी शुरू की, तब से मैंने रियलाइज किया कि जो मैं अपने म्यूजिकली जो करता हूँ वो तो करता ही हूँ, लेकिन मैं उसके अलावा काफी वक्त शांत बैठ के बिताता हूँ वहां पर, क्योंकि दैट इज लाइक कम्युनिकेटिंग विद माई सेल्फ, इट्स लाइक कम्युनिकेटिंग विद माई ओन सेल्फ। एंड जो संगीत के रियाज में वो चीज आउटवर्डली प्रोजेक्ट होती है, लेकिन जो शांति में वो मेरी अपने अंदरूनी और अपने जो अंतरात्मा से जो बातचीत है उसमें वो बयान होती है। वो चीज मुझे एज अ पर्सन, एज अ म्यूजिशियन और एज अ सिंगर हमेशा ग्रो करवाती है।
0: बहुत सुंदर। आई थिंक सात जो सुर हम जानते हैं या सुनते हैं या देखते हैं या जिनका हमें पता है, उसके अलावा एक आठवां सुर होता है जो संगीत हमें परमात्मा से या अंतरात्मा से जोड़ने में मदद करता है। तो इसलिए संगीत का जो ये पावर है या किसी भी कला का जो ये एक पावर है कि वो हमें हमसे रूबरू कराता है और उसके नजदीक ले जाता है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल देन है संगीत की। लेकिन यहाँ पर मुझे एक और बात याद आती है कि आप न केवल संगीत लेकिन पढ़ाई में भी बहुत आगे रहे शुरू से, और एंड ये बैलेंस कैसे किया आपने?
1: लाइक वी से यू नो दिस इज सेइंग दैट यू नो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, राइट? तो बाय दैट टोकन आई वाज वेरी अडैप्टेबल, मतलब अगर देखा जाए तो मैं अपने आप को उस परिस्थिति के साथ अडैप्ट करता था।
0: जी,
1: तो जैसे जैसे आप जानते हैं कि संगीत का सफर मेरा बहुत पहले शुरू हुआ, बचपन से।
0: हाँ जी।
1: और हाई स्कूल से पहले जो यू नो 6th-7th standard में ये जो सफर लोकप्रियता की यू नो मार्ग की तरफ जाने लगा, टेलीविजन के थ्रू और यू नो कमर्शियल लाइन में ये काफी आगे जाने लगा, तो नेचुरली जो एग्जाम्स और जो डे टू डे जो एक जो स्टूडेंट की लाइफ होती है उसको, उस पर थोड़ा सा असर आने लगा। लेकिन उसका मैंने एक तरीका अपनाया, वो ये था कि जिस वक्त ये एक्टिविटीज नहीं हो रही उस वक्त पूरी तरह मतलब पढ़ाई लिखाई में उसको डिवोट किया जाए। एग्जाम्स अगर हो रहे हैं और सौभाग्य से अगर एग्जाम्स के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो एग्जाम्स में ये डिवोट किया जाए अपनी एनर्जी पढ़ने लिखने में, और जब एग्जाम्स आए तो कम से कम एफर्ट लगे उस टाइम कम से कम, ताकि यू नो एक विद इन शॉर्ट नोटिस में उसको जो भी कम्प्लीट करना है उसे कम्प्लीट कर सकूं, ताकि आने वाले वक्त का कोई कुछ पता नहीं, हो सकता है कि अगले वाले एग्जाम्स में मैं उस स्थिति में ना हूं कि इमीडिएटली उसको ऐसा फॉलो करने के लिए। तो जितना अहेड ऑफ टाइम जितनी चीजें पूरी हो सके वो हो सके, ताकि कभी भी कल दिक्कत ना आए। और ये मैंने फिर पूरे लाइफ में तब से लेकर आज तक ये फॉलो किया, और इसका मुझे काफी लाभ भी मिला, इसका पूरे टाइम इसका लाभ मिला, इसके काफी फायदे थे, एंड इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी।
0: आई थिंक हमारे श्रोता साथियों को मैं यह बताना चाहूंगा कि

0: इवन जो आपके यू नो रोज रोजमर्रा के जो जितने भी आपकी एक्टिविटीज होती है उनमें भी अगर आप ऐसे एकाग्रता रखें तो जब कोई बड़ी परिस्थिति आएगी तो आपको छोटी चीजों में उतना वक्त देना नहीं पड़ेगा।
1: जी आई थिंक यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और मैं समझता हूँ आपने संगीत की तालीम जो है गुरु शिष्य परंपरा में ली है। क्या है ये गुरु शिष्य परंपरा?
0: सबसे ये सौ बातों की एक बात है कि वो अपने गुरु के प्रति समर्पण है, जो आपको वो जो आपको उनके उनके उनकी वाणी से जो भी आपको जो ज्ञान मिले, जो आपको शिक्षा मिले, जो आपको सीखने की बात मिले, उसे आप समर्पण की भावना से विदाउट यू नो थिंकिंग अबाउट व्हाट दैट माइट ब्रिंग यू, आप उसे यू नो एक्सेप्ट करें और आप उसे अपने अंदर ढाल लें, तो दैट इज द एसेंस ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। यू नो दैट्स द एसेंस ऑफ एनी साधक, एनी स्टूडेंट हु इज गिविंग हिज बेस्ट टू, हु इज ट्राइंग टू यू नो कंप्लीटली गिवन टू हिज गुरु।
1: तो मुझे एक सवाल यहाँ पर पूछना था जो कि हमारे श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी होगा कि जैसे कि आप जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा भारत की एक अत्यंत पारंपरिक और अत्यंत अनूठी परंपरा है। यहाँ पर गुरु जो है वो स्टूडेंट को या डिसाइपल को, शिष्य को केवल शिष्य या छात्र नहीं समझता था लेकिन अपने बच्चे की तरह उसका पालना करना, उसको शिक्षा देना, उसको अपनी सारी तालीम दे देना, अपना सारा हुनर उसको सौंप देना, ये एक परंपरा होती थी। लेकिन क्या आज वो परंपरा है या लोगों को शायद इसका पता कम है? क्या दिखता है आपको गुरु शिष्य परंपरा का भविष्य क्या है या हाउ डू यू सी इट नाउ,
0: लाइक हाउ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इज, यू नो?
1: जी जी
0: क्योंकि हम मानते हैं कि हर एक यू नो एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ वक्त के साथ इवॉल्व भी करती है, वक्त के साथ यू नो थोड़ा अपडेट भी होती है, वो अलग बात है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो आजकल की जो यंगर जो युवा पीढ़ी है, यंगर जनरेशन है, उसमें वो समर्पण और वो पेशेंस वो काफी कम होता जा रहा है। किसी भी फील्ड में सीखने के लिए वो बहुत कम होता जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट्स मिले, और बेशक मैं मानता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बेशक आपके जो तरीके हैं, जो आपके रोजमर्रा के इंटरेक्शन है अपने गुरु के साथ, उसमें काफी टेक्नोलॉजी और काफी उन चीजों का रोल हो सकता है, रोल क्योंकि दैट्स नॉट अ बैड थिंग। कभी हो सकता है कि आप किसी भी कारणवश बाहर हो, या आपके गुरु या आपके जो मेंटर्स हैं वो किसी कारणवश बाहर हो, इंडिया से या बाहर हो या शहर से बाहर हो, बट दैट डजंट मीन कि आपका जो पेशेंस है, आपके जो एसेंस है, आपके जो समर्पण है और आपका जो उसको फॉलो करने का तरीका है वो चेंज हो। एंड सैडली वो चीज सीखने के जो जो आपकी अपनी जड़ों को मजबूत करने की जो भावना है वो यंगर पीढ़ी जो यंगर जनरेशन में काफी कम होती जा रही है। एंड सैडली आई वॉन्ट यू नो डू आई वॉन्ट टू से कि इट विल गेट बेटर, बट अनटिल और अनलेस जो लोग जिन्होंने भी लाइफ के इस चीज को फॉलो किया है वो उस चीज को आगे लोगों तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये चीज और हाईटेक होते होते लोगों से दूर होती जाएगी।
1: आई थिंक ये एक बहुत गहरा पहलू आपने सामने रखा है कि पेशेंस, धीरे धैर्यता, धीरज, ये बहुत जरूरी है अगर व्यक्ति सच में अपने को डेवलप करना चाहता है।
0: एंड इसको सादगी में, क्योंकि जैसे हमारे पास काफी लोग ऐसे हैं जो शायद उतनी इलैबरेट भाषा भी यूज नहीं करते, इतने लोग हैं ना, तो उनके लिए कि वो ये याद रखें कि धीरे धीरे चलना, बस धीरे चलना, मतलब ऑफकोर्स प्रोफेशनल लाइफ में धीरे नहीं चलना, बट सीखने में धीरे एंड स्टेडीली, धैर्य के साथ धीरे और एकाग्रता के साथ चलना धीरे, अगर वो इसको याद रखें, इसको लागू रखें, तो आप कभी भटकेंगे नहीं।
1: जी सो आई थिंक ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है कि चलते रहना है, इसलिए आपको लंबे समय तक सीखना है, इसके लिए आपको धीरे धीरे चलना है और एकाग्रता के साथ चलना है। जैसे आपके गीत ने मुझे बांध रखा था, मैं समझता हूँ हमारे सभी श्रोता साथियों को भी ऐसे ही बांध के रखा होगा। ना केवल आपके गीत दिवाकर जी, मुझे लगता है आपकी जो भावनाएं हैं, आप जो दिल से एक एक प्रश्न का हमारे सामने इतने प्यारा उत्तर दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सुनते रहे। लेकिन क्या करें, घड़ी के कांटे रुकते ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम दोबारा मिलेंगे दिवाकर जी से अगले एपिसोड में। तब तक आप जरूर हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन के साथ। दोबारा मिलते हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में।

0: हमारे प्यारे दोस्त दिवाकर जी के साथ।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्रिय किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण। बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही, आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सिकंदर बेगम गदर के दौरान भोपाल की शासक थी और अंग्रेज सरकार की प्रबल समर्थक भी। उनके दौर में भोपाल के वतन परस्त फौजियों ने 6 अगस्त 1857 को सीहोर में अंग्रेजी राज के विरुद्ध सिपाही बहादुर सरकार स्थापित की थी। उन्होंने जगह जगह इस नई सरकार के झंडे गाड़ दिए और सभी से अपील की कि वो इस नई सरकार के हाथ मजबूत करें। उन्होंने अपनी सरकार के तहत विभिन्न

0: असली कार्यालय भी स्थापित किए थे। भोपाल की बगावत कई एतबार से मध्य भारत और मालवा की बगावतों से भिन्न थी। भोपाल के बागियों ने भोपाल की बगावत को एक बामकसद और मजबूत शक्ल देने की कोशिश की थी। रिसालदार वली शाह के नेतृत्व में ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसमें अंग्रेजों को निकालकर शासन की बागडोर हिंदुस्तानी जनता के हाथों में देने का इरादा था। इस सरकार को स्थापित करने वाले सीहोर फौज के चार वतन परस्त अफसर थे। भोपाल राज्य में ये पहली समानांतर सरकार थी जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्थापित हुई थी। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना का मूल्य 356 से भी अधिक जांबाज वतन परस्तों ने सामूहिक रूप से सजाए मौत पाकर चुकाया था।
1: अरे खान, अच्छा ही किया जो उस वक्त तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं इतना मारता उसे कि बस।
2: हाँ, बसकर भोपाली।
1: अरे खान, ये बसकर भोपाली का क्या मतलब हुआ?
3: अब ये भी हम बताएं। देखो भैया, ऐसा है कि तुम बस ये गप्पे और बतोले ही कर सकते हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर देता वगैरह वगैरह,
2: लेकिन करोगे कुछ नहीं।
1: अच्छा।
3: हाँ और क्या, खास तौर से लड़ाई बड़ाई की बात करें तो बॉस, सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत हमारे मेरठ से हुई थी।
2: हाँ, उस लड़ाई में हमारी झांसी ने क्या कमाल किया ये दुनिया जानती है। अब ये बताओ, तुम्हारा भोपाल कहाँ था?
1: देखो माँ, तुम लोग फिजूल में मत उलझाओ।
4: अरे किस बात पर बहस हो रही है बेटा?
2: कुछ नहीं काका, बस जरा इनकी खिंचाई कर रहे थे।
1: अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं काका, दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि 1857 के विद्रोह में भोपाल के बाशिंदों ने कुछ किया ही नहीं।
4: बिल्कुल गलत।
2: हाँ? क्यों काका?
4: बेटा 1857 के विद्रोह का असर तो पूरे हिंदुस्तान पर पड़ा था, और भोपाल में तो बागियों की हालत ऐसी थी कि उन्होंने देश की पहली समानांतर सरकार सिपाही बहादुर के नाम से बना ली थी।
2: सिपाही बहादुर?
4: हाँ, अंग्रेजी आतंक के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, मजदूर, कामगार सभी सिपाही बहादुर बनकर लड़े, और उनके बेशकीमती बलिदान की वजह से आज भी भोपाल का सिर फख्र से ऊंचा है।
1: काका कुछ और बताइए ना, इसके बारे में तो हमने तो कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं।
4: अच्छा ठीक है, मैं जरा रसोई देखकर आता हूँ, तब तक तुम लोग चाय पियो। अरे राजू, चाय लेके आया।
2: और सर इधर पोछा मार, और उधर दो समोसे लगा।
3: आइए काका।
1: हाँ और बताइए सिपाही बहादुर के बारे में, जिनसे इन लोगों का जरा दिमाग खुल जाए।
4: बेटा तुम लोगों को तो ये पता ही है कि 1857 के संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी, और अंग्रेजों ने लाल किले और दिल्ली के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हिंदुस्तानी बागियों ने उन दिनों बहादुर शाह जफर को अपना सिरमौर माना था, और उन्होंने ही पूरे देश से अपील की कि अपनी अपनी जमीन से सब लोग अंग्रेजों को बाहर कर दें। इस अपील का भोपाल और आसपास के इलाकों में खूब असर हुआ। अपने देशी सिपाहियों ने कमर कस ली।
1: बस बहुत हो गई इन अंग्रेजों की गुलामी।
5: हाँ, हम अब और सहन नहीं कर सकते। हम सबको अब एकजुट होना ही पड़ेगा, हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए।
6: हाँ साथियों, कल तक हम जिन गोरों का हुक्म बजाते थे, अब उन्हीं को तलखियत भरी नजरों से देखेंगे, और जरूरत पड़ने पर उनकी जान भी लेंगे।
1: बिल्कुल, अगर हक मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीन कर रहेंगे।
5: लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे
6: साथियों? जिन खजानों पर हम पहरा देते हैं, हम उन्हीं को लूटेंगे, उनके बंगलों को जलाएंगे, उन्हें पूरी तरह से नेस्त नाबूद करेंगे, भोपाल मालवा का सिर मुल्क में ऊंचा करेंगे। साथियों आगे बढ़ो।

0: हमें खुशी है साथियों कि हम सब ने मिलजुल कर इस काम को बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन ये सच है कि किसी एक को रहनुमाई की बागडोर संभालनी ही होगी। इसके लिए हम अपना नेता चुनते हैं रिसालदार वली शाह को।
1: वली शाह
2: जिंदाबाद,
1: वली शाह
2: जिंदाबाद,
1: वली शाह
2: जिंदाबाद।
3: साथियों, उम्मीद है कि मुल्क की आजादी और बेहतरी के लिए हम सब भाई मिलकर लड़ेंगे। अपने इरादों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने के लिए हम अपनी एक सरकार बनाएंगे।
4: अपनी सरकार?
3: अपनी सरकार? हाँ साथियों, और इस सरकार में कोई अफसर नहीं होगा, हर कोई सिपाही होगा, सिपाही बहादुर। और इसीलिए हमारी सरकार का नाम होगा सिपाही बहादुर।
1: सिपाही बहादुर
2: जिंदाबाद,
1: सिपाही बहादुर
2: जिंदाबाद।
5: तो क्या सिपाही बहादुर यूं ही लूटपाट और कत्लेआम करते रहेंगे?
3: नहीं, ये तो बस हमारे मकसद का एक हिस्सा ही है। मकसद नहीं, दरअसल हमारी सरकार की बगावत बामकसद बगावत है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को हटाए तो जाए ही, बल्कि यहाँ की सरकार की बागडोर भी अवाम के हाथ ही हो। खुद हमें तो दिल्ली जाकर आजादी की लड़ाई में सबका साथ देना ही है, बल्कि दूसरों को भी इस बारे में समझाना है।
5: लेकिन हम दूसरों को कैसे समझाएंगे?
3: हमें दिल्ली चलो के नारे के साथ ऐसे पर्चे छपवाने होंगे जिसे पढ़कर अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी भाई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने को मजबूर हो जाए। जाइए और जगह जगह ऐसे पर्चे चस्पा कर दीजिए।
6: अरे पढ़ाइए, क्या लिखा है इसमें?
7: गलत क्या है, हम सब जो मन ही मन सोचते हैं वही खुलकर सामने आ गया। और क्या?
6: तो क्या मामा का हार?
7: हाँ, मैं अब अंग्रेजी फौज का साथ और नहीं दूंगा। मैं कल ही अपना इस्तीफा सौंप दूंगा और फिर आजादी के इस महासमर के लिए दिल्ली चला जाऊंगा।
6: और अगर उन्होंने इस्तीफा मंजूर ही ना किया तो?
7: तो फिर मैं तनख्वाह ही नहीं लूंगा, फिर देखता हूँ कि ये लोग क्या कर लेंगे।
8: आदाब हुजूर।
9: कौन है?
8: मैं हूँ हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
9: आओ आओ शमशेर आओ। बात हुई मामा कहार से? वो क्यों तनख्वाह नहीं लेना चाहता है, तुमने समझाया उसको?
8: हाँ हुजूर, मैंने उसे अपने तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। तनख्वाह नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा।
9: ये बगावती तेवर अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हाँ, ये मामा कहार और उसके साथी जब नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे और दाने दाने को तरसेंगे तब इन्हें समझ में आएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो।
8: हुजूर, एक खास बात और है।
9: वो क्या?
8: हुजूर, ये देखिए बाहर ये पर्चे लगे हुए हैं।
9: पर्चे?
8: हाँ, ये देखिए ना हुजूर, इसमें कुछ भड़काऊ लिखा हुआ है जिससे हमारी फौज में बगावत फैल सकती है।
9: अच्छा, ऐसा क्या लिखा है?
8: आप खुद ही देख लीजिए हुजूर, बड़ी मुश्किल से एक पर्चा लेकर आया हूँ।
9: शाबाश शाबाश, लाओ पर्चा दो।
8: ये लीजिए हुजूर।
9: अच्छा, ये बात है। मैं बेगम साहिबा को उसकी जानकारी देके आता हूँ, तुम तब तक यहीं रुको।
8: जी हुजूर।
9: आदाब बेगम साहिबा।
10: आदाब, कहो क्या खबर है?
9: बेगम साहिबा, फौज में बगावत के आसार दिख रहे हैं। फौजी तनख्वाह लेने से इनकार कर रहे हैं, और जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी और कुछ लोग नौकरी छोड़ के भी जा चुके हैं। और ये देखिए, बाहर ये इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं।

0: शमशेर, मेरी बेगम साहिबा से बात हुई और उन्होंने कहा है कि इस पोस्टर का जवाबी पोस्टर छपवा के फौज के सिपाहियों में बांटा जाए।
1: ठीक है हुजूर।
0: इस पोस्टर में लिखा होना चाहिए कि ये जो पोस्टर भोपाल फौज में वितरित किया गया है वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काने वाला है और उनको बगावत करने के लिए उकसाता है। इसलिए सभी फौजियों और जनता का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के गलत उकसावे में न आएं और दिलो जान से वर्तमान सरकार और अंग्रेजों के साथ रहें। ठीक है, समझ गए?
1: जी हुजूर।
0: जाओ जल्दी पोस्टर छपवाने की तैयारी करो।
1: ठीक है हुजूर।
0: एक बात और।
1: जी हुजूर।
0: ये जो पोस्टर हमारे फौजियों को बांटे गए हैं, इन्हें कौन लाया है, किसने छापा है, चिपकाया किसने है, इन सब का भी पता तुरंत लगाया जाए।
1: ठीक है हुजूर।
2: मामा कहार भोपाल सेवा के पहले शख्स थे जो सरकारी नौकरी छोड़ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो जैसे एक नया रास्ता खुल गया बेटा। मामा कहार की तरह फौज के कई सैनिक सिपाही बहादुर की दिखाई राह पर चल पड़े। भोपाल के साथ ही सीहोर, बेरसिया, छिपानेर और कई जगहों पर बागी खुलकर सामने आने लगे।
3: देखना, अब हमारे बेरसिया से भी अंग्रेजों को उखाड़ फेंक दिया जाएगा।
4: बिल्कुल, आजकल नगर का हर आदमी आजादी पाने को उतावला है।
5: क्या बकवास करते हो? अरे मुट्ठी भर लोग ब्रिटिश हुकूमत का बाल भी बाका नहीं कर सकते।
6: तू चुप रहे, अंग्रेजों के गुलाम, तेरे जैसे इंसान पर तो धिक्कार है धिक्कार।
5: क्या बोला तू?
3: रुक जा, तू देख लेना अंग्रेज के पिट्ठू हम तेरी हालत क्या करते हैं।
4: अंग्रेजों का पिट्ठू, अब क्या हम सरेआम अपने वतन की बात भी नहीं कर सकते? चलो साथियों, अभी देखते हैं इस अंग्रेजी पिट्ठू को।
7: अरे नहीं नहीं भाई, ठहरो ठहरो, पहले हमें शुजात भाई के पास चलना चाहिए, वही इस नामुराद की अच्छी खबर ले सकते हैं। चलो
4: हाँ चलो चलो चलो।
8: शुजात भाई।
6: अरे दरवाजा खोलिए शुजात भाई।
3: क्या बात है, आप लोग किस वक्त?
0: शुजात भाई, शुजात भाई दरअसल बात ऐसी है कि एक आदमी वहाँ चौराहे पे खड़ा होके अपने देश के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था, उसको कुछ लोगों ने मारना शुरू किया। अब देखते देखते पूरा शहर वहाँ जमा हो गया और उसको सब जख्मा है, पता नहीं
3: क्या उसकी ये मजाज। हमारे रहते बैरसिया में तो ये हो नहीं सकता।
4: आओ चल कर देखते हैं कौन है वो अंग्रेजी पिट्ठू जो हमारी मिट्टी से गद्दारी करता है।
8: चलो कौन है?
3: साथियों, हमने इस पिट्ठू को तो मौत के घाट उतार ही दिया है, तो इसके अकाओं को क्यों छोड़े? लगा दो इन फरंगियों के घरों में आग, आगे बढ़ो।
4: हाँ चलो।
9: जनाब, भोपाल से बख्शी साहब का खत आया है।
0: ओके, जाओ इधर। जनाब पॉलिटिकल एजेंट साहब, सिकंदर बेगम ने बागियों के पोस्टर को भोपाल लाने ले जाने और वितरित करने वालों के विरुद्ध जांच का आदेश दिया था। हमें काफी जांच के बाद भी ये ना मालूम हो सका कि इस पोस्टर को कौन व्यक्ति भोपाल लाया था। जांच में केवल ये जानकारी मिल पाई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति भोपाल सेना के एक दफेदार मौलवी अब्दुल कय्यूम को इस पोस्टर की प्रतियां देकर गया था और उन्होंने ये प्रतियां शिवलाल सूबेदार को दी थी शिवलाल ने इन प्रतियों को फौज में वितरित किया। इन दोनों फौजियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और इस कार्यवाही को गुप्त रखा जाए, ये बेगम साहिबा की सख्त हिदायत है। उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि ये बागियाना पोस्टर दिल्ली या कानपुर से भोपाल लाया गया है और इस पोस्टर के वितरण ने भोपाल आर्मी में बगावत फैलाने का काम किया है। और इस घटना से यह मालूम होता है कि भोपाल के बागियों का रियासत के बाहर के बागियों से

0: और नजदीकी संपर्क है और यही कारण है कि फौज में बगावत हो रही है। सिपाही तनख्वाह लेने से इनकार कर रहे हैं और नौकरियां छोड़ रहे हैं, और तो और अब शहर की जनता भी इनका साथ देने लगी है। बैरसिया में हुई घटनाएं और जो आसपास आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, वो सब इन बागियों के कारण ही हो रही हैं। इसीलिए बेगम साहिबा चाहती हैं कि बागियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा रुख अख्तियार किया जाए और बागियों से कोई हमदर्दी न दिखाई जाए। जैसे भी हो, जहां भी हो, इन बागियों का सर कुचलना हमारी भोपाल रियासत और बरतानिया हुकूमत के लिए बेहतर होगा।
1: साथियों, आज की इस घटना से अंग्रेजों और उनके हिमायतियों को यह पता चल ही गया होगा कि हिंदुस्तानियों का खून अभी सूखा नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि आप बेरसिया में अंग्रेज दोबारा ना पनप पाए। इसलिए मैं शुजात खान खुद को बैरसिया का शासक घोषित करता हूं।
2: शुजात खान जिंदाबाद, शुजात खान जिंदाबाद।
3: आदाब बजा लाता हूं बेगम साहिबा।
4: आदाब, कहो क्या खबर है?
3: गजब हो गया बेगम साहिबा, बैरसिया पर बागियों का कब्जा हो गया और भोपाल कंटिंजेंट के जो सिपाही वहां तैनात थे वो भी उन्हीं के साथ मिल गए।
4: क्या
3: जी?
4: जाओ और जाकर भोपाल आर्मी को खबर दो कि वो जल्द से जल्द बैरसिया पर हमला करे।
5: फिर क्या हुआ काका?
6: कुछ भी नहीं हुआ।
5: मतलब?
6: भाई मतलब ये कि भोपाल आर्मी के जितने भी लोग बैरसिया के बागियों पर हमला करने पहुंचे थे उनमें से 90% तो बागियों के साथ ही मिल गए।
5: क्या?
6: हाँ, और इस बात से सिकंदर बेगम और तिलमिला गई। इसके बाद उन्होंने भोपाल कंटिंजेंट के जवानों को बैरसिया पर हमला करने को कहा, पर वो तो माने नहीं। इधर वो अपने फौजियों के बागी होने से परेशान थी और उधर अंग्रेज उन पर बैरसिया को फिर से कब्जे में करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। आखिरकार परेशान होकर सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट को यह खत भेजा।
4: मैं खुद ये कोशिश कर रही हूं कि जैसे भी मुमकिन हो बैरसिया को शुजात खान के कब्जे से आजाद कराया जाए, पर यहां की सेना की जो हालत है उससे तो आप वाकिफ ही हैं। जहां तक भोपाल के आवाम की बात है तो वो आम तौर पर अंग्रेजों से बेजार है। आवाम की बेजारी अब यहां तक बढ़ गई है कि छोटे से छोटा आदमी भी अब सरकार का नाम सुनना पसंद नहीं करता है।
7: सचमुच बागियों के तेवर ने तो अंग्रेजों की नाक में दम ही कर दिया था।
6: और फिर ये तेवर तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए। अब की बार सिपाही बहादुर के मुखिया वली शाह की राह पर सीहोर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया।
3: साथियों, बहुत हो चुकी अब जातियां। यदि आपको फौज में काम करना ही है तो पूरे आत्मसम्मान के साथ। मुझे बहुत से फौजी साथियों ने बताया है कि हमारी रियासत के फौजियों की तनख्वाह इंदौर और ग्वालियर से बहुत कम है।
8: हाँ, और जो मिलता है वो भी वक्त पर नहीं।
3: शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि इसके अलावा और भी कई परेशानियां हैं और इसीलिए हम सब की बेहतरी के लिए मैंने ये 9 मांगों का पर्चा तैयार किया है जिसे हम अंग्रेजी अफसरों के पास भेजेंगे। साथियों, गौर फरमाइए कि मैंने सबकी तरफ से क्या मांगे रखी हैं। किसी भी फौजी से अंग्रेजी सरकार का हुक्म मानने का शपथ पत्र न लिया जाए। सीहोर के जो फौजी पॉलिटिकल एजेंट और दीगर अंग्रेज अफसरों को होशंगाबाद पहुंचाने के लिए भेजे गए थे उनको फौज की नौकरी से फौरन निकाल दिया जाए। जबरन निकाले गए फौजियों को नौकरी पर वापस लिया जाए। किसी भी फौजी से अकेले में कुछ ना कहा जाए और जो कहना है सबके सामने हाजिरी के वक्त कहा जाए। फौजियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। फौजियों को पूरा ड्रेस दिया जाए। आर्मी कमेटी को खत्म किया जाए। फौजियों को बासी

0: काका के पास आकर पूरी जानकारियां मिल
1: जाएगी। ये तो इतिहास के बारे में
0: पूरा पूरा ज्ञान मालूम है।
1: ये चाय लीजिए भाई जब।
2: अरे अरे अरे क्या भाई अकेले अकेले चाय। अरे काका एक चाय मुझे भी।
0: आजा आजा एक चाय और ले आना भाई।
1: कहाँ अटक गए थे भाई?
2: अरे हम वो नहीं जो खुद अटक जाए, हम तो वो हैं जो दूसरों को अटका लेते हैं।
3: हाँ तो भाई अब पूरी हुई तिकड़ी।
0: तिकड़ी कहाँ काका? चौकड़ी।
3: चौकड़ी?
1: हाँ आप जो हो।
2: हाँ तो काका पिछली बार की बात को आगे बढ़ाया जाए।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि भोपाल सीहोर और आसपास के बागी सैनिकों ने मिलकर अपनी एक सरकार बनाई थी और इस सिपाही बहादुर सरकार की अगुवाई करते थे वली शाह, लेकिन उनके साथ ही महावीर कोट हवलदार की भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
4: साथियों आज मैंने सबको एक मकसद के तहत एक साथ इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार सिर्फ नाम की सरकार ना रहे बल्कि हमारे सारे कामकाज पूरी तरह एक सरकार की तरह होने चाहिए और उसके लिए जरूरी है एक काउंसिल का बनाया जाना, वो काउंसिल जिसकी इजाजत से ही सिपाही बहादुर सरकार के सारे काम होंगे। इस काउंसिल की कमान मैं जिस शख्स को सौंपना चाहता हूं उसे आप सब न सिर्फ अच्छी तरह से जानते हैं बल्कि खूब मानते भी हैं और मेरा ख्याल है कि उनके नाम पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।
5: कौन? महावीर भाई।
4: लीजिए नाम भी सामने आ गए। आइए महावीर भाई सामने आइए। साथियों आप सबकी रजामंदी की मोहर अब भाई महावीर के नाम पर लग चुकी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस काउंसिल को महावीरी काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। हमारी सरकार से संबंधित सारे फैसले ये काउंसिल लेगी जिसमें महावीर भाई हवलदार और सीहोर कंटिजेंट के कुछ सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज के बाद हमारी खुद की दो अदालतें होंगी जिसमें से एक को मैं खुद संभालूंगा और दूसरी अदालत का काम भाई महावीर के पास होगा।
2: लेकिन ये अदालतों वाली बात कुछ समझ नहीं आई।
3: मैं बताता हूं साथियों, यदि हमें अपनी आवाम को यह एहसास कराना है कि हम मुल्क और रियासत की मौजूदा सरकार से कमतर नहीं तो हमें वो सारे कामकाज करने होंगे जो सरकारें अपनी रियाया के लिए करती हैं, और इसी के तहत हम अपनी खुद की दो अदालतें बना रहे हैं जिसमें एक में दीवानी मुकदमों की सुनवाई होगी और दूसरी में फौजदारी मुकदमों की।
4: और हमारी इन अदालतों में जीत सिर्फ इंसाफ की होगी।
0: वाह काका, मतलब नाम की सरकार नहीं बल्कि काम की भी थी सिपाही बहादुर सरकार।
3: हाँ बेटा, उन्होंने अपनी अदालतें तो बनाई ही, साथ ही सीहोर में अपना खुद का थाना भी स्थापित किया।
1: लेकिन काका, इस सरकार को रोकने के लिए अंग्रेजों और सियासत ने कोई कदम नहीं उठाए?
3: कोशिश तो खूब की गई बेटा, साम दाम दंड भेद हर तरह से उनको मिटाने की कोशिशें की गई।
6: अगर इस सरकार का गला हमने अभी नहीं घोटा तो फिर आगे चलकर ये हमारे ही गले का फंदा बन सकती है।
3: लेकिन हम उन्हें रोके भी तो कैसे, दिन ब दिन उनके साथ जुड़ने वाले बागियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
6: उनके साथ ठीक वैसा ही करो जैसा हम अपनी सियासत में घुसने वाले दुश्मनों के साथ करते हैं।
3: मतलब?
6: मतलब हमला, अपने वफादार सिपाहियों का एक जत्था लेकर जाइए और सीधा हमला बोलिए उन पर।
3: जी बहुत अच्छा बेगम साहिबा।
2: साथियों मैंने आप सबको बेगम साहिबा के हुक्म के मुताबिक बुलाया है। हमें हुक्म मिला है बागियों को कुचलने का, उन्हें नेस्तनाबूद करने का। सीहोर में एक भी बागी नहीं बचना चाहिए। जगह जगह लगे उनके झंडे, उनका एक एक निशान सब मिटा दो।
7: यलगार हो, यलगार हो। Thank you.

0: सुनो, यदि तुम लोग सिपाही बहादुर की सरकार छोड़ के हमारे साथ काम करो, बहुत ही अच्छी तनख्वाह मिलेंगी और तुम लोगों को रुपए पैसे से माला माल कर दिया जाएगा। अरे इतना पैसा देंगे तुम लोगों ने जिंदगी में देखा नहीं होगा कभी। ठीक है,
1: मानने वाले नहीं हो, सब
0: ठीक है, रहो अपनी हालतों पे।
1: पक्षी साहब हमें माफ करो।
0: आदाब बेगम साहिबा।
2: आइए बख्शी साहब, बताइए क्या खबर लाए हैं।
0: गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, उन लोगों पर किसी लालच किसी धमकी का कोई असर होता नहीं दिख रहा।
3: जी आदाब।
2: कहो क्या बात है।
3: जी दिल्ली और झांसी से ये खत आए हैं।
0: लाओ
3: लीजिए।
0: ठीक है, तुम जा सकते हो।
2: किसके हैं?
0: शाही मुहर के साथ दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर का खत है और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का।
2: पढ़िए।
0: जी बहुत अच्छा। जी झांसी की रानी लिखती हैं कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए राष्ट्रवादी सिपाही जो जंग लड़ रहे हैं उस कार्य में रियासत भोपाल की ओर से अंग्रेज सरकार की मदद न की जाए।
2: आप हमारी तरफ से लिख दीजिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है।
0: जी बहुत अच्छा।

0: जियारा ये खत आया है।
1: लव, ठीक है तुम जा सकते हो।
0: जी बहुत अच्छा।
1: जी, झांसी की रानी का जवाब आया है।
2: कहिए क्या लिखती है।
1: जी जी वो
2: बख्शी साहब पढ़िए।
1: जी वो लिखा है कि मैं शीघ्र ही अपनी वर्तमान मुहिम को पूरा करके भोपाल आऊंगी और अपनी तलवार की नोक पर आपको अंग्रेजों की मदद करने से रोक दूंगी।
2: आप भी लिख दीजिए कि रियासत भोपाल को फक्र है कि वो हमेशा से अंग्रेजी सरकार की वफादार रही है और आगे भी रहेगी। अगर आप भोपाल आना चाहते हैं तो जब दिल चाहे तब आइए। मेरा आतिशी तोपखाना आपका मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है।
3: लेकिन काका, बेगम साहिबा ऐसा क्यों कर रही थी?
4: भाई वो अपना फर्ज निभा रही थी, वो फर्ज जो उनकी शाही रवायत का एक अहम हिस्सा बन चुका था। और इधर सिपाही बहादुर अपना फर्ज निभा रहे थे। रियासत और अंग्रेजों के तमाम विरोध के बावजूद न सिर्फ वो देशभक्ति की राह पर चलते रहे बल्कि अब उनकी गतिविधियां और भी बढ़ गईं।
5: साथियों, हमें अगर अपनी जमीन से गोरों को हटाना है तो हमारी तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए। हमें उनकी एक एक हरकत पर नजर रखनी होगी और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि हम अपनी रियासत के चारों ओर अपने चार केंद्र बनाएंगे।
6: लेकिन ये केंद्र कहां पर होंगे?
5: बैरसिया, सीहोर, गढ़िया अंबापानी और छिपानेर। बैरसिया केंद्र का काम शुजात खां, कामदार खां और सरफराज खान देखेंगे।
7: जी बहुत अच्छा, बहुत
5: अच्छा। सीहोर केंद्र की बागडोर भाई महावीर, आरिफ शाह और खुद मेरे हाथ में होगी। गढ़िया अंबापानी का काम फाजिल मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां देखेंगे और छिपानेर का काम ठाकुर दौलत सिंह संभालेंगे। साथियों, हम सब अपने अपने केंद्रों से अंग्रेजों और सियासती कार्रवाई पर नजर तो रखेंगे ही और साथ ही हमें इलाके से ज्यादा लोगों को सिपाही बहादुर सरकार के बारे में बताना है। हमें लोगों को

0: भी समझाना है कि गोरों के बिना भी देश को चलाया जा सकता है और वो भी खुद अपनी ही सरकार के जरिए।
1: हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी होगी ताकि हम किसी भी तरह से दुश्मन के आगे कमजोर न पड़े।
0: और अब एक बहुत जरूरी बात साथियों, मेरा ख्याल है कि अगर अंग्रेजों को अपनी सरजमीन से हटाना है तो उसके पहले सियासत को अपने कब्जे में लेना होगा। सुनिए, हम एक किला फतेहगढ़ पर अचानक हमला बोलकर उमर अब्दुल्ला और सिकंदर बेगम को गिरफ्तार करना है और फिर सियासत हमारी होगी।
2: लेकिन हमें किसी को तो गद्दी नशीन करना होगा ना?
0: हाँ बिल्कुल, हम सियासत की बागडोर दस्तगीर मोहम्मद खान को सौंपेंगे और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ जहाद की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके बारे में आपको आगे महावीर भाई बताएंगे।
1: साथियों, अंग्रेजों के खिलाफ हमारा ये हमला एक बड़ी कामयाबी में तब्दील हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले होशंगाबाद पर हमला बोलें ताकि वहां ठहरे ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों को कत्ल किया जा सके। होशंगाबाद पर हमले के लिए हमारे सीहोर के सिपाही बहादुर पीरगेट के रास्ते से शहर भोपाल में दाखिल होंगे। हमारे भोपाल आर्मी के कुछ जवान मदद के लिए वहां पहले से रहेंगे। सीहोर फौज जैसे ही पीरगेट पहुंचेगी उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा और इस खास काम की जिम्मेदारी रजपाल सिंह और सीताराम को दी जाती है।
3: जी, आपका हुक्म सर आंखों पर।
4: खुशकिस्मती हमारी, पूरी कोशिश होगी कि हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं।
3: हुजूर, सिपाही बहादुर के खास आदमी को गिरफ्तार किया है।
2: अच्छा, उसने कुछ बताया?
3: उसने बताया है कि सीहोर की फौजें पीर गेट से घुसेगी।
2: अच्छा ठीक है। आदाब बेगम साहिबा।
5: आदाब बख्शी साहब, कहिए।
2: बागी रजपाल सिंह का खास आदमी मुस्तफा का गिरफ्तार हुआ है। ऐसा अंदेशा होता है कि बागी रियासत पर हमला बोल सकते हैं।
5: अच्छा, तो इनकी नजरें अब हमारे किले तक भी पहुंच गई। आप एक काम कीजिए बख्शी साहब, पीर गेट और इमाम गेट के पहरेदारों की जगह निगरानी के लिए हमारे खास लोगों को लगाइए।
2: जी, अब मुईज मोहम्मद खां और फौजदार मोहम्मद खां कैसे रहेंगे?
5: बहुत खूब। इसके अलावा नवाब उमर अब्दुल्ला और बाकी मोहम्मद को बगावतियों के खिलाफ काम करने की पूरी छूट दे दी जाए।
2: जी बहुत अच्छा।
5: जासूसी चुस्त दुरुस्त की जाए, आर्मी को चौकस किया जाए, गेट पास के हिसाब किताब को और सख्त बनाया जाए और शहर के जिस भी आदमी पर शक हो उसे शहर बदर कर दिया जाए।
2: जी जैसी आपकी मर्जी।
4: तो क्या बेगम की ये रणनीतियाँ सिपाही बहादुर सरकार को रोक पाई?
6: अरे उन्हें कहाँ रुकना था बेटा, उनको कोई रोक सकता था तो केवल मौत। अपने नाम के मुताबिक सिपाही बहादुर लोहा लेते रहे, हर बार हमलों में कई लोगों की जान जाती, पर उनको कहां रुकना था।
7: बख्शी मुरव्वत मोहम्मद खान साहब।
3: जी जनाब।
7: आपको एक खास काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। इस गढ़ी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, और फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने भी। हम चाहते हैं कि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए या फिर रास्ते से हटा दिया जाए।
3: हुजूर, ये काम इतना आसान नहीं होगा।
7: हम जानते हैं, और इसीलिए हमने साबिर मोहम्मद खान को रायसेन जाके फौजी ताकत जमा करने के लिए हिदायतें दी हुई हैं।
3: ठीक है हुजूर, जब आपने इतनी तैयारियां कर रखी है तो गढ़ी के लिए भी कोई ना कोई योजना बना रखी होगी। आप तो ये बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है।
7: एक काम कीजिए, गढ़ी को तीनों तरफ से घेर के नाकेबंदी की जाए। पहला मोर्चा गैरतगंज के पास, दूसरा मोर्चा सीवांश के पास, और तीसरा मोर्चा गढ़ी के पास मोजा

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नजर से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स थे, हमारे ऐसे स्ट्रांग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत जरूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदला, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो जिंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था, और अगर अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए, मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट। एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकम्फर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है, ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई, काम नहीं किया तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम। आई नीड टू एक्सपेरिमेंट। ये टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है, वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते ही वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है, हमने कभी आपने कहा

0: टेंशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं। एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है।
1: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें,
0: हाँ, उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया। अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है। ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी। अगर वो छोटी चीज में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे वो नहीं है, लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं। नॉट यू नो, जैसे अगर घर में सारे ही टेंशन में है तो आई इमिडिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को। वो फिर उनको खुद को ही पता है,
1: अंदर अंदर
0: वो उनको खुद पता है। और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते, लेकिन कई बार उसके बाद वो
1: ब्रेकडाउन
0: हो जाते हैं एंड यू नो एवरीथिंग। तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर
1: तो ब्रेकडाउन जो है वो तो और खराब हो जाता है,
0: तब वो फिर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा। कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
1: हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ,
0: सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकम्फर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकम्फर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है। अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है, हम ये नहीं रियलाइज करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई। तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना जरूरी है। अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं। जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति। कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंदर है डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहां बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज्यादा असर करता है। अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर ये उनके लिए बहुत कॉमन होता। एंगर है तो तो कैंसर यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति तो वो क्रिएट हो जाता है. बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है. सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना
1: चाहिए. इफ यू आर अंडर स्ट्रेस टेक अ ब्रेक, यू नो इट विल एक्चुअली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से जिंदगी को मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं. डज इट रियली हेल्प?
0: टेम्पररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्जाम्स हैं तो आप बहुत ज्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे तो आपको लगता है एग्जाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज्यादा तनाव है चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते. लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन. इट इज अ टेम्पररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं. वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं. जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती. लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं. अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है. तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में एक मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा. क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है. इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है. हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस. सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है. और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहां अभी आई एम नॉट यू नो हैप्पी, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड लास्ट. क्योंकि अगर आप हर रोज को एंजॉय कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो ब्रेक लेकर क्या करेंगे, यही सब कितना, यू नो यू एंजॉय योर वर्क. आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप राइट थॉट से उसको कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग ईच डे, यू डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर दैट देन एनीथिंग.
1: वेरी ट्रू. समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वहीं रहा, वो फैक्टर्स वहीं रहे.
0: और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव. क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे. टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस,
1: सोसाइटी,
0: टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
1: मदर इन लॉ, यू नो, सच अ मेजर फैक्टर.
0: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस. टेंशन का कारण है मेरा बॉस,
1: सोसाइटी,
0: टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
1: मदर इन लॉ, यू नो, सच अ मेजर फैक्टर.
0: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला. फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा. दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माई टेंशन एज नेचुरल.
1: यू नो कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा यू नो अमेजिंग यस दिस इज व्हाट वी एक्चुअली
0: तब हमने कहा कि तब इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको तो कहें समय ऐसा चल रहा है समाज ही ऐसा है क्यों क्योंकि मेरे टेंशन का कारण कौन है वो समाज है समाज

0: everyone around.
1: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होते. कोई ऐसी चीज है यू नो, कोई ऐसी जगह है जहां से टेंशन ना हो. सो मेनी टाइम्स पीपल से
0: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है. इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन. नो वन एंड नथिंग. नो वन एंड जब हम कहते हैं नो वन मीन्स नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस. दीज आर सिचुएशन, दीज आर पीपल जो बाहर से आते. स्ट्रेस इज माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन. हाँ परिस्थिति चैलेंजिंग है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ. हाँ परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग है. हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन माई फैमिली. अब इससे ज्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहाँ है. उस परिस्थिति के रिस्पॉन्स में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ है, ये मेरे हाथ में है. एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट. लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल.
1: अमेजिंग. यस यू नो.
0: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना ये मेरे हाथ में है. वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहां क्रिएट होता, यहां कोई घुस नहीं सकता. स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाले थॉट्स. परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है. तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है. और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगा. और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को, वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा. मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो गया या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे. वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन, ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑफ पेन. सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है. I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. सब कुछ ठीक भी होगा ना. कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे सब ठीक चल रहा है बाहर, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है.
1: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ और.
0: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
1: ये क्या हो गया है,
0: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है.
1: गड़बड़ होगा ही होगा.
0: सो देयर यू गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पॉन्स टू सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद. एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम. जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग. नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है. लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते, माय एनर्जी फ्लोज आउट, आई डिस एम्पावर माई सेल्फ, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल. टोटली एनर्जी हैज फ्लोन अप. जैसे ही आई डू दिस, माई एनर्जी का सर्किट इज कम्प्लीट. इट्स हियर, आई हैव द पावर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, दैट्स ऑल. वो ऐसे हैं, वो कैसे भी है, परिस्थिति इतनी खराब है कैसी भी है, फिर भी थॉट कौन सी क्रिएट करना. अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी.
1: मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है.
0: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट. अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे. क्या कर उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं.
1: लेकिन वो कैसे मैं,
0: वॉट कैन यू डू, यू ओनली हैव टू सिट देयर.
1: कांट डू एनीथिंग, बट देन इट्स सो नेचुरल.
0: नथिंग. यू इवन देन यू विल ओनली हैव टू टेल योर सेल्फ, होप आई रीच देयर ऑन टाइम, इफ नॉट देन आई विल हैव टू सी नाउ वॉट नेक्स्ट एंड कीप साइलेंट, दैट्स ऑल. इसके ऊपर तो एक भी सेकेंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो, ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर. यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट

0: बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: मैं खुश

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या

0: शरीर नहीं हो तो चोट किसको लगे? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल। और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
0: एब्सोल्युटली। और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है? और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
1: पेन में हूँ,
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी। तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड, विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीजें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीजें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस। जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहां वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? यू नो, इवन नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रियली यू नो विक्टिम्स ऑन सम बिग,
1: छोटे छोटे, आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, एट टाइम्स वी स्टार्ट शेयरिंग एक्चुअली इतना ज्यादा।
0: आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? एंड वो एक रिकॉर्ड की तरह प्ले होता जाता है कि जहां जहां बैठे लोगों के साथ अपना, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड। तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करते हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ तो वो कितनी बार हो जाता है, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, आई हैव टू मूव ऑन। वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
1: हैं। बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल। अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज, इट इज, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट, और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते, और वो उस विक्टिमाइज, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर, अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है, वो

0: वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन। जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट। क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं। अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है,
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है। तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं, तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए। लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन। और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स दी ओनली टॉपिक।
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो रहा है। नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड।
0: एब्सोल्युटली। तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा। तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार। और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल। क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो। तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप।
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
0: right, but we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin bar bar keh kar ke hai aapke sath aisa hua bichare aap ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we are saying ki abhi sab galat hai, you know. To jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में। और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट। आफ्टर ऑल आई हैव टू फिनिश इट हियर, मुझे बाहर नहीं फिनिश करना। लेकिन बाहर ही अगर वो बार बार रिवाइज होता जाएगा तो अंदर तो कितना रिवाइज, बिकॉज फॉरगिव के साथ फॉरगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड के इट्स अ पार्ट एंड ऑफ लाइफ एंड इट इज ओवर। एंड इसमें हमें जो बहुत हेल्प करती है बात, वो है ये याद रखना कि इस ड्रामा में, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें हर सीन जो है वो कल्याणकारी है। एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस ड्रामा इज एक्यूरेट, इट इज परफेक्ट एंड इट इज बेनिफिशियल। ये ड्रामा बना ही इतना परफेक्ट तरीके से है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं हो रहा, इवन दो हमें लगता है
1: कि गलत
0: हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इम्परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है उसके पीछे रीजन,
1: इट हैज सम रीजन, यस,
0: इट हैज अ रीजन। और अगर हम उस सीन को जो हमारे सामने आया है उस पर्सपेक्टिव से देखें कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट जो होकर जाता है, अगर हम उसमें से ठीक से निकल सकते हैं तो वो हमें स्ट्रोंगर बनाकर जाता है। तो वो मुझे कुछ सिखाने आया है, वो मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर हिलाने आया है, वो मुझे एक नई दिशा पर लेकर जाने आया है। लेकिन मेरे लिए अकल्याण कुछ नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वही एनर्जी सारी हमारी तरफ फ्लो होगी। तो ऑलवेज हैव द थॉट कि मेरे लिए जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, और अकल्याण सिचुएशन अगर होगी भी तो उसमें से भी कोई ना कोई कल्याण जरूर निकल कर आएगा, प्रोवाइडेड आई हैव द फर्म बिलीफ कि ये सिचुएशन मेरे लिए कल्याणकारी है। एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अंदर जो हमने पकड़ कर रखा है, आई हैव टू लेट इट गो, ये जो बैगेज, यू नो, हम लोग सब एक बहुत

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती गांव में हेडगेवार परिवार रहता था। उसी परिवार के कुछ लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आ गए। नागपुर में ही बलिराम हेडगेवार और उनकी पत्नी रेवती सुशीला के यहां 1 अप्रैल 1889 को गुड़ी पड़वा के दिन केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वजारोहण करना। इसी दिन सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और द्वारों पर तोरण आदि बांधकर उल्लास प्रदर्शित करते हैं। हजारों साल पहले इसी दिन लंका पर विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा शालिवाहन ने मिट्टी के घुड़सवारों में प्राण फूंककर उनके द्वारा आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। बचपन में माता रेवती बाई केशव को शिवाजी की देशभक्तिपूर्ण कथाएं सुनाती थी। इन कहानियों का केशव के मन पर गहरा असर पड़ा। सन 1902 में भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था, उससे नागपुर के लोग भी नहीं बच पाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोई अपने रिश्तेदारों के यहां उनका हाल पूछने नहीं जाता था, लेकिन केशव के माता पिता लोगों के घर घर जाकर उनका हाल पूछते। हालांकि उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केशव नागपुर में जिस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कक्षा में उनके आते ही केशव के कहने पर सभी छात्र एक साथ गाने लगे।

निरीक्षण का कार्य ठप हो गया। अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए, लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी मां को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं, ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांगकर लाते थे, रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था।

कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया, उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है, मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा, हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े, इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे पेश किया सुधा अनुपम ने।

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: शिवाजी की तलवार है, लावली बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: ओम शांति, थैंक यू सो मच।
1: आपसे मेरी बात हो रही थी अबाउट दैट आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था,
2: ऑल इन द माइंड।
1: हाँ, तो उसका थोड़ा कुछ रह गया है आगे का एक स्टेप, वो पढ़ना चाहूंगा। थॉट इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कलर और साउंड। It is the start of any form of energy. Thought can transfer without any boundaries of time, space or distance. As we all know, when light travels through space, by the time it reaches us, it takes a long period of time and it also diminishes. Is the same with sound, but thought has no

0: such limiting factor. Sitting here, I can transfer a thought across the globe.
1: हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं ना कि वो तो हमारे सामने थोड़ी है अभी, वो तो बहुत दूर है, क्या उनके बारे में भी सोची हुई बात उन पर असर करेगी? वो दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, अभी वो अपने ऑफिस में है, हम घर पे हैं, क्या अभी भी असर करेगी उनके ऊपर जो हम सोच रहे हैं? द साइंस इज नाउ गिविंग अस द आंसर.
0: बट साइंस इज सेड वन स्टेप अहेड ऑल्सो, जो कि हमारे पहले से शास्त्र में भी लिखा था. इस लाइन में तो उसने बोल दिया अक्रॉस द ग्लोब कि जिसके बारे में नहीं सोचूं मैं, वैसे भी मैं बैठकर एक गंदी सी थॉट समझो, बहुत ही एक क्रूअल थॉट, एंग्री थॉट, वायलेंट थॉट्स भेजूं, तो वो जो वीकर माइंड्स हैं वो कैच कर ही लेते हैं. अननोन वीकर माइंड्स,
1: बिकॉज हमारी थॉट्स वाइब्रेशन है यूनिवर्स में.
0: जी,
1: इट्स लाइक हम ही एनर्जी क्रिएट करते हैं और हमें ही उसके अंदर जीना है और वो सब उसके प्रभाव में आने वाले हैं. तो माय एवरी थॉट, दैट्स व्हाई नॉट ओनली जस्ट अफेक्ट्स मी, इट अफेक्ट्स द पर्सन फॉर हुम इट वाज क्रिएटेड एंड इट अफेक्ट्स द यूनिवर्स. इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं ना, हर संकल्प का थॉट स्व पे, सामने वाली आत्मा पर, मतलब जिसके लिए सोचा है, और प्रकृति पर, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा. तो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड?
0: मैं अगर सिर्फ छोटे से घर की बात करूं, मैं अपनी समझो बहू के बारे में अगर सोचूं, तो बहू के साथ साथ वो बेटे के पास भी जाएगी, उसके पति के पास भी जाएगी, मेरी वाइफ के पास. एटमॉस्फेयर कितना पूरे घर का वातावरण खराब होता है.
1: पूरे घर का वातावरण तो एटमॉस्फेयर खराब होता
0: है. एक एग्जांपल दो, वैसे अगर उसको एक्सपैंड करते जाओ तो वहां से पूरा ग्लोबल, मतलब वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड.
1: वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. इसीलिए परमात्मा कहते हैं आपका हर थॉट सृष्टि को या तो सतो प्रधान बना सकता है या तमो प्रधान बना सकता है.
0: लास्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे मुरली में, तो आपने कहा था कि आप बच्चे जो है जगत परिवर्तन करने
1: विश्व
0: वाले,
1: विश्व कल्याणकारी आत्माएं.
0: ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड द मीनिंग. देखो किस चीज का मीनिंग कब समझ में आता है.
1: विश्व कल्याणकारी आत्मा इसलिए नहीं कि आप विश्व को चेंज कर देंगे. वी कांट चेंज द वर्ल्ड, लेकिन व्हेन वी चेंज देन वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड.
0: इट्स ऑलमोस्ट लाइक चेंजिंग आल्सो, हेल्पिंग द चेंज.
1: यस, एब्सोल्युटली. आज आप देखो, अगर ओवरऑल सब लोग चाहते हैं कि एक यू नो वर्ल्ड ऐसा हो जहां पीस है, हार्मनी है, लव है, क्या ये युद्ध चल रहा है, क्यों झगड़े चल रहे हैं, क्यों गलत हो रहा है, एवरीवन वांट्स दैट. इंटेंशन बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वो चाहने से नहीं होगा ना, सिर्फ उसके लिए कुछ करना पड़ेगा.
0: तो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से हम लोग करें.
1: अपनी कैपेसिटी मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी थॉट क्रिएट करने की है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थॉट क्रिएट करना. आपकी कैपेसिटी कितनी पावरफुल थॉट क्रिएट करने की है, अपनी कैपेसिटी से थॉट क्रिएट करना. आर थॉट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मेक द वर्ल्ड वॉट द वर्ल्ड इज टूडे. आज हम सब जिम्मेवार हैं इस विश्व की हालत के लिए.
0: तो शायद इसीलिए लोग जब कहते होंगे ना कि जो ऋषि मुनि वगैरह सब जो मेडिटेशन में बैठकर पूरी धरती के ऊपर प्यार पीस भेज रहे हैं,
1: तपस्या का वाइब्रेशन,
0: तो मैं सब हंसता था उनके ऊपर.
1: परमात्मा
0: बैठ के इस ओर बैठ के हमको भेज रहे.
1: परमात्मा हमेशा कहते हैं कि द्वापर युग से जितने भी संत महात्माएं ऋषि मुनि सब जिन्होंने तपस्या की, तो परमात्मा हमेशा कहते उनकी तपस्या ने, उनकी पवित्रता की शक्ति ने इस सृष्टि को थमा के तो रखा. कि एक तरफ नेगेटिव एनर्जीज भी तो कितनी बढ़ी ना द्वापर युग से, वायलेंस, टेरर, हेट्रेड, ये सब बढ़ा, लेकिन परमात्मा कहते इनकी पवित्रता की शक्ति, इनकी तपस्या की शक्ति ने सृष्टि को थमा कर रखा.
0: जैसे कहते हैं ना घर में, इस औरत ने, इस बहू आकर पूरे घर को इसने अकेले ने संभाल लिया.
1: yes.
0: जैसे किसी घर में कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ना भक्ति है, ना कुछ है, चल रही है लाइफ, तो कोई एक बहू आ जाती है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती
1: तो
0: है.
1: एक जना आता है ना, एक जना पूरे घर के वातावरण को चेंज करता है. Either ways, हम या तो उसको सतो प्रधान बना सकते या हम उसको तमो प्रधान बना सकते हैं। आज हम अपनी दुनिया को भी या तो स्वर्ग बना सकते हैं या हम नर्क बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम यहाँ क्या बना रहे हैं। जैसी हमारी यहाँ संकल्प वैसी सृष्टि, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि संकल्प से सृष्टि रची। इस लाइन में कितनी पावर है, संकल्प से सृष्टि रची। जब हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची, इट डजंट ओनली मीन कि एक संकल्प आया तो सृष्टि बन गई, यू नो, बिकॉज हम उस लाइन को ऐसे लेते हैं, संकल्प से सृष्टि रची, कि एक थॉट क्रिएट किया, दुनिया बनाते हैं और दुनिया बन गई। संकल्प से सृष्टि रची मतलब जैसा आपका संकल्प वैसी आपकी सृष्टि, संकल्प से सृष्टि रची। तो
0: जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
1: क्योंकि जैसा संकल्प वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
0: ओके,
1: सिंपल। जैसा थॉट वैसा एटीट्यूड, वृत्ति जैसा एटीट्यूड वैसा नजरिया, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये सिर्फ एक नहीं है ना, क्योंकि शास्त्रों में क्या कहते हैं, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। परमात्मा कहते हैं आपके सबके संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा मीन्स रचयिता, क्रिएटर। हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है, हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है। जैसा संकल्प हम क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे। अब क्योंकि एक बहुत बहुत बहुत बड़ा, इनफैक्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अहंकार वश संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्योंकि हम में से मेजोरिटी के थॉट्स वैसे हैं, आज हमारी सृष्टि वैसी है, जिसको हम कहते हैं कलयुग है। हम इसको कहते हैं कलयुग है। अगर हमें सतयुग चाहिए, हमें वो न्यू ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है, तो वो वर्ल्ड अपने आप नहीं आएगा। एवरीबडी सेज यू वांट अ न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड मींस अ बेटर वर्ल्ड। वी डूइंग सेमिनार्स, वी डूइंग प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, सोशल वर्क, क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। हमें एक नई दुनिया लानी है, हम सबको लानी है।
0: लोग समझते हैं न्यू वर्ल्ड मीन्स कि पूरा खत्म हो जाएगा, आग लग जाएगी, मर जाएंगे, फिर नई दुनिया। इट्स लाइक ए न्यू ईयर और चेंजिंग ओवर अ न्यू लीफ।
1: वेरी ट्रू। और विच मीन्स कि आज जैसा हम सोच रहे हैं उसका रिजल्ट ये सृष्टि ऐसी है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि एक डिफरेंट सृष्टि हमें चाहिए, एक बेटर वर्ल्ड हमें चाहिए, फिर हम अपने आप से पूछें बेटर वर्ल्ड में हमें क्या चाहिए। What am I talking about when I am saying better world, क्या चाहिए better world में?
0: सारी दुनिया तो शांति मांग रही है ना,
1: शांति मांग रही
0: है, मांग रही
1: है। आज छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं, वी नॉट ए बेटर वर्ल्ड, बड़ा प्यारा सा एक ग्लोब बनाएंगे, उसमें सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं। वी वॉन्ट अ बेटर वर्ल्ड।
0: नो बडी वॉन्ट स्ट्रेस,
1: ठीक है। बेसिकली जब हम कहते हैं बेटर वर्ल्ड, तो हम कहते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट, यूनिटी हो, हार्मनी हो। छोटे छोटे बच्चे भी ये डायग्राम बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। अब सिर्फ उसको एक लाइन और नीचे लेके जाना है, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय माई थॉट्स। ये सृष्टि मेरे संकल्पों से बनती है, तो जैसी सृष्टि चाहिए वैसे संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देते हैं।
0: अब समझ में आया मुझे, वेरी गुड। मैं इतने दिन से सोच रहा था, मैंने किताब में पढ़ा था कि लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन
1: ऑफ योर थॉट्स,
0: तो मुझे आज एकदम क्लियर हो गया।
1: एंड नॉट ओनली द लाइफ, योर लाइफ,
0: आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ।
1: हमारी लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर थॉट्स, वो तो हम देख ही रहे हैं इतने दिन से, वो तो प्रैक्टिकल दिखता है। दिस वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर थॉट्स, सृष्टि की क्वालिटी। क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट बैक, अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठे और शिकायत करते रहे दुनिया के बारे में। दुनिया ऐसी है जी, दुनिया ऐसी है जी, वो लोग वैसे हैं, वो ऐसे हैं, यहाँ टेरर हो रहा है, यहाँ वायलेंस है, वो युद्ध कर रहा है। दिखने में कुछ लोग करते हुए दिखेंगे वो, कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि पर तमो प्रधानता अति को पहुंच चुकी है, एक्सट्रीम पर पहुंच गई है। आज प्रकृति भी, प्रकृति में भी वो सत्व प्रधानता नहीं रही जो पहले थी।
0: एक्चुअली
1: है ना,
0: हमारी वजह से,
1: हमारी
0: थॉट्स की वजह से,
1: हमारी थॉट्स की वजह से। तो अब प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है, इस दुनिया को भी सत्व प्रधान बनाना है, तो इट्स वेरी इजी टू से टेररिज्म खत्म

0: करो, हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो। यस, हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो, उसके लिए काम भी करें, लेकिन उससे भी सूक्ष्म एक काम जो हम सब करें, अपने मन का टेररिज्म पहले खत्म करें। जब तक हम मन के अंदर का टेरर खत्म नहीं करेंगे, बाहर कोई किसी और पे हमला करता है, हम यहाँ सारा दिन अपने पे अटैक करते हैं। जब अगर हम सब अपने अंदर के टेरर को खत्म करें, इस दुनिया से टेरर खत्म हो जाएगा।
1: मैं थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर पर पढ़ा था ऑन पोल्यूशन, सीधा मेरा थॉट गया यहाँ के पोल्यूशन को पहले निकालो।
0: सिंपल,
1: तो यहाँ के पोल्यूशन को निकालोगे तो दुनिया में पोल्यूट कौन करेगा।
0: सिंपल, आज अभी प्रोजेक्ट बनाया है कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है। इंटेंशन कितनी ब्यूटीफुल है, इंटेंशन बहुत ब्यूटीफुल है। वी वॉन्ट अ ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री, यस, लेकिन ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री के लिए अब हम क्या करेंगे? हम सड़क साफ करेंगे, हम मोहल्ले को साफ करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कि वो हमें करना है। लेकिन ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री तब बनेगा जब यहाँ गिरे हुए एक एक कचरे को उठाएंगे। आज देखो कितनी अवेयरनेस है, लोग अटेंशन रख रहे हैं। देखो जैसे ही एक इंटेंशन में आया, हम अटेंशन रखना शुरू कर देते हैं। सो मेनी टाइम्स नाउ डेज आई मीट पीपल एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो सी कि पहले अगर कुछ इजीली फेंक भी देते थे, गाड़ी में खाया, किसी ने कुछ फेंक दिया, ऐसे ऐसे खाया रख दिया, अभी एकदम से अटेंशन रहता है। नहीं, स्वच्छ भारत अभियान, दिस इज माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट।
1: गोल्फ कोर्स से वापस आ रहा था तो कुछ जेब में पिस्ते पड़े थे, पिस्ताशूज, तो मैं छिलके निकाल निकाल के खा रहा था। पहले खिड़की मैंने खोल के ऐसे किया, फिर रोक के उसी थैली में डाल दिया। मैंने बोला बाद में खत्म तो होने वाला ही है,
0: क्योंकि आज हमें अवेयरनेस है कि हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना हमारे देश में, हम सब उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। कुछ लोग चाहे वो राजनेता है चाहे वो धर्म नेता है, कुछ लोग देश को नहीं बदल सकते, कुछ लोग इस समाज को इस दुनिया को नहीं बदल सकते। इट विल ओनली हैपन व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर, इट विल ओनली हैपन। 1000 पीपल कैन नॉट चेंज अ कंट्री ऑफ 100 करोड़ पीपल, इट विल हैव टू बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ 100 करोड़ पीपल। 1000 लोग क्या कर सकते हैं, उन 100 करोड़ लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि चलिए लेट्स गेट टुगेदर एंड डू दिस। लेकिन हम सोचें वो लोग देश को बदल दें, ये लोग देश को बदल दें, ये होने वाला,
1: हम सब मिलके करेंगे।
0: एंड दैट इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर नाउ, विच इज द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। क्या हम सब मिलकर इस कार्य में सहयोग देने के लिए रेडी हैं? विच विल स्टार्ट विद यहाँ। अगर हम सारा दिन याद रखें, मेरे संकल्पों से दुनिया बनती है, मेरे संकल्पों का प्रभाव इस पूरे विश्व पर पड़ रहा है, और जैसे आपने कहा इस विश्व पर तो पड़ ही रहा है। जैसे आपने कहा ना, फेंकने वाले थे फिर नहीं फेंका क्योंकि ध्यान था, वैसे ये भी ध्यान रहेगा ना तो बहुत सारी थॉट्स क्रिएट करने से रुक जाएंगे कि नहीं, व्हाट एम आई डूइंग।
1: बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला,
0: बस
1: खाने वाला था ये गलत चीज नहीं खाई,
0: अब एक स्टेप और पीछे जाएंगे, सोच रहा था रोक दिया, सोच चल रही थी रियलाइज हुआ याद आया बंद कर दिया, एक स्टेप ही तो पीछे जाना है सिर्फ।
1: पहले सोच के बीच में आ जाता थॉट, अब सोच से थोड़ा पहले भी आ जाता है, कि ये सोच वो पुल करता है थोड़ा, छोड़ो हटा
0: बस, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता था कि ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है।
1: मैंने दादियों को बोलते हुए सुना, एक दिन टीवी खोला था, बोले कभी नहीं बोलना ये बुरा है, दादी जानकी ने ये कहा था ये बुरा है कभी नहीं बोले, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उनके स्टाइल में जो बोले ठीक हो जाएगा। तो वो मेरी समझ में नहीं आया था इतना कि मैं बोलूंगा सबको ठीक हो जाएगा, बोले तो हो कैसे हो जाएगा, लेकिन एक कितनी अच्छी दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।
0: एंड दादिया भी कहती है
1: इतना बुरा है तो कितनी बड़ी, मतलब श्राप बदुआ,
0: आशीर्वाद का ऑपोजिट हो गया ना, मतलब हमारी हर थॉट किसी के लिए एक आशीर्वाद बन सकती है, और यही हमारी रॉन्ग क्वालिटी ऑफ थॉट किसी के लिए एक आशीर्वाद का ऑपोजिट भी तो बन सकती है ना। ये बुरा है, ये है ही ऐसा, ये तो पहले से ही ऐसा है, ये नहीं बदल सकता, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको कितना भी समझाओ ये समझता ही नहीं है, इसका तो संस्कार ही ऐसा है,

0: पावर।
1: दादी जानकी की छोटी सी लाइन कि किसी को मतलब बुरा बोलना ही नहीं, बोलना हमेशा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
0: और ये एक एक लाइन उनके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी, ये जो हम
1: उनके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी और मेरा मन शांत हो जाएगा
0: तो अपने लिए भी ब्लेसिंग बन जाएगी।
1: वहाँ स्टॉप हो गया ना मन बोलने के लिए, ठीक हो जाएगा जब बोल दिया तो आगे क्या बोलेगा मन।
0: व्हेन यू ब्लेस अदर्स द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स ब्लेस्ड इज मी मायसेल्फ। आई कांट ब्लेस एनीबडी विदाउट ब्लेसिंग मायसेल्फ, नॉट पॉसिबल। जो हम जैसे हम हर बार सुनते हैं, जो हम दूसरे को देंगे पहले अपने को मिलेगा। तो दूसरे को आशीर्वाद दिया मतलब एक बहुत प्योर एलिवेटेड थॉट क्रिएट की, जैसे ही वो क्रिएट की पहले वो एनर्जी हमें मिली। अब यही ऑपोजिट कर दो, दूसरे को अगर आशीर्वाद का ऑपोजिट दिया। अब सिर्फ फर्क ये होता है, आशीर्वाद जब हम देते हैं मतलब ब्लेसिंग देते हैं, हम बड़े कॉन्शियसली देते हैं। कॉन्शियसली मतलब वी आर अवेयर कि हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। यू नो, जैसे सपोज आपके घर में बच्चे आपको मिलने आए काम पर जाने से पहले, तो आप ब्लेसिंग देंगे, राइट? आप देंगे ना, बहुत बढ़िया होगा, तुम्हारा आज बहुत अच्छा होगा, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ये हम ब्लेसिंग्स कॉन्शियसली देते हैं, ये हम कॉन्शियसली ब्लेसिंग्स देते हैं ना। अब जब हम ब्लेसिंग दे रहे हैं हम अवेयर हैं कि मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जब हम आशीर्वाद का ऑपोजिट देते हैं हम अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमने हमें क्या लगा था कि अगर ये आशीर्वाद है कि तुम्हारा सब अच्छा हो, तो हमने सोचा था आशीर्वाद का ऑपोजिट क्या होगा कि तुम्हारा सब बुरा हो। तो ऐसा तो हम किसी के लिए जल्दी जल्दी तो क्रिएट नहीं करता ऐसे कोई भी। तो हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि हम कभी आशीर्वाद का ऑपोजिट भी क्रिएट करते हैं। लेकिन आशीर्वाद का ऑपोजिट ओनली मीन्स एन एनर्जी जो दूसरे को डिसएम्पावर करेगी।
1: मीन्स
0: एक ब्लेसिंग क्या होती है, एक एनर्जी जो दूसरे को इम्पावर करेगी। हम महात्माओं के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, राइट? अब वो हम उनके पास क्यों जाते हैं कि वो हमारी कैपेसिटी से भी ज्यादा एक पावरफुल थॉट हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं, हमारे बारे में क्रिएट करते हैं। सपोज आप एक काम शुरू करने वाले हैं नया, ठीक है, आप कितने आशीर्वाद लेकर आएंगे काम शुरू करने से पहले। कहते हैं ना हम बड़ों का, पेरेंट्स का, महात्माओं का, कहते आशीर्वाद लेकर आते हैं फिर काम शुरू करेंगे, ठीक। अब आप गए उनके पास, चाहे माता पिता के पास चाहे संत महात्माओं के पास, तो उन्होंने थॉट क्या क्रिएट करनी है हमारे लिए,
1: भला हो,
0: हाँ,
1: आपका अच्छा हो,
0: हाँ,
1: जरूर अच्छा होगा फल।
0: तो सफलता आपकी ये निश्चित है। तो जैसे ही वो हमारे लिए वो थॉट क्रिएट करते हैं, अगर हमारे माइंड में कोई एक एलिमेंट ऑफ डाउट भी था सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट या सक्सेस ऑफ द बिजनेस या सक्सेस ऑफ द मैरिज, यू नो, रिश्ते में भी लोग पहले आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो जैसे ही महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं ना, उसके बाद हमारा माइंड एकदम साइलेंट हो जाए, जी उन्होंने कह दिया
1: अब हो जाएगा।
0: ये एक्चुअली उनके कहने से तो होने नहीं वाला है, ये उनके कहने से हमने क्या लगता है, उन्होंने कहा तो वहां मैजिक होगा। उनके कहने से बिजनेस में मैजिक नहीं होता है,
1: आपके मन में।
0: उनके कहने से जिसने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया उसके मन में मैजिक क्रिएट हो जाता है कि उसका मन यहां था, अब वो एक पावरफुल ब्लेसिंग बनने से वो यहां पहुंच गया, विच मीन्स उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से हमें एम्पावर कर दिया। अब सपोज वो ही महात्मा जी कहें आपको, जब आप जाएं उनके पास और वो कहे देखो करके शुरू करो, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, इतना भी इजी लग नहीं रहा है जो आप करने की सोच रहे हो, फिर भी करके देखो, कर लो, लेकिन ध्यान रखना पिछली बार तो तुम्हारा गड़बड़ हो गया था सारा काम, वही गलती फिर से मत करना इस बार, देखो फिर क्या रिजल्ट निकलता है, कोशिश करके देखते हैं क्या होता है।
1: वैसे भी लोहे का काम तुमको सूट नहीं करता है, तुम केमिकल में चले जाओ, लेकिन ठीक है ट्राई कर लो।
0: अब ये थॉट
1: कितना वीक करेगी मुझे,
0: तो इसका मतलब उनकी थॉट या तो हमें एम्पावर कर सकते हैं या हमें डिसएम्पावर कर सकती है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा बुरा हो, तुम असफल हो, ऐसा नहीं बोला।
1: अच्छा,
0: हम ये कहते हैं ना आशीर्वाद या श्राप, तो श्राप ये नहीं होता तुम असफल हो, तुम फेल हो जाओ, तुम्हारा बुरा हो, श्राप ये नहीं है। श्राप मीन्स हमारी कोई भी ऐसी थॉट या

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ

0: कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नकली तोड़ा मारा था, असली तोड़ा हमसे सुनो।
1: सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। If I am disturbed about something, the mind just goes on and

0: आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्वत, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: मेक इन इंडिया, पात्र परिचय वेदांत, यश आदित्य प्रकाश, आकाश आदित्य, पंकज।

0: जरा उसे तो देखो कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है।
1: अरे भाई अभी छुट्टियां चल रही है, मजे करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
2: पर अब थोड़ा ही तो समय रह गया है, काम भी तो शुरू करना है जो टीचर्स ने दिया हुआ था।
3: हमारी टीचर ने तो बहुत ही अजीब काम दिया है।
4: क्या
3: कहा है? मेक इन इंडिया क्या है इसकी जानकारी हासिल करो और क्लास को समझाओ।
5: ये अच्छा तरीका है, बजाय डायरेक्टली कोई टॉपिक समझाने के हमें ही इसकी तैयारी करके क्लास में समझाने को कहा है। हमें भी तो नीरू मैम पढ़ाती है, हमें भी यही काम दिया है।
1: लेकिन आइडिया बुरा नहीं है।
6: क्या मतलब?
1: अरे भाई कहते हैं ना, सबसे अच्छा तरीका कुछ भी सीखने का यही है कि उसे सिखाना शुरू कर दिया जाए।
6: यही तो बात है, उसकी पूरी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी।
0: क्या मतलब? बस स्टाइल से क्लास में खड़े हो जाना और देने लगना एक शानदार सा भाषण।
3: ये क्या बात हुई, बिना कुछ जाने पढ़े कैसे पढ़ा लोगे भाई?
1: एग्जैक्टली, जब पढ़ने की जिम्मेदारी सर पर आ जाए तो मरता क्या न करता, उस टॉपिक के बारे में एक रीजनेबल ज्ञान तो हासिल करने की कोई भी इंसान कोशिश करेगा ही।
5: सो अब हालत ये है प्यारी दीदी कि हमें मेक इन इंडिया पर तैयारी करनी होगी।
1: तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, ऐसा करते हैं इस टॉपिक के कुछ कुछ हिस्से बांट लो, फिर एक दूसरे को अपनी अपनी बात समझा दो।
3: वाह क्या आइडिया है दीदी, इससे तो हमारी कुछ पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी
5: और एक दूसरे से समझेंगे तो बात जल्दी समझ भी आ जाएगी।
7: बल्कि अगर हम सब लोग कुछ कुछ बताएं तो गेम का गेम और ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा।
3: कैसे?
1: देखो हम आठ लोग हैं ना।
5: आठ।
1: एक जना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा।
7: अच्छा।
1: दूसरा उसका मतलब डिटेल में बताएगा।
0: हाँ ठीक है, जैसे एक बताएगा कि इस प्रोग्राम के लक्ष्य क्या हैं।
1: राइट।
7: और एक बताएगा उन लक्ष्यों तक पहुँचने के साधन क्या हैं।
8: समझ गया।
6: और एक की रास्ते में रुकावटें क्या हैं?
3: और फिर एक ये बता सकता है कि उनको दूर करने के लिए किन किन स्टेप्स को लेना पड़ेगा।
6: काफी मुश्किल काम लग रहा है।
1: अरे सब मिलके करो ना, सबके हिस्से थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है।
5: पर जितना भी हिस्से में आए, जरूरी बात ये है कि सभी को इसके बारे में जानकारी तो पूरी रखनी होगी।
6: सिवाय उसके जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो इंट्रो देकर सीट पर जाकर सो सकता है।
1: अच्छा ये तो बताओ, बिना कुछ ज्यादा पढ़े इसके बारे में जस्ट लाइक दैट हमें इसकी कितनी जानकारी है?
0: भाई पहली बात तो मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ।
7: किसे?
2: ए स्टॉप जोकिंग, मतलब भारत में निर्माण करो, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना।
3: तो भारत में ही तो बन रहा है ना, अपनी जरूरत की चीजें।
1: सॉरी बच्चों, आपकी जानकारी काफी लिमिटेड है, तो आपके लिए आज का होमवर्क यह भी है कि अपने घर के कई इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, आप पाएंगे कुछ मेड इन चाइना है तो कुछ मेड इन कोरिया।
6: हाँ और दूर क्यों जाना, दीदी के हाथ के इस मोबाइल के पीछे ही देख लो।
5: हाँ हम तो ये कभी नोटिस ही नहीं करते।
6: ऐसे तो कई बच्चों के खिलौने और स्टेशनरी आइटम्स,
7: स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब बाहर के देशों से हमारे देश में आया है।
1: अरे यही नहीं, साइकिल कार ट्रक।
7: ओ गॉड, ध्यान से देखो तो, यू आर राइट, कितनी चीजें अभी भी हमारे देश में बाहर से आती हैं।
0: क्यों भाई क्यों, हम दूसरे देशों से क्यों खरीदें, अपने देश में क्यों ना बनाएं?
2: और क्या, अब क्या नहीं है हमारे देश में, सब तरह की शिक्षा, जानकारी, कच्चा सामान, मशीनें।
6: फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
7: क्या? यही कि हम दूसरे देशों से इतना कुछ निर्यात करते हैं।
1: देखा नहीं, सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने जरूरत की चीजों के लिए मार्केट को कैप्चर किया है तो वो है चाइना।
2: उन्होंने तो हमारे भगवानों की मूर्तियों, त्योहारों में काम आने वाली चीजों तक को नहीं छोड़ा।
7: हाँ मजेदार बात तो ये है कि दिवाली के दिनों में हमारी गणपति चाइनीज लोगों की तरह के नए नक्श वाले होते हैं।
3: हाँ देखा है मैंने भी बाजार में चाइनीज गणपति।
6: पर कहते हैं कि चाइना जिस चीज को जितने भी घंटों में बनाता है, भारत उसे दुखने से भी ज्यादा समय में

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां, और ठीक कर

0: की उंगली भी यहां.
1: वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स. ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं. उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं.
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

गीता की तबीयत में जहाँ शोकी और चंचलता थी, वहाँ जिम्मेदारी का भरपूर एहसास भी था। हमने कई गाने एक साथ गाए, इसलिए बड़ी अच्छी दोस्ती थी। गीता बहुत जल्द किसी भी बात से परेशान हो जाती थी और परेशानी बढ़ जाती तो सीधे मेरे पास आ जाती। उसे मुझसे मिलने की जितनी जल्दी हुआ करती थी, उतनी ही जल्दी गीता ने इस दुनिया से जाने में भी दिखाई। ये वक्त का सितम नहीं तो और क्या।

जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार से मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले।

0: बालियों के बगैर कान कितने सूने सूने लगते हैं।
1: यहाँ भी आप पहुँचे?
0: आया हूँ, अभी पहुँचा नहीं।
1: पहुँचे हुए मालूम होते हो।
0: आपकी दुआ है।
1: काम करते हो यहाँ?
0: कहीं क्या सेवा करूँ?
1: हार चाहिए?
0: जरूर, ऐसा हार पेश करता हूँ कि आपके गले से लग कर हार नहीं जीत लगे। ये देखिए, इस मखमल से गोरे गले में सच्चे मोतियों का सफेद हार, ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से धुले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही है। 10,000 शायद दाम आपके लिए कुछ ज्यादा है।
1: बहुत कम, कोई महंगी सी चीज दिखाइए।
0: जरूर, ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की झील है, उस पर सोने के पत्तों में लाल कमल खिले हैं। 25,000।
1: बस इतनी हल्की नहीं, कोई भारी सी चीज पेश कीजिए।
0: और ये देखिए, झील मिलाती हुई किरने सिमट कर आपके गले से लिपट देंगे। ये हीरे आपकी आंखों से बाजी लेना चाहते थे, मगर लगता है लगा ले बेचारे, और ठीक भी है। कहा है ना, लाजी औरत का जेवर है। 1,00,000।
1: बात हुई ना कुछ, हीरो से बढ़कर तो आपकी जुबान है।
0: अब मेरी जुबान से बढ़कर आप हैं।

चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठीक और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर मगर

इंद्र आरती को उसके माजी से निकालना चाहता था, लेकिन वो मुड़ मुड़कर अंधी आंखों से अंधेरा माजी टटोलती थी। इंद्र की आवाज में उसे शून्यता ही शून्यता सुनाई देती थी।

0: रस्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे
1: घर वाले अब हमको

चौका का होगा होना है जो वो।

क्या सीने हैं, क्या खूब कही है दिल की। हाँ यार, तुम भी तो कुछ कहो अपने दिल की।

कहां से आया ये हाथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया द होल थिंग इज दैट भैया सबसे

0: दाना झूम झूम लहराता चल।
1: अरे पीले खाले प्यार का दाना झूम झूम लहराता चल, ऐ मेरे दिल।

हम तो हैं राही दिल के, पहुँचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो हैं मन के राजा, राजा की चली।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तु बिरला अल्लाहु अकबर अल्लाहु
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तु बिरला अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
2: हर हर

आकाश पर चमकते हुए उस प्रकाश पुंज में भी ईश्वर का अंश है और धरती की धूल के कणकण में भी वही समाया है। सच तो ये है कि हम प्राणियों को भी बस उसी शक्ति का साया है।

समझाओ दिल किसको दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको